यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, वेव्स ओटीटी और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। आज शनिवार है। शक संवत 1949 के आषाढ़ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 जुलाई सन 2026। सुबह के 5:57 होने वाले हैं। आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन सभा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू साधुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125 ए के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह

0: तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। खेती की बातें कार्यक्रम में मिर्चा की खेती के विषय में जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, आज हम मिर्चा की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। समय चल रहा है, आप इसकी पहले नर्सरी तैयार करें और फिर मुख्य खेत में रोपाई करें। LCA 235, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, जवाहर मिर्च 218, ये सब इसकी उन्नतशील प्रजातियां हैं। संकर किस्मों को भी बो सकते हैं, जैसे तेजस्विनी प्रजाति है, आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी अच्छी प्रजाति के बीज उपलब्ध करा रही हैं, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए बलुई दोमट या दोमट मिट्टी अच्छी पाई गई है। ऐसी मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7.5 के बीच हो, मिर्चा की खेती के लिए उपयुक्त होती है। मिर्चा की खेती के लिए खेत की 2-3 बार जुताई करके पाटा चला करके मिट्टी को भुरभुरा बना लेते हैं। 1 हेक्टेयर खेत में अगर नर्सरी तैयार करना है तो 600 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इससे जो पौ तैयार होगी उससे 1 हेक्टेयर खेत में रोपाई की जा सकेगी। इसकी नर्सरी के लिए जो क्यारियां बनाते हैं उसके लिए ये जरूरी है कि मिट्टी जीवांश युक्त हो, यानी कि उसमें गोबर की खाद या सड़ी हुई कंपोस्ट की खाद अच्छी तरह से मिलाकर तैयार की जाए। जब क्यारियां बनाते हैं तो यह ध्यान रहे क्यारियों की लंबाई 3 मीटर तथा चौड़ाई 1 मीटर होनी चाहिए। प्रति वर्ग मीटर की दर से 10 ग्राम डाइअमोनियम फास्फेट और 1 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद मिला करके नर्सरी अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं। क्यारियां जमीन की सतह से 20 से 25 सेंटीमीटर उठी हुई हों। यह ध्यान रहे कि जो बुआई करें तो वो अधिक घनी नहीं होनी चाहिए। पंक्त से पंक्ति की अगर बुआई करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कहने का मतलब ये कि लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन बना करके और फिर इन्हीं लाइनों पर मिर्चा की बुआई करते हैं।

0: की बुआई के बाद क्यारियों को सड़ी हुई गोबर की खाद या पत्ती की खाद कंपोस्ट खाद से ढक देते हैं, जिससे ऊपर की मिट्टी बैठने न पाए। तत्पश्चात फुहारे से हल्की सिंचाई करनी चाहिए। अब इन क्यारियों को धूप व ठंड से बचाने के लिए घास फूस की छप्पर से ढक देना चाहिए। जब बीज पूर्णतया जम जाए तो घास फूस हटा लेना चाहिए तथा आवश्यकता अनुसार फुहारे से हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। हाँ, अगर बारिश होती है तो सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस तरह से लगभग 4 सप्ताह में पौध रोपाई के योग्य हो जाती है। रोपाई करने के लिए मुख्य खेत को तैयार करने हेतु सबसे पहले 250 से 300 कुंटल खूब सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में मिला देते हैं। इसके बाद फिर तत्व के रूप में 100 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये कि लगभग 200 किलोग्राम यूरिया, 240 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 60 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा व फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा रोपाई से पहले ही खेत में मिला देना चाहिए तथा शेष जो नाइट्रोजन बचती है उसे 2 बराबर भागों में बांट करके पहली मात्रा रोपण से 25 दिन बाद और फिर जो शेष मात्रा बचती है उसे 45 दिन बाद खड़ी फसल में बुरकाव करना चाहिए। पौध रोपण के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करना जरूरी है। उसके बाद आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। मिर्च की फसल में पानी की मात्रा, मिट्टी की किस्म, क्षेत्र में होने वाली वर्षा की मात्रा और उगाई जाने वाली किस्म पर निर्भर करती है। यदि वर्षा कम हो रही है तो 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। गर्मी के महीनों में सिंचाई 1 सप्ताह के अंतराल पर करना चाहिए। ध्यान रहे, वर्षा का पानी खेत में ज़्यादा समय तक नहीं लगे रहना चाहिए, अन्यथा पौधे मर जाते हैं। अतः जैसे ही खेत में ज़्यादा पानी लग जाए तो उसकी निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर मिर्चा की खेती करनी चाहिए।
1: अभी आप मिर्चा की खेती के बारे में जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है दैनिक भक्त संगीत का कार्यक्रम आराधना। हे सर्वशक्तिमान, हम आपकी शरण में हैं, हम पर कृपा करो, हमारे कष्ट हरो।

आपकी कृपा दृष्टि से ही हर विपदा टल जाती है। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें हे प्रभु।

मन में जब भी बसाने की बात हो तो प्रभु आप ही हैं जिन्हें हम पल पल याद करते हैं, अपने मन में बसाए रखते हैं।

सच्चा सुख तो केवल भक्ति में है। भक्ति के लिए केवल सच्चे मन की आवश्यकता होती है, तभी प्रभु प्रसन्न होते हैं।

0: अभी आप भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना सुन रहे थे। आज के गायक कलाकार थे हरि ओम शरण, सुमन कल्याणपुर, लता मंगेशकर और कंकना बैनर्जी। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। विचार बिंदु कार्यक्रम में आज का विषय है धर्म।
1: हमारे चार पुरुषार्थों में धर्म एक प्रधान और मुख्य पुरुषार्थ है। धर्म की सिद्धि से ही अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है। हमारे जीवन में जितने हमारे कर्तव्य हैं वे सभी धर्म मूलक हैं। माता पिता और गुरु के प्रति, समाज और राष्ट्र के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं वे सभी धर्म से समन्वित हैं। महर्षि कशात कहते हैं, यतो अभ्युदय निश्चयस सिद्धि सधर्मा। जिससे हमारा अभ्युदय हो, हमारी चहुमुखी उन्नति हो और जिससे हमारा कल्याण हो, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, वही धर्म है। सबके आचार विचार का, आहार और लोक व्यवहार का, हमारे सदाचार का नियामक धर्म ही है। ऐहिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति धर्म से ही होती है। इसीलिए कहा गया है, धर्मम चर धर्मान प्रमद्यम। धर्म का पालन करो, धर्म पर चलो, धर्म का पालन करने में आलस्य मत करो। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि सब प्राणियों में कल्याण की भावना ही सच्चा धर्म है। स्वामी रामदास का कथन है, सभी धर्म एक ही प्रभु की ओर ले जाने वाले हैं। हमारी भारतीय संस्कृति का प्राण ही धर्म है। इसलिए मनुस्मृति में भी कहा गया है, धृतिः क्षमा दमोऽस्त्येयं शौचं मिन्द्रियः निग्रहः, धीवरतया सत्यं क्रोधः दशकं धर्म लक्षणम्।

श्री ब्रह्म चैतन्य का कथन है, धर्म वो है जिससे शांति और समाधान मिले। विलियम ला का यहां तक कहना है कि धर्म है प्रेम भावना में। बर्नार्ड शाह का कहना है कि धर्म एक ही है, भले ही रूप उसके 100 हों। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में सुख का आधार धर्म है। परिवार, समाज और राष्ट्र की सुख शांति और समृद्धि का आधार धर्म है। हमारे सदाचार में जीवन की मूल आत्मा है धर्म। धर्म मानव को परस्पर में जोड़ने वाला है, हमारे जीवन में शीतलता और शांति प्रदान करने वाला है। धर्म एक ऐसी दवा है

0: और शांति प्रदान करने वाला है। धर्म एक ऐसी दवा है, औषधि है, जिसके सेवन करने से वैमनस्यता और वैर विरोधों की आग बुझती है। संकीर्णता, कटुता का रोग धर्म की औषधि के सेवन करने से ही दूर होता है। इसीलिए कहा है, नहिं वैरेण वैराणि शाम्यन्ति कदाचन, अवैरेण च शाम्यन्ति ऐष धर्म सनातन। हम सभी लोग विभिन्न मजहबों और संप्रदायों में रहते हुए भी परस्पर प्रेम, सहयोग, सहानुभूति और शांति से तभी रह सकते हैं जब जीवन के मूल रहस्य को धर्म को समझें और उसे जीवन में उतारें। धर्मेण हन्यते व्याधे, धर्मेण हन्यते रिपो, धर्मेण हन्यते रोगा, यतो धर्म स्ततो जया। सांप्रदायिक सद्भाव धर्म में जीवन अर्थात सदाचार में जीवन से ही बना रह सकता है। हमारी संकीर्णता या तंगदिली धर्म के इस रहस्य को जानकर उसे जीवन में उतारने से ही दूर होगी। धर्म सुख का मार्ग है। धर्म की शीतल छाया में ही सभी सुखपूर्वक रह सकते हैं। धर्म से ही जीवन में श्रेष्ठता, नैतिकता और व्यवहार कुशलता आती है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम धर्म के मार्ग पर चलें।
1: विचार बिंदु कार्यक्रम में आज का विषय था धर्म। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में लीजिए डायरिया कारण लक्षण और उपचार विषय पर डॉक्टर विवेक सिंह द्वारा दी गई ये जानकारी सुनिए।
2: मैं डॉक्टर विवेक सिंह, जनरल फिजिशियन। आज हम लोग डायरिया के कारण, लक्षण और उपचार के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कारण। डायरिया होने का कारण सबसे बड़ा है कि किसी प्रकार का वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना। जैसे कि किसी को, जैसे बाहर खाना खाते हैं तो उसमें कई प्रकार के ऐसे वायरस और बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण से हमें पतला दस्त होने लगता है। पतला दस्त होने में सबसे कॉमन जो वायरस माना जाता है वो रोटा वायरस होता है वयस्कों में, और नोवो वायरस होता है, ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है। बैक्टीरिया, जैसे हम जो बाहर कभी जैसे हम गंदा पानी पी लेते हैं तो उसमें एक बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला या ई कोलाई, ये बैक्टीरिया जो हमारे पेट में चले जाते हैं उनके कारण से भी पतला दस्त होने लगता है। और पैरासाइट भी कभी कभी ऐसा होते हैं जैसे कि जो हमारी आंतों को संक्रमित कर देते हैं, जिनके कारण से मुझे या हम लोगों को जब भी हम लोग ऐसा किसी भी गंदा प्रकार का खान पान करते हैं तो उसके कारण से दस्त होने लगता है। और जब आजकल जैसे अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो कभी कभी क्या होता है कि गर्मी में आँच लगने की वजह से भी पतला दस्त होने लगता है, जिसको भी हम लोग डायरिया बोलते हैं। डायरिया अगर हम बात करें तो मेन कारण अगर देखा जाए तो हमारे खान पान के ऊपर ही डिपेंड होता है। जो जैसा अगर हमारे खान पान अगर सही रहता तो हम डायरिया से बच सकते हैं। और डायरिया में सबसे बड़ा जो हमारी आंतें जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, जो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण आंतों से मल त्याग ज़्यादा होने लगता है, जिसके कारण से शरीर में कमज़ोरी आने लगती है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि इन सभी कारणों के अलावा कई बार हम लोग किसी अनावश्यक ज़्यादा भोजन का उपयोग करते तो भी कई बार डायरिया होने का चांस रहता है। कि हम अगर ज़्यादा मात्रा में कभी भोजन कर लिए या कभी बासी भोजन कर लिए या फिर कभी गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा तेल मसाले का भोजन कर लिए, गर्मी का मौसम है और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने ओवर डाइट कर लिया, ज़्यादा खाना खा लिए, तो उसके कारण से भी डायरिया होने का चांस बहुत बना रहता है। कॉमनली जो ज़्यादातर देखा जाता है बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण या पैरासाइट के कारण डायरिया हो जाता है। और गर्मी के समय में हम लोग अक्सर सुनते होंगे कि आप लोग सुनते रहते हैं कि फूड पॉइजनिंग हो गई, फूड पॉइजनिंग हो गई। कोई शादी में सब लोगों ने गए और वहाँ पे सब लोग, जैसे लगन का सीजन अभी चल रहा था तो शादी में सब लोग गए, ज़्यादा खाना खा लिया, अच्छा खाना, गर्मी का सीजन था, फूड पॉइजनिंग के कारण से डायरिया हो जाता है। तो वो जो हम लोग ज़्यादा खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में टॉक्सिन बन जाते हैं, यानी कि जहर का काम करने लगते हैं ज़्यादा भोजन करना। दूसरी होता है कि जैसे हम लोग किसी भी, कई बार क्या होता है डायरिया होने में क्या होता है, प्रकार के लोग होते हैं जिनको खाना नहीं पचता है, जैसे कि दूध में जैसे है, किसी किसी को दूध पीने से डायरिया होने लगता है, जिसे को बोलते हैं हम लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं। लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज दूध में पाया जाने वाला एक पदार्थ है जो कि हमें खाने पीने में, जिसे अगर

0: मेरी आंतें कमजोर है या मुझे वो सूट नहीं करता है, तो अगर मैं दूध पीऊँगा तो उसके कारण से भी मुझे डायरिया होने लगेगा। ज़्यादातर ये बीमारी बच्चों में देखा जाता है, छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से डायरिया हो जाता है। उस डायरिया में मरीज को, बच्चों को या मरीज को हमेशा ये होता है कि पतला दस्त एकदम पानी की तरह दस्त होता है, तो सब लोग घर में घबरा जाते हैं कि क्या करें, जल्दी से डॉक्टर दिखाना चाहिए। ऐसे केसेस में सबसे पहले कि जिस दूध से बच्चे को लैक्टोज, अगर बच्चों को लग रहा है कि डायरिया दूध की वजह से हो रहा है तो दूध को रोक देना चाहिए और फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। चौथा है कि कुछ क्रॉनिक बीमारियाँ, जैसे कि हमारे पेट में जैसे एक बीमारी होती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको हम लोग IBS बोलते हैं। इस बीमारी में क्या होता है कि हमारे आंत में कई बार सूजन बनी रहती है लगातार, जिसके कारण से कभी पतला दस्त होगा तो कभी टट्टी टाइट कड़ी हो जाती है, फिर कभी कभी पतला दस्त होगा, तो वो बीमारी के होने की वजह से भी डायरिया होता है। तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग, अगर खान पान हमारा सही भी रहता है, अगर हम लोग बाहर कुछ नहीं भी खा रहे हैं, ठीक से भी रह रहे हैं, फिर भी हमें डायरिया होने का खतरा हमेशा बना रहता है। क्योंकि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मतलब है कि हमारी आंत कभी तेज चलने लगती है, कभी स्लो चलने लगती है, जिसके कारण से मरीज को डायरिया हो जाता है। हम आपको जो डायरिया के कारण बता रहे थे, उसके मुख्य कारण यही है कि डायरिया में हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का खान पान रहन सहन में ध्यान देना चाहिए।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप डायरिया कारण, लक्षण और उपचार विषय पर डॉक्टर विवेक सिंह द्वारा दी गई ये जानकारी प्राप्त कर रहे थे। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ।

अयोध्यापुरी में श्रीराम के राज्याभिषेक की सभी तैयारियां बड़े उत्साह के साथ की जा रही हैं। कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ जिस व्यक्ति को जो काम करने की आज्ञा देते हैं वो पल भर में ही हो जाता है, मानो उस व्यक्ति ने वो काम पहले से ही कर रखा हो। राज्याभिषेक का समाचार सुनते ही पूरे अवध में बधावे बजने लगे। अयोध्या के महल में श्री राम तथा सीता जी को अंग फड़कने के साथ शुभ शकुन की सूचना मिलने लगी। इन शकुनों को वे भरत के, जो अपने ननिहाल गए हुए थे, अयोध्या आगमन की सूचना का संकेत मानते हैं। रनिवास में हर्षोल्लास व्याप्त है। जिस सेवक ने अंतपुर में सबसे पहले राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनाया उसे ढेर सारे आभूषण तथा वस्त्रों का पुरस्कार मिला। रानी सुमित्रा ने रत्नों के मनोहर चौक पुराए तो माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर दान दक्षिणा दी, ग्राम देवी देवताओं तथा नागों की पूजा की और पुत्र श्री राम के कल्याण का वरदान मांगा। अवध नरेश ने मुनिवर वशिष्ठ को आमंत्रित कर उनसे श्री राम को समयोचित उपदेश देने की प्रार्थना की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ। आज की कड़ी के गायक कलाकार थे रविंद्र साठे। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत।

संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10 बजे से दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। अंजुमन गैर फिल्मी गीत और गज़लों का कार्यक्रम रात 9:30 पर आप सुन सकते हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8 बजे मनहर उदास कलाकार होंगे। इसी कार्यक्रम में दिन में 12:30 पर कलाकार होंगी नेहा चैटर्जी। हिंदी वार्ता के कार्यक्रम में शाम 7:31 पर आप सुनेंगे स्वामी विवेकानंद का वैश्विक राष्ट्रवाद, इस विषय पर डॉक्टर शिवेंद्र प्रताप सिंह की वार्ता। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई, जुलाई माह में किए जाने वाले सामयिक कृषि कार्य विषय पर डॉक्टर प्रभाष चंद्र सिंह से रामकृष्ण मिश्र की बातचीत के अलावा वीरेंद्र कुमार चौबे के गाए लोकगीत का भी आनंद उठा सकते हैं। वीरेंद्र कुमार चौबे के गाए लोकगीत सुबह 9:50 एवं दिन में 1:45 पर भी सुने जा सकते हैं।

युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर युवा श्रोता, आज की बात यूथ जंक्शन यूथ डायरी इतिहास में आज का दिन रोजगार सूचना और फिल्म संगीत सुनेंगे। नन्ही दुनिया कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा शाम 5 बजे का। गीतांजलि कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। अंगनैया कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर ग्रामीण महिलाएं, ऋतु चर्चा और दिनचर्या का महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव विषय पर डॉक्टर मंगला गौरी एवं अर्चना गोस्वामी की बातचीत के अलावा गीत संगीत का भी आनंद ले सकती हैं ग्रामीण महिलाएं अपने कार्यक्रम अंगनैया के अंतर्गत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दिन में 12:45 पर डॉक्टर राकेश कुमार का बांसुरी वादन और इसी कार्यक्रम में प्रातः 7:31 पर वायलिन वादन आप सुनेंगे। कलाकार होंगी विदुषी एन राजम। हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में सुबह 11 बजे अरुण पांडे

अपनी प्रस्तुति के साथ उपस्थित होंगे। कहकशां कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 12 बजे का। फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार का समय सुबह 10 बजे से और मधुरिमा का समय प्रातः 8:45 का होगा। उर्दू कार्यक्रम प्रातः 9:30 पर लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा और गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम का समय प्रातः 7 बजे से होगा। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10 बजे से दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। फिल्म गीत और गज़लों का जो गैर फिल्मी कार्यक्रम होता है वो होगा अंजुमन। गैर फिल्मी गीत और गज़लों का प्रसारण समय रात 9:30 का होगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8 बजे मनहर उदास कलाकार होंगे। इसी कार्यक्रम में दिन में 12:30 पर कलाकार होंगी नेहा चटर्जी। हिंदी वार्ता के कार्यक्रम में शाम 7:31 पर आप सुनेंगे स्वामी विवेकानंद का वैश्विक राष्ट्रवाद वसुधैव कुटुंबकम, विषय पर डॉक्टर शिवेंद्र प्रताप सिंह की वार्ता। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, रिले किया जाएगा हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप मस्त और आबाद होंगे। और आप ट्यून कर लिए हैं आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र और सुन रहे हैं अपना फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, हमारे यानी अपनी रेडियो दोस्त प्रियदर्शी के साथ। श्रोताओं, उम्मीद है कि गंगा की निर्मल धारा की तरह आपका मन भी आज शांत और उजला होगा। कहते हैं रिश्ते बनाना आसान होता है दोस्तों, लेकिन उसे निभाना सबसे बड़ी साधना है। और इस साधना में सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब रिश्तों के बीच नाराजगी जन्म ले लेती है। तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे रिश्तों में नाराजगी और निराश होने के फासले की। रिश्ते कभी एक दिन में नहीं टूटते, वे धीरे धीरे चुप्पियों के बोझ से

भर जाते हैं और कई बार किसी की कही हुई एक बात नहीं बल्कि कई अनकही बातें रिश्ते की दीवारों में दरारें डाल देती हैं। दोस्तों, नाराज होना स्वाभाविक है। जहां अपनापन होता है वहीं अपेक्षाएं भी होती हैं, और जहां अपेक्षाएं होती हैं वहां कभी कभी शिकायतें भी जन्म ले लेती हैं। लेकिन नाराजगी और निराशा में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। नाराजगी कहती है, तुम मुझे मना लो क्योंकि मैं अभी भी तुम्हें अपना मानता हूँ। लेकिन निराशा कहती है, अब शायद तुम्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं। यही वह फासला है दोस्तों, जहाँ से कई रिश्ते लौट कर नहीं आते। कभी ध्यान दीजिए, जब कोई व्यक्ति बार बार समझाने की कोशिश करता है, बार बार संवाद करना चाहता है, तो वह अभी भी रिश्ता बचाना चाहता है। लेकिन जिस दिन वह चुप हो जाए, उस दिन उसकी आवाज़ नहीं, उसकी उम्मीदें थक चुकी होती है। दोस्तों, क्योंकि इंसान बोलना तब बंद करता है जब उसे लगता है कि अब उसकी बातें सुनी ही नहीं जाएंगी। रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती यह नहीं है कि उनमें कभी मतभेद ना हो, बल्कि यह है कि मतभेदों के बावजूद संवाद बना रहे। हर रिश्ता जीतने के लिए नहीं होता दोस्तों, कुछ रिश्ते समझने के लिए भी होते हैं। श्रोताओं, कई बार हम सही साबित होने की कोशिश में उस इंसान को ही खो देते हैं जिसे सबसे ज्यादा संभालना चाहिए था। याद रखिए, माफी हमेशा गुनहगार नहीं मांगता, कई बार वह भी मांग लेता है जिसे रिश्ता अपने अहंकार से ज्यादा प्यारा होता है। और जो लोग हर बार झुकते हैं ना दोस्तों, जरूरी नहीं कि वे कमजोर हों, हो सकता है वे रिश्ते को टूटने से बचाना चाहते हों। जिंदगी बहुत छोटी है श्रोताओं, आज जो लोग हमारे साथ हैं जरूरी नहीं कि वे हमेशा हमारे साथ रहें। इसलिए अगर कोई अपना नाराज है तो उसके नाराज होने की वजह सुनिए, इत्मीनान से सुनिए। कई बार लोग गुस्से में वह नहीं कहते हैं जो कहना चाहते हैं, वे सिर्फ यह जताना चाहते हैं कि उन्हें आपकी कमी महसूस हो रही है। और यदि कभी आपको लगे कि कोई अपना बदल गया है तो निर्णय लेने से पहले एक बार उससे बात जरूर कीजिएगा, क्योंकि कई रिश्ते गलत फहमियों से टूटते हैं, सच से नहीं। तो आज की सुबह इतना सा संदेश है, रिश्तों में नाराजगी आ जाए तो उसे बातचीत से मिटाइए, लेकिन निराशा को कभी जगह मत दीजिए, क्योंकि नाराजगी तो कुछ पल की होती है और निराशा कई बार पूरी उम्र की दूरी बना जाती है। जो लोग आपकी ज़िंदगी में है ना, उन्हें यह एहसास कराइए कि वे आपके लिए मायने रखते हैं। मुस्कुराइए, अपनों का हाल पूछिए और जहाँ भी हों रिश्ते में संवाद की रोशनी बनाए रखिए। और इसी के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और जानते हैं कि क्या है आज के इतिहास में खास। तो दोस्तों, विज्ञान जगत के लिए 4 जुलाई एक खास दिन है। वर्ष 2012 में इसी दिन वैज्ञानिकों ने हिग्स बोसॉन कण का पता लगाया और उसमें सफलता का ऐलान भी किया था। जिनीवा में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूरिकल्चर रिसर्च यानी सर्न्स के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उन्होंने गॉड पार्टिकल यानी हिग्स बोसॉन कण के बेहद ठोस संकेत हासिल किए हैं। इसके अलावा देश विदेश में भारत का परचम रहलाने वाले स्वामी विवेकानंद का आज ही के दिन 1902 में निधन हुआ था। उन्होंने भारतीय दर्शन और चिंतन की समृद्ध परंपरा को विश्व स्तर पर रेखांकित किया था और उसे सम्मान दिलाया था दोस्तों। आज ही के दिन 1776 में अमेरिकी कांग्रेस ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की। आज ही के दिन यानी 4 जुलाई 1789 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान के खिलाफ निजाम और पेशवा के साथ एक संधि की। दोस्तों, आज ही के दिन यानी 4 जुलाई 1810 को फ्रांसीसी सेनाओं ने एम्स्टर्डम पर कब्जा किया। आज ही के दिन 1827 यानी 4 जुलाई 1827 में न्यूयॉर्क से दासत्व खत्म करने की घोषणा भी हुई थी।
आज ही के दिन 1881 में सिली

और दार्जिलिंग के बीच छोटी पटरी पर टॉय ट्रेन चलाई गई थी। श्रोताओं, 4 जुलाई 1897 में आंध्र प्रदेश के महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म हुआ था और आज ही के दिन 1898 में भारत के प्रधानमंत्री पद पर 2 बार अस्थायी रूप से रहे राजनीतिज्ञ गुलजारीलाल नंदा का सियालकोट में जन्म हुआ था। 4 जुलाई 1946 में फिलीपीन को अमेरिका से स्वतंत्रता मिली। दोस्तों, 4 जुलाई 1963 में तिरंगे का डिजाइन बनाने वाले स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया का निधन हुआ था और आज ही के दिन यानी 4 जुलाई 1986 में सुनील गावस्कर ने 115वां क्रिकेट टेस्ट मैच खेलकर नया रिकॉर्ड बनाया था और 4 जुलाई 1997 में नासा का पाथफाइंडर स्पेस प्रोब मंगल की सतह पर उतरा था दोस्तों, और 4 जुलाई 1999 में भारत के लिएंडर पेस और महेश भूपति ने विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप की युगल स्पर्धा में खिताब जीता था और 4 जुलाई 2012 में सन्स के वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्होंने नए कण हिग्स बोसान की खोज कर ली है दोस्तों। और इसी के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, लेकिन इस गीत के बाद।

वेलकम बैक श्रोताओं, और आइए अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और जानते हैं क्या है खबर बनारस और देश दुनिया की। तो सबसे पहली खबर है छावनी परिषद वाराणसी एवं कल्चरल सोसाइटी ऑफ इंडिया की साप्ताहिक वरुणा संध्या में शुक्रवार को शहनाई वादन और शास्त्रीय गायन हुआ। कैंटोनमेंट स्थित नेहरू पार्क में कार्यक्रम की शुरुआत दुर्गा प्रसन्ना ने राग पूरिया धनाश्री के स्वर में रचना किया। बधैया गंगा द्वारे बधैया बाजे से कार्यक्रम को विराम दिया। दोस्तों, इसके बाद कोलकाता की मौमिता प्रमाणिक ने अपने मधुर स्वरों का जादू बिखेरा। उन्होंने राग भोपाली में गणेश वंदना के बाद दादरा, मिर्जापुरी, कजरी और लोकप्रिय गजल आपकी याद आती रही प्रस्तुत दी। और अगला खबर है खेल के हवाले से कि पटाया थाईलैंड में अंडर 20 महिला पुरुष जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में वाराणसी के दो और पहलवानों ने पदक जीता है। दोस्तों, वाराणसी कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव सिंह रानू ने बताया कि टीम मैनेजर प्रबल प्रताप राय और गोरखनाथ यादव के नेतृत्व में पहलवानों का बेहतर प्रदर्शन जारी है। बताया कि गुरुवार को ग्रीको रोमन पहलवान अक्षय राणा ने रजत और अनुज ने कांस्य पदक जीता। दो दिन में भारतीय टीम 4 पदक जीत चुकी है। दोस्तों, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह बबलू ने विजयी पहलवानों को बधाई दी और बता दें कि प्रतियोगिता 5 जुलाई तक चलेगी। और अगली खबर है वन विभाग की शुक्रवार को वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के तहत करसड़ा, डोमरी, बभनपुरा और भोपापुर में ग्रीन चौपाल का आयोजन किया गया। श्रोताओं, इस दौरान उपस्थित लोगों को वन महोत्सव के महत्व, पर्यावरण संरक्षण एवं जन सहभागिता की आवश्यकता पर जागरूक किया गया। साथ ही वन विभाग की संचालित विभिन्न योजनाओं एवं उससे किसानों को होने वाले संभावित लाभों की जानकारी भी दी गई। इसके अलावा आम के पौधों का वितरण किया गया, विभिन्न प्रजातियों के पौधे भी रोपे गए। और अगली खबर है मौसम के मिजाज से। 4 जुलाई को देश के अधिकांश हिस्से में दक्षिण पश्चिमी मानसून सक्रिय रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के ताजा प्रेस रिलीज में यह बताया गया कि उत्तर, मध्य, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना है। खासतौर पर हिमालयी राज्यों, मध्य भारत और पश्चिमी तट के इलाकों में कहीं कहीं भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। दोस्तों, मौसम विभाग ने लोगों को जलभराव, भूस्खलन और यातायात प्रभावित होने जैसी परिस्थितियों को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। और आखिरी खबर है इंग्लैंड दौरे पर जारी T20 श्रृंखला में अभिषेक ने पिछली 3 पारियों में एक अर्धशतक बनाया और 49 की पारी खेली है, जबकि सैटसन ने 5-0 और 1 रन बनाकर निराशाजनक प्रदर्शन दिया है। दूसरे T20 मुकाबले की पूर्व संध्या पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मॉर्कल ने कहा, हमें इस बात का सम्मान करना चाहिए कि हमारे पास अभिषेक शर्मा के रूप में T20 क्रिकेट का नंबर 1 बल्लेबाज है, वहीं संजू विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। दोस्तों,

0: हमारे मन में हो कि पंच संकल्प जब हम लेकर के चलेंगे परिणाम आएंगे। याद रखना, विकसित भारत की आधारशिला यूपी का बनेगा जब यूपी का हर गांव, यूपी का हर कस्बा, हर वार्ड आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित बनेगा। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना हो।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में 3 दिवसीय आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के मैंगो टूरिज्म को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए आम की सभी किस्मों की जीआई टैगिंग कराई जाएगी। महोत्सव में 50 ग्राम के अंगूर दाना आम और 5 किलो तक के वजन वाले गजानन आम आकर्षण का केंद्र रहे। प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी चार्जिंग को बढ़ावा देने के लिए सोलर आवर्स में 20% टैरिफ छूट की व्यवस्था लागू की गई है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा है कि इससे स्वच्छ और हरित ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। टैरिफ में यह छूट सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मिलेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी की दूसरे दिन की परीक्षा कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। 3 दिवसीय परीक्षा को पारदर्शी और शुचितापूर्ण तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा के दौरान शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों के एआई कैमरों से निगरानी सुनिश्चित की गई है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि यूपीटीईटी परीक्षा के अंतिम दिन आज एक पाली में परीक्षा आयोजित होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में हुई अनियमितता की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड मिले, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि न्यास से उम्मीद है कि वह व्यवस्था और संचालन की सभी कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।
2: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए, ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे।
1: वहीं इस मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला को पुलिस ने कल रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पूछताछ के आधार पर पुलिस उसे लेकर कौशलपुरी कॉलोनी स्थित योग आश्रम गई, जहां वह कुछ समय के लिए अपने भाई के साथ रहता था। पुलिस की टीम ने आश्रम की तलाशी ली। भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना नहीं बंद करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
3: India's position on the Indus Waters Treaty.
4: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
1: श्री अमरनाथ जी यात्रा कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में भगवान शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में श्रेष्ठ कार्य करने वाले बैंकों, बैंक कर्मियों और बैंक मित्रों को कल लखनऊ में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक प्रवेश कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 1,47,00,000 लोग अटल पेंशन योजना से जुड़ चुके हैं। उन्होंने बैंकों से इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रसार प्रसार कर इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया है कि राज्य सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श पशु चिकित्सालय की स्थापना करने जा रही है। इन चिकित्सालयों में पशु को सघन उपचार के लिए भर्ती भी किया जा सकेगा। बनने वाले प्रत्येक आदर्श पशु चिकित्सालय में 2 पशु चिकित्सा अधिकारी और पर्याप्त संख्या में अन्य स्टाफ की तैनाती की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह तथा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल अल नीनो के कारण

0: देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। राज्य के कई जनपदों में कल भारी बारिश से मध्यम वर्षा दर्ज की गई, जबकि कुछ जिलों में उमस भरी गर्मी का दौर बना रहा। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और कहीं कहीं बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भी हो सकती है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आपात स्थितियों में उपचार सुनिश्चित करने को स्थापित होगा प्रदेशव्यापी एकीकृत ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अकादमी की नवीन परिसर का किया लोकार्पण, कहा जनहितकारी नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करना प्रशासन का काम। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा दोषियों को मिलना चाहिए कठोर दंड। और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श पशु चिकित्सालय की स्थापना करेगी सरकार, सघन उपचार के लिए पशुओं को भर्ती करने की भी होगी सुविधा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ, यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीटिंग वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है वायलिन वादन। कलाकार हैं विदुषी एन राजम। राग है देवगिरी बिलावल। आपके साथ तबले पर साथ दे रहे हैं विजय घाटे और तानपुरा पर हैं सीतानाथ विश्वा और संदीप।

0: अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को सुन रहे थे। इसके अंतर्गत आपने वायलिन वादन सुना। राग था देवगिरी बिलावल, कलाकार थीं विदुषी एन राजम। आपके साथ तबले पर साथ दे रहे थे विजय घाटी, और तानपुरा पर थे सीतानाथ विश्वा और संदीप। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया जा रहा था। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1,242 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात। रिले होगा हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
2: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
3: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक CG सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने

0: के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहां निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
2: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 trillion के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्ट्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारी

0: के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन, टैंक, मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी एप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को

0: लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें। मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती। बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है। अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects in Rajasthan and Gujarat today to inaugurate country's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra. Gujarat anti-terrorist squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Center reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across country due to El Nino. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruise into pre-quarterfinals. And men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today to inaugurate and lay the foundation stone of several development projects. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project worth 480 crore rupees is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. He will also launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. These projects span multiple sectors, including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. Prime Minister Modi will also lay the foundation stone for Phase 2 of the Jaipur Metro Rail project, which has a total cost of over 13,000 crore rupees. More from our correspondent.
3: The refinery and petrochemical complex is expected to open new avenues for investment, employment and industrial growth in the state's western districts. The Rajasthan refinery project will also boost sectors such as MSMEs, packaging, textiles, auto components and agri film, providing a fresh boost to the state's economy. Built on Rajasthan's challenging desert terrain, the project is a remarkable feat of engineering. The second phase of Jaipur Metro Rail project will develop the north-south corridor, significantly enhancing the city's multimodal connectivity. The corridor will integrate metro services with the airport, railway station and bus terminal, providing seamless and more convenient public transport for citizens. Jitendra Dwivedi, Akashwani News, Jodhpur.
2: Later in the evening, Prime Minister Modi will travel to Gujarat, where he will inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility at Sanand in Ahmedabad. The project is one of the first 4 approved under the India Semiconductor Mission and has been developed with a total investment of over 7

0: all three services to boost combat readiness. All the dailies have noticed the government's order on removal of the three Chinese apps after these were allegedly found being misused for stalling e-rickshaws. The Hindu writes, SIT likely to re-audit Ram Temple Trust accounts for 5 years. And finally, a report in Times of India states, Bangalore, Chandigarh and Delhi having the highest average income in the country. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects in Rajasthan and Gujarat today to inaugurate country's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra. Gujarat anti-terrorist squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Centre reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across country due to El Nino. IMD issues a red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruise into pre-quarterfinals and men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वो बालोतरा में मुल्क के पहले ग्रीनफील्ड मरबूत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। दहशतगर्दी की रोकथाम के गुजरात स्क्वाड ने पाकिस्तान में कायम दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। मरकज ने एल नीनो के सबब मुल्क के कुछ इलाकों में मामूल से कम बारिश और खुश्कसाली की इम्कानी सूरत हाल का जायजा लिया। भारत के महकमे मौसमियात ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा आलमी कप में अर्जेंटीना मियामी में कैबो वर्डे को एक सनसनीखेज मैच में 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में दाखिल हो गया है। मिस्र भी प्री क्वार्टर फाइनल्स में दाखिल हो गया है। और आज शाम मैनचेस्टर में दूसरी टी20 में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक रोजा दौरे पर जाएंगे। पहले वो राजस्थान जाएंगे जहां वो आज सुबह जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद जनाब मोदी बालोतरा जाएंगे जहां वो आज दोपहर तरक्याती प्रोजेक्टों को मुल्क के लिए वक्फ करेंगे, इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों पर तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रुपये की लागत आई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: उम्मीद है कि रियासत के मगरबी जिलों में रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से सरमायाकारी, रोजगार और सनअती तरक्की के नए मौके पैदा होंगे। राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट से एमएसएमईज, पैकेजिंग, कपड़े की सनअतों, ऑटो कलपुर्जों और एग्री फिल्म जैसे शोबों को भी फरोग हासिल होगा, जिससे रियासत की मईशत में एक नई तकवियत पैदा होगी। ये प्रोजेक्ट राजस्थान के चैलेंजिंग सहरा में बनाया गया है, जो इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले से शुमाल जनूब राहदारी, खासतौर पर शहर की कसीर मॉडल कनेक्टिविटी को फरोग हासिल होगा। इस राहदारी से मेट्रो ट्रेन, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल से मरबूत हो जाएगी। वज़ीर आज़म के इस प्रोग्राम के रवां टेलीकास्ट के लिए रियासत के सभी जिला सदर दफ्तरों, शहरी बलदियाती इदारों और ग्राम पंचायतों में खसूसी इंतजाम किए गए हैं। जोधपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
2: बाद में शाम को वजीर आजम मोदी गुजरात का दौरा करेंगे। यहां वो अहमदाबाद के सनन इलाके में बाहर से मंगाए गए सीजी सेमीकंडक्टर के कलपुर्जों के तरतीब और तजुर्बाती मरकज का इफ्तिताह करेंगे। ये इफ्तिताह भारत के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के सफर में एक अहम संगे मील है, जिसके तहत भारत के पहले शुरू से आखिर तक चिप पैकेजिंग यूनिट में कमर्शियल प्रोडक्शन का आगाज हो जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
4: बाहर से मंगाए गए सीजी सेमीकंडक्टर के कलपुर्जों के तरतीब और तजर्बाती मरकज ओसेट से ایک خود کفیل ٹیکنالوجی ایکو نظام کی

0: जानिब भारत के सफर में एक बड़े संगमील की अक्कासी होती है। इस यूनिट में मस्नूई जहानत और आला कारकर्दगी वाली कंप्यूटिंग के शोबों में तेजी से तरक्की हुई है। ये यूनिट एडवांस्ड मेमोरी और स्टोरेज के लिए आलमी मांग को पूरा करने के मकसद से कायम किया गया है। सनंद में ज्यादा पैदावार से अहम सनतों में आलमी और घरेलू सारफीन को बराह रास्त फायदा होगा। इन सनतों को ऑटोमोटिव, सनती खुदकारी, 5G मवासलात और इंटरनेट ऑफ थिंग्स शामिल है। अहमदाबाद से अपर्णा खून की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: गुजरात के इंसदादे दहशतगर्दी दस्ते ATS ने पाकिस्तान में कायम ममनुआ दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। इन अफराद को गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला से कल एक साथ की गई कार्रवाईयों के दौरान गिरफ्तार किया गया।

अजला से कल एक साथ की गई कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस के मुताबिक मुलजमीन पाकिस्तानी आकाओं के राबते में थे और अपनी दहशतगर्दाना सरगर्मियों को मजीद तौसी देने के लिए गुजरात में एक सरगर्म नेटवर्क कायम करने के लिए जैश मोहम्मद की जानिब से सरगर्म अमल थे। ये अफराद जैश मोहम्मद के नुक्ते नजर की तशहीर के लिए उनके मवाद को गुजराती जबान में तर्जुमा करने का काम भी कर रहे थे। कौमी राजधानी में अब तक 1,02,000 से ज्यादा शुमारियाती फॉर्म्स डिजिटाइज्ड किए जा चुके हैं। दिल्ली के आला इंतखाबी अफसर के दफ्तर के मुताबिक दिल्ली में इंतखाबी फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी के अमल के हिस्से के तौर पर तकरीबन 33,14,000 फॉर्म्स तकसीम किए गए हैं। दिल्ली में घर घर जाकर शुमारियाती फॉर्म्स तकसीम करने का काम फिलहाल जारी है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की बरामदात के अपने निशाने को हासिल करने की तरफ बढ़ रहा है, जिसके तहत रवां माली साल की पहली सहमाही में तकरीबन 15% सालाना बरामदात का रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। कल नई दिल्ली में तिजारती मीटिंग के बोर्ड से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि इस निशाने को हासिल करने के लिए अशिया की बरामदात में इजाफे की जरूरत होगी। ये बरामदात अभी तकरीबन 480 अरब अमरीकी डॉलर्स की हैं, जिसमें इजाफा करके इन्हें तकरीबन 530 अरब अमरीकी डॉलर मालियत का किया जाएगा, जबकि खिदमात की बरामदात में सरदस्त तकरीबन 421 अरब डॉलर की मालियत में इजाफा करके इसे तकरीबन 470 अरब अमरीकी डॉलर किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह और ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने एलनीनो की वजह से मुल्क के कुछ इलाकों में मामूल से कम बारिश और इसके असरात से मुतालिक सूरतेहाल का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत मुल्क के कुछ इलाकों में एलनीनो की वजह से मामूल से कम बारिश और खुश्क साली के इम्कानी हालात से मुतालिक सूरतेहाल पर लगातार करीबी नजर रख रही है। उन्होंने ज़राअत की वजारत और मुतालिक वजारतों को हिदायत दी कि वो चौकन्ना रहें और रियासती सरकारों के साथ तालमेल रखें ताकि किसानों को सही फसल बोने के बारे में मशवरा दिया जा सके। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि सहाफत को सदाकत, मोतबरियत और आला तरीन पेशावराना मेयारात पर अहदबस्ता रहना चाहिए। कल नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर्स वीकली के 80वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर ने कहा कि जब मीडिया मुत्तला करता है, सवालात करता है और मोतबरियत बरकरार रखते हुए अवामी मुबाहसे को फरोग देता है तो जमहूरियत को फरोग हासिल होता है। जम्मू कश्मीर में सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू में हर रोज हजारों यात्री पहुंच रहे हैं। इस मौके पर अकीदतमंदों, सयाहों और मकामी लोगों के लिए नई दिलचस्प सरगर्मियां शामिल की गई हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने तवी दरिया के किनारे कश्ती की सहूलत शुरू की है। इसके अलावा पैडल वाली कश्तियां, राफ्ट्स, मोटरबोट्स और शिकारा की सहूलियात से भी यात्री लुत्फानंदोज हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कल सालाना अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 12,168 यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। डिप्टी कमिश्नर और सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट्स ने बालतल के दो बेस कैंपों से यात्रियों को 3,880 मीटर बुलंदी पर वाकई पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यात्रियों से अपील की गई है कि वो पेशगी इंदराज के बाद उनके लिए मखसूस की गई तारीखों पर ही पवित्र गुफा के दर्शन के लिए जाएं। ईरान में साबिक रूहानी पेशवा आजम आयतुल्ला सैयद अली खामनई की सरकारी तौर पर 6 रोजा आखिरी रसूम की तैयारियां जारी हैं। ईरान के सीनियर रहनुमा, फौजी कमांडर्स और गैर मुल्की शख्सियतों ने आयतुल्ला अली खामनई को ईरान के मुसल्ला अजीम में खराज अकीदत पेश किया। बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और खारजी उमूर के वजीर ममलिकत पवित्रा मार्गरीता ने आखिरी रसूम में शिरकत की। उनके जसद खाकी का जुलूस अगले कुछ दिन तक जारी रहेगा। इसके बाद मुकद्दस शहर मशहद में इस महीने की 9 तारीख को उनकी तदफीन कर दी जाएगी। सरकारी तौर पर यह सोग 40 दिन तक जारी रहेगा।
भारतीय आला इंतखाबी कमिश्नर जनाब ज्ञानेश कुमार आज दो रोजा दौरे पर मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। ओहदा संभालने के बाद उनका यह रियासत का पहला दौरा होगा। पहले दिन वो इंदौर पहुंचेंगे जहां वो बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे।

श्रोताओं, आज की मधुरमा के साथ है। नमस्कार आपके रेडियो साथी सिद्धार्थ का। आज हिंदी फिल्मों में समय समय पर अवसर विशेष को ध्यान में रखते हुए गीत नृत्य के साथ जो फिल्माए गए उन गीतों में से कुछ सुपरहिट गीतों को लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। ये गीत सुपर डुपर हिट रहे इसकी वजह थी क्योंकि इन गीतों में जो तासीर थी, जो मिठास थी, वो अलग लेवल की थी। और इसी कड़ी में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म बॉबी का झूठ बोले कौवा काटे। इस गीत में हम सबसे पहले तो रिलीज़ डेट आपको बता दें, सन 1973 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी और इस गीत को गाया था लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह के साथ साथियों ने, और फिल्माया गया ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया पर। इस गीत को लिखा विट्ठल भाई पटेल ने और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, इसी कड़ी में ये दूसरा गीत है फिल्म जानी दुश्मन, रिलीज़ 1979, और राजकुमार कोहली निर्देशक इस फिल्म के थे, और गीत है सुन भाई साधु। किशोर कुमार, आशा भोंसले, महेंद्र कपूर, और इस गीत में इन्हीं की मुख्य आवाज़ें थीं, और गीतकार वर्मा मलिक, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मधुरिमा आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से।

श्रोता, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मधुरिमा, और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं गीत जो नृत्य प्रधान थे और बहुत हिट साबित हुए उस ज़माने में। उन फिल्मों में से कुछ चुनिंदा फिल्मों के गीतों को हम आज इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं, और आज का सफ़र हम तय कर रहे हैं। और अब हम आपको सुनवाते हैं, ये जो तीसरा गीत है इसे हमने लिया है फिल्म धर्मवीर से, जो सुपर डुपर हिट अपने ज़माने में रहा, और सन 1977 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, पर्दे पर नजर आए धर्मेंद्र, जीतेंद्र, जीना तमान और नीतू सिंह।

और अब ये गीत फिल्म राज तिलक से, रिलीज सन 1984, निर्देशक राजकुमार कोहली, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, गाया इस गीत को किशोर कुमार और आशा भोंसले, साथ दिया अलका याग्निक ने और गीतकार पद्मा मलिक, इसमें पर्दे पर सुनील दत्त, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, रेना रॉय आपको नजर आएंगे। आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म राज तिलक से।

और अब ये गीत फिल्म तोहफा से रिलीज सन 1984, निर्देशक के राघवेंद्र राव, संगीतकार बप्पी लहरी, गीत तोहफा तोहफा लाया लाया, आशा भोंसले किशोर कुमार की आवाज़। और इसी गीत के साथ ही आज का मधुरिमा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न करने की, अपने रेडियो दोस्त सिद्धार्थ को दें अनुमति। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम शामिल किए थे उन नृत्य प्रधान फिल्मी गीतों को जो अपने ज़माने के सुपर हिट, यानी कहीं तो सुपर डुपर हिट थे।

0: The sound of melody, Madhurima.
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत की सदाबहार, फिल्मी गीतों पर आधारित मधुरिमा। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर। अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से रिली होगा। ठीक 9:15 पर आप सुनेंगे जिले की हलचल।

0: लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए उन्नाव और हापुड़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं उन्नाव जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास शुक्ला का।
2: जनपद उन्नाव में बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सदर विधानसभा के ग्राम पंचायत डीह में 570 करोड़ की लागत की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम में पहुंचकर सर्वप्रथम सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया गया तथा बाल विकास सेवा एवं पोष्टाहार विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल पर पहुंचकर दो गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कर पोषण पोटली भेंट की गई व दो नवजात शिशुओं का अनुप्राशन कर उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को डेमोचेक प्रमाण पत्र व आवास की चाबी देकर सम्मानित किया। जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्नाव आध्यात्मिक साहित्य व क्रांति की धरा है। उन्होंने कहा कि आज जनपद उन्नाव हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, विकास की हर योजना उन्नाव में लागू है। आज यहां की कनेक्टिविटी हर तरफ से 4 लाइन हो गई है। गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए उन्नाव वासी लखनऊ को बाईपास कर सीधे दिल्ली प्रयागराज जा सकते हैं। कानपुर के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी बन रहा है। उन्नाव व कानपुर की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए गंगा नदी में अतिरिक्त ब्रिज की भी मांग पूरी की गई है। हम उन्नाव को पिछड़ने नहीं देंगे। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर व गंगा एक्सप्रेसवे पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित करने के लिए जमीन अधिग्रहण हो चुका है। उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर के लिए लगभग 700 एकड़ और 200 एकड़ लैंड इंडस्ट्रियल क्लस्टर के लिए उन्नाव जनपद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। चारों ओर रिंग रोड बनेगी। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की तैयारी चल रही है। सरकार 100 वर्ष की कार्य योजना को लेकर कार्य कर रही है।
3: यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप हो सके इसके लिए भी हम लोगों ने उन्नाव जनपद में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी कर दी है और तेजी के साथ नए उद्योग अब उन्नाव जनपद में लगेंगे। यहाँ के नौजवानों को यहीं पे रोजगार प्राप्त होगा।
2: जिले के पुलिस लाइन ग्राउंड परिसर में राज्य ललित कला अकादमी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा व जिलाधिकारी घनश्याम मीना की उपस्थिति में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों, समाज सेवियों द्वारा सामूहिक योग अभ्यास किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि योग को मानव जीवन में महत्व के बारे में कहा कि योग स्वास्थ्य संतुलित एवं तनाव मुक्त जीवन का आधार है। उन्होंने सभी नागरिकों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए आह्वान किया। जिले में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सोरामू में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। इस अवसर पर उन्होंने निराश्रित 108 बालिकाओं से संवाद किया। इस दौरान राज्यपाल ने बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन और उनके भविष्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर जानकारी ली। उन्होंने बालिकाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि समाज के प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित और बेहतर वातावरण प्रदान करना सरकार और समाज दोनों का ही सामूहिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर राज्यपाल ने निराश्रित बालिकाओं की सुरक्षा, देखभाल और सुविधाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों एवं स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बालिकाओं के समुचित पालन पोषण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कार्य करने पर जोर दिया। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि बालिकाओं को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाए। जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान का शुभारम्भ किया गया। जिला अस्पताल परिसर से शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को संचारी रोगों से बचाव के प्रति जागरूक करना। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकालकर स्वच्छता और स्वास्थ्य सुरक्षा का संदेश दिया। जागरूकता रैली में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बच्चों ने हाथों में संचारी रोगों से बचाव संबंधी संदेश लिखा।

0: तख्तियां ले रखी थी, उन्होंने नारे लगाकर लोगों को अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई बनाए रखने की अपील की। छात्रों ने लोगों को जल भराव से होने वाली खतरे के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि घरों के आसपास पानी जमा होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं।
1: उन्नाव जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हापुड़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रविन्द्र कुमार का।
2: इस सरकार की एक जनपद एक उत्पाद ODOP और वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन पहल के तहत हापुड़ के पेठे को आधिकारिक तौर पर शामिल किए जाने से हापुड़ के पेठा निर्माताओं और जनता में काफी हर्ष है। हापुड़ के पेठे को आगरा के समान राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी। वर्तमान में जनपद हापुड़ में 6 इकाइयां स्थापित हैं जो तरह तरह के पेठे बना रही हैं। सरकार की इस पहल के तहत हापुड़ जनपद में लगभग 150 नई पेठा इकाइयां लगाई जाएंगी, जिससे पेठा उद्यमियों और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक इकाई पर 10 लाख रुपए तक का अनुदान सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। अब हापुड़ के पापड़ के बाद हापुड़ के पेठे को भी नई पहचान मिल रही है।
3: ये जो ODOC में हापुड़ के पेठे को जो शामिल किया गया है, इससे न केवल प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे भी पेठे की पहचान बनेगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार का, जिन्होंने हमारे हापुड़ के पेठे को भी ODOC में लिया।
2: विश्व योग दिवस के अवसर पर हापुड़ जनपद में जगह जगह योग शिविर आयोजन किए गए, जिसमें लोगों ने योग के माध्यम से स्वस्थ रहने के गुर सीखे। योग क्रियाओं को करके स्वस्थ रहने और योग को अपने जीवन में उतारने का संकल्प भी लिया। हापुड़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह पहुंचे, जिन्होंने योग क्रियाओं को करके योग से होने वाले लाभ के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक नई पहचान दी है। वहीं हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण ने अवैध भूमाफियाओं की कमर तोड़ने का भी काम किया है। जिले में हजारों वर्ग मीटर में हो रही अवैध प्लाटिंग पर HPDA ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। HPDA की कार्रवाई से अवैध प्लाटिंग माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। प्राधिकरण ने ऐसे कॉलोनाइजर को चिन्हित भी किया है जो अवैध प्लॉटिंग कर सरकार के राजस्व को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे थे। HPDA क्षेत्र में कई जगह भू माफियाओं द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी और बिना मानचित स्वीकृति प्लॉटिंग की जा रही थी, जिससे प्रदेश सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था। साथ ही राजस्व को ऐसे भू माफिया चूना लगा रहे थे, साथ साथ लोगों को भी धोखा दिया जा रहा था, जिसकी सूचना के आधार पर HPDA के अधिकारी और कर्मचारी ने मौके पर पहुंचकर ऐसी अवैध प्लॉटिंग को चिन्हित किया जो राजस्व को चूना लगा रही थी। प्राधिकरण के अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की है कि ऐसी किसी भी कॉलोनी या जगह पर प्लॉट न खरीदें जिसका मानचित्र स्वीकृत न हो, और ऐसे लोगों से भी सावधान रहें जो लोग मानचित्र स्वीकृति का वादा करके लोगों के साथ धोखाधड़ी कर प्लॉट बेचने का काम करते हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों ने यह भी अपील की है कि अप्रूव्ड कॉलोनी में ही प्लॉट खरीदें ताकि सुरक्षित रह सकें। जनपद हापुड़ में आयुष्मान योजना लोगों के स्वस्थ रखने में वरदान साबित हो रही है। आयुष्मान योजना से लोगों को स्वस्थ होने का वरदान मिला है। 15 जून से आयुष्मान कार्ड के लाभ के लिए विशेष शिविर आयोजन किया जा रहा है। जनपद में कार्ड धारक इसका लाभ ले रहे हैं। अस्पतालों में आयुष्मान वार्ड बनाए गए हैं, जिनमें आयुष्मान कार्ड धारकों को प्राथमिकता के आधार पर भर्ती किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान कार्ड का लाभ देकर जन जन को स्वस्थ रखने का काम किया, जिसके लिए जनता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जता रही है। हापुड़ जनपद में पल्स पोलियो अभियान के तहत 692 बूथों पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। जनपद हापुड़ में जिला अधिकारी कविता मीना के निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर किशोर कुमार आहूजा के नेतृत्व में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 692 पोलियो बूथ का सफल आयोजन किया गया। अभियान के दौरान 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक पिलाई गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर किशोर कुमार आहूजा ने बताया कि जनपद में कुल 274,600 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। 15 जून से जनपद में आयुष्मान केंद्रों, CHC, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत सहायकों के द्वारा ऐसे लाभार्थियों के कार्ड बनाए जा रहे हैं जो कार्ड बनवाने से छूट गए थे। ऐसे लोगों को कार्ड बनवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जनपद हापुड़ में मुहर्रम के पर्व पर ताजिया जुलूस और मातमी जुलूस निकाला गया। जनपद हापुड़ में अंजुमन हुसैनी के रजाकारों ने कर्बला के शहीदों को इस शहादत को याद करते हुए खिराजे अकीदत पेश की। आगामी मानसून एवं संभावित बाढ़ की चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हापुड़ द्वारा ब्रजघाट गंगा गढ़मुक्तेश्वर में व्यापक बाढ़ आपदा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों को परखना था, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना तथा आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण किया गया।
1: यह था आकाश

0: आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
1: जिले की हलचल में आज आपने सुनी उन्नाव और हापुड़ जिलों की खबरें।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं। इस कड़ी में ये पहली सूचना हमें प्राप्त हुई है सहायक पुलिस आयुक्त कैंट जनपद वाराणसी से। सूचना अनुसार अखिलेश गौतम पुत्र घुरहू राम, उम्र है 30 वर्ष, रंग गेहुआ, लंबाई 5 फिट 6 इंच, ये 1 अप्रैल 2025 को सुबह 11:30 से लापता हैं। वाराणसी के 52 बीघा रिंग रोड से ये लापता हैं। इनके बारे में और जानकारी की बातें इस प्रकार। पहनावा हाफ काली टी शर्ट और हरा लोअर। इनके पते के बारे में हम बताएं आपको, ग्राम सिसवारा पोस्ट नरवे, थाना दीदारगंज, जिला आजमगढ़। इनके बारे में कोई भी सूचना यदि आपके पास हो तो इन मोबाइल नंबरों पर आप दे सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9795129655। एक और मोबाइल नंबर 8853887295 और 7393057294। इन मोबाइल नंबरों के अलावा आप सहायक पुलिस आयुक्त कैंट जनपद वाराणसी को भी सूचना दे सकते हैं। एक और सूचना हमें प्राप्त हुई है, ये थाना जैतपुरा और कमिश्नरेट वाराणसी से ये सूचना हमें मिली है। सूचना अनुसार हसीन अहमद और पिता का नाम निजामुद्दीन, पता छोहरा खुड़िया का मैदान जैतपुरा वाराणसी, ये लापता हैं। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं, लंबाई है 5 फिट 5 इंच, उम्र है 34 वर्ष, रंग गोरा है और पिता का नाम निजामुद्दीन, पता हमने आपको बताया, J30/52A छोरा खुड़िया का मैदान जैतपुरा वाराणसी। और इनके बारे में कोई भी सूचना आपको मिले तो कृपया इन मोबाइल नंबरों पर सूचित कर सकते हैं। एक और विशेष बात, हसीन अहमद का दिमागी संतुलन खराब होने के कारण 7/12/2025 से ये लापता हैं। मोबाइल नंबर जिन पर आप सूचना दे सकते हैं 7505651292। एक और नंबर है 8318582694। और अभी आप सुन रहे थे कुछ खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर।
3: DTH यानी दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सर्विस, सूचना शिक्षा और मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार, वो भी बिना किसी मासिक शुल्क के, यानी केबल कनेक्शन का झंझट खत्म। दूरदर्शन की डीटीएच सेवा का गुलदस्ता, 30 से अधिक लोकप्रिय टीवी चैनल और साथ में विविध भारती सहित आकाशवाणी के 12 चैनल, सिर्फ एक छोटा सा डिश और सेट टॉप बॉक्स आपके लिए खोले सूचना शिक्षा और मनोरंजन का नया संसार।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। कुछ पलों में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम रेले होगा हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है उर्दू प्रोग्राम।
1: सामीन को इरम का आदाब। आज की ये मुलाकात किसी शहर की सैर भर नहीं बल्कि एक ऐसी तहजीब से रूबरू होने का बहाना है जो सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है। लखनऊ। जी हाँ जनाब, लखनऊ भी क्या खूब शहर है। नाम लीजिए तो यूं महसूस होता है जैसे कोई पुराना दर खुल गया हो और यादों की पूरी एक अलमारी खुल गई हो। कहीं चौक की पुरअसरार गलियां, कहीं अकबरी गेट की रौनकें, कहीं कबाब की उठती हुई खुशबू, कहीं चिकनकारी की नर्म तहें, और इन सब के दरमियान एक आवाज आज भी फिजाओं में तैरती हुई सुनाई देती है। जनाब पहले आप। कहते हैं कुछ शहर नक्शे में बसते हैं और कुछ लोगों के दिलों में। लखनऊ उन्हीं शहरों में से एक है। यहाँ दीवारें भी गोया गुफ्तगू करती हैं, छज्जे भी अदब से झुकते हैं और दरवाजे भी दस्तक से पहले मुस्कुरा लेते हैं। लखनऊ वालों से अदब पर गुफ्तगू करना, जबान की बात करना, सुखन की बात करना कुछ ऐसा ही है जैसे कस्तूरी मृग के सामने खुशबू का जिक्र करना, क्योंकि यहाँ जबान महज अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि रिश्ते निभाने का सलीका है। नवाबी दौर से चली आती ये रवायत आज भी फिजा में मौजूद है। वक्त बदला, रफ्तार बदली, लिबास बदले, बाजार बदला, लेकिन लखनऊ की असल शनाख्त उसकी जबान आज भी वैसे ही है। और इसी दिलचस्प दास्तान के साथ आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं जबान खाने वाली और बोलने वाली दोनों ही जिंदा हैं लखनऊ में। आपने देखा होगा आम शहरों में महज लोग बसर करते हैं लेकिन लखनऊ में जनाब एक अंदाज़े जिंदगी रहता है। ये शहर महज सड़कों पर नहीं चलता, ये शहर बातों में धड़कता है। यहाँ क्या हाल है यूं ही नहीं पूछा जाता, हुजूर मिजाज़े आली कैसे हैं आप? और बस यही एक जुमला इस बात की गवाही देता है कि आपके कदम लखनऊ की सरजमीन पर हैं। लखनऊ की ये शीरीन जबान जिसे जमाना लखनवी उर्दू के नाम से जानता है उसमें सिर्फ उर्दू की नफासत ही नहीं बल्कि अवध की चाशनी भी घुली हुई है। यहाँ महज बात नहीं की जाती बल्कि लिहाज ज्यादा बढ़ता जाता है। हुजूर अगर नागवार ना गुजरे तो एक अर्ज करूं, जनाब नागवार गुजरना तो गैरों का काम है, आप तो अपने हैं। यही तो है लखनऊ का तर्ज बया। यहाँ शिकवा भी मुस्कुराकर अदब के दायरे में रहकर किया जाता है। अगर इजाजत हो तो एक इल्तिजा है और रंजिश वो भी कुछ इस दिलकश अंदाज में बयां होती है। आपसे उम्मीद कुछ ज्यादा ही वाबस्ता कर ली थी हुजूर, यानी बात वही शिकवा वही लेकिन लिहाज ऐसा शीरी कि सामने वाला नाराज होने के बावजूद मुस्कुरा उठे। यहाँ बहस तलवार की मानिंद तीखी नहीं होती बल्कि रेशमी रुमाल की तरह रूह को सहलाती है। इख्तिलाफ भी तहजीब के पैराहन में लिपटा होता है। पुराने लखनऊ में खवातीन की गुफ्तगू को बेगमाती जबान का रुतबा हासिल था। इतनी साफ इतनी नफीस की जैसे गुफ्तगू नहीं हो रही हो बल्कि इत्र की खुशबू फिजा में घुल रही हो। बेगम साहिबा अगर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करने की जरूरत करूँ? फरमाइए आपकी बात सराखों पर, यानी घर के सहन और ड्योड़ियों में भी अदब की रवायत बरकरार रहती थी। मोहल्ले के नुक्कड़ पर बैठे बुजुर्ग हों या छज्जे से आवाज देती कोई अम्मा, हर पुकार में अपनायत का एक समंदर होता था, बेटा जरा इधर तो आइए, और बस इतना सुनते ही सामने वाले का दिल पसीज जाता था। यहाँ बच्चों को महज बोलना नहीं सिखाया जाता था बल्कि गुफ्तगू का सलीका और बातचीत का करीना घुट्टी में पिलाया जाता था। बरखुरदार बड़ों की आमद पर अदब से उठकर सलाम कीजिएगा, यानी लखनऊ में तहजीब किताबों के सफ़ों से कम घर के दालान सहन और बरामदों से ज्यादा सीखी जाती थी। तो जनाब बोलने वाली जबान का ये हसीन सफर यहीं नहीं रुकता क्योंकि

लखनऊ में बातों की चाशनी सिर्फ दीवान खानों तक महदूद नहीं रहती बल्कि बाजार के कूचों तक चली आती है। अब जरा रुख करते हैं सब्जी मंडी की जानिब, क्योंकि यहाँ खरीदारी नहीं होती, यहाँ तो एक महफिल जमती है। मियाँ, भिंडी किस भाव दी? तो सामने से पहले एक अदब भरी मुस्कुराहट मिलेगी और फिर कुछ यूँ जवाब आएगा, जनाब पहले तौल तो लेने दीजिए, दाम आपकी मर्जी और पसंद के मुताबिक तय हो जाएंगे। और अगर आपने कहीं शिकवे के तौर पर कह दिया मियाँ कुछ महंगी मालूम होती है, तो आगे से जवाब हाजिर होगा, अरे हुजूर महंगी कहाँ, आजकल सब्जियां भी इस शहर के मिजाज के मानिंद बेहद नाजुक मिजाज हो गई हैं। बस यही तो है लखनऊ, यहाँ खरीदो फरोख्त भी एक खूबसूरत गुफ्तगू में ढल जाती है। अब जरा रुख कीजिए चखने वाली जबान की जानिब, क्योंकि लखनऊ

0: अब जरा रुख कीजिए चखने वाली जबान की जानिब, क्योंकि लखनऊ का जिक्र हो और यहाँ के जायके की बात ना हो तो दास्तान लखनऊ अधूरी रह जाएगी। ये वो तारीखी शहर है जहाँ कबाबों की सुलगती खुशबू भी फिजाओं में अदब घोलती हुई उठती है, जहाँ शिरमाल महज एक मैदे की रोटी नहीं बल्कि मेजबान के खुलूस का खुला इकरार है, जहाँ बिरयानी सिर्फ एक पकवान नहीं अवध की पहचान बन चुकी एक मुकम्मल रिवायत है, जहाँ दावतें पेट भरने के लिए नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने के लिए दी जाती है। हुजूर थोड़ा और लीजिए, आप लाख मना करेंगे। अरे जनाब, अभी तो दस्तरखान की रौनक ही शुरू हुई है, ये तो महज इब्तिदा है, आप फिर इनकार करेंगे।
1: अरे हुजूर, हमारी तवाज़ो को इतना भी कमजोर ना समझिए, जरा सा और।
0: और फिर आप बखूबी समझ जाएंगे कि लखनऊ की सरजमी पर मेहमान सिर्फ मेहमान नहीं होता बल्कि खानदान का एक फर्द हो जाता है। जब शामे अवध ढल रही हो और किसी कूचे से सीख कबाब की खुशबू परवाज कर रही हो तो यकीन मानिए पेट भरने से पहले यादों को लगती है। यहाँ खाना सिर्फ लज्जत नहीं देता, एक जमाना बयान करता है। हर रेसिपी के पीछे एक किस्सा है, हर दस्तरखान के पीछे एक जज्बा है और हर निवाले के साथ एक दुआ। यहाँ कई पकवान ऐसे हैं जो सिर्फ बावर्ची खाने में तैयार नहीं हुए बल्कि सदियों की तहजीब के चूल्हे पर पके हैं। सच तो ये है कि लखनऊ का दस्तरखान जितना वसी होता है उतना ही कुशादा इस शहर का दिल भी होता है। शाम के ढलते ही चौक के कूचों में तरह तरह के जायकों की खुशबू परवाज करने लगती है, कहीं कबाबों की महक, कहीं निहारी कुलचों की सौंध, तो कहीं शिरमाल की रंगत। हर दुकान जैसे अपने माजी की कोई दास्तान सुना रही हो। हुजूर पहले चख लीजिए फिर फैसला कीजिए, यानी यहाँ खाने का फैसला भी जबान करती है और बात करने का सलीका भी। जब लखनऊ के जायकों की बात हो तो मक्खन मलाई का जिक्र किए बगैर बात मुकम्मल नहीं होती। सर्दियों की वो धुंधली सुबह, ओस की पाकीजा नमी और मिट्टी की सिकोरी में सजी हुई जाफरानी मक्खन मलाई, गोया किसी ने बादलों का कोई मखमली टुकड़ा जमीन पर उतार दिया हो। एक लुकमा मुंह में जाते ही यूं घुल जाता है जैसे कोई ख्वाब, और उसके साथ घुल जाती है पुराने लखनऊ की मीठी यादें। गुजरे जमाने के घरों के दस्तरखानों पर सिर्फ नेमतें नहीं चुनी जाती थीं, उनके साथ में अदब भी परोसा जाता था, नौनिहालों को तरबियत भी दी जाती थी। बेटा पहले मेहमान की खिदमत में पेश कीजिए। और यही वजह थी कि खाने वाली जबान सिर्फ लज्जत तक महदूद नहीं रही, वो रिश्तों की जबान बन गई, खुलूस की जबान बन गई, अपनापन जताने का जरिया बन गई। यहाँ किसी के घर जाना और बिना जियाफत के लौट आना तकरीबन गुस्साखी में शुमार किया जाता है, क्योंकि लखनऊ में महफिल दस्तरखान महज खाने का नाम नहीं दिलों को जोड़ने का बहाना भी है। और अगर किसी लखनवी ने आपको एक प्याली चाय के लिए रोक लिया तो समझ लीजिए वो सिर्फ चाय का इसरार नहीं कर रहा, वो अपने दिल का दरवाजा खोल रहा है, क्योंकि यहाँ चाय में शक्कर कम या ज्यादा हो सकती है लेकिन मेजबान के खुलूस में कभी कमी नहीं आ सकती। हुजूर एक प्याली और हो जाए। और बस यही ये बात वाजे होती है कि लखनऊ में चखने वाली जबान पेट से ज्यादा दिल का रिश्ता कायम रखती है। यहाँ जायका सिर्फ जुबान पर नहीं ठहरता बल्कि यादों में बस जाता है, और शायद इसीलिए जो एक बार लखनऊ की लज्जत चख ले वो उम्र भर भूल नहीं पाता। लेकिन लखनऊ सिर्फ जायके और अदब का शहर नहीं, ये सुखन का शहर भी है, नशस्तों का शहर भी है और अल्फाज को तहजीब का पैराहन पहनाने वाला शहर भी। तो आइए अब रुख करते हैं लखनऊ की उस सहरंगेज दुनिया की जानिब जहां अल्फाज सिर्फ बोले नहीं जाते बल्कि महफिलों में तराशे जाते हैं। लखनऊ की जबान का जिक्र हो और शायरी का जज्बा अंगड़ाई न ले, ऐसा भला कैसे मुमकिन है। ये वही सरजमीन है जहां कभी शामें महज ढलती नहीं थीं, बल्कि आरास्ता हुआ करती थीं, जहां चौक की गलियारों से लेकर नवाबों की कोठियों तक गजलों की सदाएं गूंजती थीं। यहाँ लोग सिर्फ शेर नहीं कहते थे जनाब, यहाँ लोग शेर जीते थे, अर्ज किया है। और बस इस एक सदा के गूंजते पूरी महफिल खामोश हो जाती। किसी के हाथ में चाय का प्याला होता, किसी के हाथ में पान की गिलोरी, और सबकी निगाहें शायर के तर्ज बयां पर टिक जाती थी। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, लखनऊ की यही तो खासियत रही है, यहाँ अल्फाज को भी तहजीब का जामा पहनाया जाता है, यहाँ गुफ्तगू भी एक फन है,

खामोशी भी एक हुनर। कहते हैं अगर किसी को टोकना भी मकसूद हो तो लोग यूं इल्तिजा करते हैं, हुजूर एक गुस्ताखी की इजाजत चाहूंगा। यानी शिकवा वही, मगर अंदाज ऐसा कि सामने वाला नाराज होने के बजाय मुस्कुरा दे। यहाँ की महफिलें सिर्फ सुखन और शायरी की नहीं थी बल्कि वो रिश्तों के आशियाने की भी थी। लोग एक दूसरे को पूरी तवज्जो से सुनते थे, समझते थे और फिर दिल से दाद देते थे। आज सोशल मीडिया के दौर में 2 मिनट की गुफ्तगु 2 सेकंड में खत्म हो जाती है, लेकिन उस सुनहरे दौर में महज एक अदद शेर पर पूरी महफिल घंटों तक दाद देती रहती थी। लखनऊ में अल्फाज सिर्फ सुने नहीं जाते थे बल्कि दिल की गहराइयों में महसूस किए जाते थे। जनाब अगर लखनऊ की तहजीब को कहीं सबसे करीब से देखना हो तो किसी आलीशान इमारत में नहीं बल्कि किसी नुक्कड़ की छोटी सी चाय की दुकान पर बैठ जाए। वहाँ आपको पूरा लखनऊ सिमटा हुआ मिल जाएगा। यहाँ चाय सिर्फ पी नहीं जाती बल्कि बातों की चाशनी में घोली जाती है। एक कुल्हड़ चाय और घंटों की गुफ्तगू, किसी को सियासत की तश्वीश, किसी को खेल का शौक, किसी को अपने नौनिहालों के मुस्तकबिल की फिक्र, तो किसी को गुजरे हुए दिनों की याद। लेकिन एक बात सब में मुश्तरका होती है, बात करने का सलीका और लहजे की नरमी। जनाबे अली, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए किसी का नजरिया जानने का भी कितना दिलकश अंदाज है। और पान, अरे हुजूर पान तो लखनऊ का दस्तखत है, यहाँ की शनाख्त है। यहाँ पान सिर्फ खाया नहीं जाता बल्कि बेहद एहतराम के साथ पेश किया जाता है। लीजिए हुजूर अवध की ये मखसूस गिलोरी कबूल फरमाएं, और अगर आपने कहीं इनकार कर भी दिया तो वो दोबारा पेश किया जाएगा, फिर तीसरी बार भी जोर देकर इल्तिजा की जाएगी, क्योंकि यहाँ मेहमान नवाजी कोई तयशुदा रस्म नहीं बल्कि दिल की एक पाकीज़ा आदत है। गुजरे जमाने में तो कई बड़े मामूलात और रिश्ते महज एक पान की गिलोरी पर तय हो जाते थे। किसी की दोस्ती, किसी की सुलह सफाई, किसी की मोहब्बत, सबकी इब्तिदा इसी खास गिलोरी से होती थी। यानी पान यहाँ सिर्फ एक जायका नहीं बल्कि दिलों की मिठास और आपसी ताल्लुकात का एक मुकम्मल जरिया भी है। जनाब लखनऊ की बोलने वाली जबान और चखने वाली जबान के साथ साथ अवध की एक और मुनफरिद पहचान भी है, एक ऐसी शनाख्त जो लफ्जों से बोलती नहीं मगर बहुत कुछ बयां कर जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिकनकारी की। चिकनकारी यानी कपड़ों पर बारीक धागों से लिखी हुई एक खामोश गजल, सफेद मलमल पर उभरते हुए नाजुक और नफीस बेल बूटे, इन्हें देखकर ऐसा मालूम होता है जैसे किसी मुसव्विर ने कपड़े पर शेरों की नक्काशी कर दी हो। इसका हर एक बूटा अपने दामन में सदियों की मेहनत समेटे हुए है। सदियों से अवध के ये बाकमाल दस्तकार इस नायाब मीरास के जरिए दुनिया भर में सुर्खरू हैं। बेटा ये हुनर उजलत का मोहताज नहीं, इसमें इम्तिहाई सब्र और वक्त की आंच लगती है, और शायद यही बात लखनऊ की इस पूरी तहजीब पर भी सादिक आती है। यहाँ रिश्ते भी उजलत में नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ते हैं, गुफ्तगु भी ठहर ठहर कर होती है, और मोहब्बत भी हमेशा अदब और लिहाज के साए में की जाती है। सच तो ये है कि चिकनकारी सिर्फ कपड़े पर की गई कशीदाकारी नहीं बल्कि लखनऊ की रूह का नूरानी अक्स है। तो जनाब हर शहर के दामन में उसकी कुछ यादें होती हैं, लेकिन लखनऊ का मामला जरा जुदा है। ये शहर अपनी यादों को किसी मुकद्दस अमानत की तरह सीने में लगाकर रखता है। एक दौर था जब इस पूरे शहर की सड़कों पर तांगे और बगियां चलती थीं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बिना किसी जल्दबाजी के, मानो ये शहर गुजरने वाले राही से इल्तिजा कर रहा हो, जरा ठहर जाइए हुजूर, पहले जिंदगी को जी भर कर महसूस तो कर लीजिए। हुजूर कहाँ तशरीफ ले चलने का हुक्म है, और अगर आपने कहीं उनसे रास्ता भी पूछ लिया तो पहले एक अदब भरा सलाम मिलेगा और फिर कुछ यूं जवाब आएगा, हुजूर मंजिले मकसूद तक तो पहुँचा ही दूंगा मगर रास्ते में आपको लखनऊ का दीदार भी कराते चलेंगे। और सच पूछिए, लखनऊ को देखने और समझने का सबसे बेहतरीन रास्ता खुद लखनऊ वालों के दिलों से होकर ही गुजरता है। पुरानी हवेलियाँ, पुराने झरोखे, इमामबाड़ों की शानो शौकत, रूमी दरवाजे की अजमत और चौक की गलियों की रौनक सब मिलकर एक ऐसी हसीन तस्वीर बनाते हैं जो वक्त के थपेड़ों से कभी धुंधला नहीं होता। पुराने लखनऊ में शाम का एक अलग ही रंग हुआ करता था। छतों और सहन में

चारपाइयां बिछ जाती थीं, फिर आगाज होता था दास्ताने गोई और गुफ्तगु की उस रिवायती महफिल का। कोई पुराना किस्सा छेड़ता तो कोई नया सुनाता और वक्त चुपचाप गुजर जाता। आज बहुत कुछ बदल गया है, जमाना आगे बढ़ गया, लेकिन यादें आज भी उसी मोड़ पर खड़ी हैं और उसी पहले आपके इंतजार में। तो जनाब, वक्त का पहिया कभी थमता नहीं, हर शहर बदलता है, हर नया दौर अपने साथ एक नई रफ्तार लेकर आता है। हमारा लखनऊ भी बदला है, अब चौक की तंग गलियों के साथ साथ चौड़ी और कुशादा सड़कें हैं। पुराने तांगों की जगह अब मेट्रो की तेज रफ्तार ने ले ली है, पुराने खतूत की जगह अब मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का जमाना है। अब लोग वीडियो कॉल पर मुलाकात कर लेते हैं और महज एक क्लिक पर दुनिया भर की खबरों से आगाह हो जाते हैं। लेकिन इन तमाम जाहिरी तब्दीलियों के बावजूद कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज भी टस से मस नहीं हुई हैं। आज भी अगर कोई मेहमान घर आ जाए तो पूरे घर का माहौल बदल जाता है। अरे बेटा, पहले ठंडा पानी का गिलास तो लाइए, मेहमान तशरीफ लाए हैं। भाई साहब, आप यहाँ तशरीफ रखिए। देखिए, महज दो लफ्ज हैं, लेकिन इन्हीं दो लफ्जों के साए में पूरा लखनऊ सांस लेता है। नए जमाने की एक नस्ल अंग्रेजी बोलती है, जदीद टेक्नोलॉजी से वाबस्ता है, दुनिया भर में आला ओहदों पर फराइज हैं, लेकिन जब अपने आशियाने को लौटती है तो दादी अम्मा की दुआएं भी लेती है और बड़ों को निहायत अदब से तस्लीम भी करती है। यही तो हमारे लखनऊ की असल खूबसूरती है। ये शहर वक्त की रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन अपने बाबा व अजदाद की विरासत को हमेशा अपने सीने से लगाकर रखता है। आज नए लखनऊ में आलीशान मॉल्स हैं, कैफे हैं, गगनचुंबी इमारतें हैं, जगमगाती रोशनी है और एक तेज रफ्तार है, लेकिन पुराने लखनऊ का अक्स अब भी इसके कदम ब कदम साथ चलता है। रूमी दरवाजा आज भी अपनी अजमत के साथ सीना ताने खड़ा है, इमामबाड़े आज भी गुजरे दौर की दास्तान सुनाते हैं और चौक की गलियां अब भी मुस्कुराकर राहगीरी का इस्तकबाल करती हैं। ये शहर लिबास बदलता है, मिजाज बदलता है, मगर अपनी रूह कभी नहीं बदलता। तो जनाब, लखनऊ महज एक शहर का नाम नहीं, लखनऊ तो एक एहसास है, एक दिलकश अंदाज है, एक पाकीज़ा रवायत है, फिजा में रची बसी एक सौंधी सी खुशबू है, एक मखमली आवाज है, एक लाजवाब जायका है, और इन सब से बढ़कर लखनऊ एक जीती जागती तहजीब का नाम है। यहाँ बोलने वाली जबान भी जिंदा है और चखने वाली जबान भी। यहाँ लफ्जों में शीरी बयानी है और पकवानों में बेपनाह लज्जत और मोहब्बत। यहाँ शायरी आज भी महफिलों में सांस लेती है और अदब रोजमर्रा की गुफ्तगू में नुमाया होता है। यहाँ पान सिर्फ एक गिलौरी नहीं, मेजबान की मेहमान नवाजी है। यहाँ चाय सिर्फ एक प्याली नहीं, दिलों को जोड़ने का बहाना है। यहाँ चिकनकारी सिर्फ कपड़े पर सुई धागे का हुनर नहीं, हमारी सदियों पुरानी साझी विरासत का अक्स है। और यहाँ पहले आप महज दो लफ्ज नहीं, बल्कि जिंदगी बसर करने का एक मुकम्मल फलसफा है। कितना मुख्तसर सा जुमला है, पहले आप, मगर इन्हीं दो लफ्जों के साए में लखनऊ की सदियों पुरानी तहजीब सांस लेती है। दूसरों को तरजीह देना, खुलूस और अदब से पेश आना और रिश्तों को पाकीजगी से निभाना, यही इस शहर का असल हुस्न है। जब तक इस शहर के किसी कूचे में कोई बुजुर्ग किसी बच्चे को दुआओं से नवाजता रहेगा, जब तक किसी आशियाने के दस्तरखान पर मेहमान की मिन्नत व असरार से तवज्जो होती रहेगी, जब तक किसी अदबी महफिल में कोई शायर अर्ज किया है कहकर आगाज गुफ्तगू करता रहेगा, जब तक किसी छोटी सी दुकान पर खरीदार को हुजूर कहकर पुकारा जाता रहेगा, और जब तक यहाँ के किसी मोड़ पर कोई अजनबी मुस्कुराकर कहता रहेगा जनाब पहले आप, तब तक हमारा लखनऊ जिंदा रहेगा, उसकी तहजीब भी, उसकी शीरीन जबान भी, उसका बेमिसाल जायका भी और उसकी ये नायाब शनाख्त भी। इसी मौके पर अवध की इस नफासत को बयां करता एक दिलनशी शेर याद आता है। इस अदा से उसने मुझे सलाम किया, इस अदा से उसने मुझे सलाम किया, एक ही आन में गुलाम किया। इसी अदब, इसी नफासत, इसी बेपनाह मोहब्बत और इसी मुनफरिद लखनवी अंदाज के साथ इरम को इजाजत दीजिए। आदाब। लखनऊ

0: समाप्त फरमा रहे थे उर्दू कार्यक्रम में। प्रेजेंटर थी इरम मिर्जा और कार्यक्रम की पेशकश थी आसिफ इकबाल की। श्रोताओं, आज का उर्दू कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ मरकज पर तैयार किया गया और आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से ही नशर किया जा रहा था।
1: मीडियम वेव 241.5 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:50 और 44 सेकेंड आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं वीरेंद्र कुमार चौबे। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं इनका गाया दादरा

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं वीरेंद्र कुमार चौबे। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं ये छपरहिया।

संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी वाराणसी से फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गीत है मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम जंजीर और संगीत कल्याण जैन जी का, गीत गुलशन बावरा का। 10:01:05
1: हम पे आला हमने वाला हम सफर हम राज हो ता कयामत

श्रोतम कार्यक्रम का ये दूसरा गीत फिल्म डॉन से है। आवाज़ किशोर कुमार और साथियों की हैं, रचना अनजान की और संगीत कल्याण जी आनंद जी। और 10:07 और 45 सेकंड।

श्रोताओं, अगला गीत फिल्म ज़मीर से है और संगीत सपन जगमोहन का, किशोर कुमार की आवाज़, रचना साहिर की।

श्रोतों कार्यक्रम फिल्म संगीत का झनकार आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज हम आपके लिए उपलब्ध हैं। डीटीएच डीआरएम 1233 किलो हर्ट्ज वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म और न्यूज़ ऑन आईआर मोबाइल ऐप पर।

श्रोताओं, ये अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रोटी से, और इस गीत को गा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर, संगीत लक्ष्मीकांत पेरेलाल का और रचना है आनंद पक्षी की। 10:20 और

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: फिर एक बार

भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती है आपकी बातें। और साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वही हमारा साथ।

बिक जाए पगड़ी मेरी चाहे बिक जाए हल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमक के चल। जरा लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट झटक झटक के।

श्रोता मोहम्मद रफ़ी और आशिक भोसले की आवाज़ें, फिल्म का नाम पवित्र पापी, संगीत इस गीत के लिए गीत और संगीत था प्रेम धवन का और कार्यक्रम फिल्म संगीत का झनकार आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। अब कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनिए हमारा आप साथ साथ।

श्रोताओं, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम काला पत्थर, रचना साहिर की और संगीत राजेश रोशन का, 10:32 और 48 सेकेंड।

श्रोताओं, ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार आपके लिए पेश किया जा रहा है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1240 किलो हर्ट्ज पर। ये गीत जो आप सुन रहे हैं, इसमें आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, रचना मनोज कुमार का और संगीत उत्तम सिंह का। फिल्म का नाम पेंटर बाबू।

हम किसी से कम नहीं फिल्म का नाम था, और आवाज़ें आशा भोसले और किशोर कुमार की थीं, संगीत आर डी बर्मन का और रचना मजरूह सुल्तानपुरी की थी। 10:46 और 47 सेकेंड। फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से।

श्रोताओं, ये किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाज़ें थीं। फिल्म का नाम था दोस्ताना, संगीत लक्ष्मीकांत परेलाल का और रचना आनंद बख्शी की थी। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं सिर्फ तुम की ये रचना।

सिर्फ तुम फिल्म के इस कव्वाली के साथ ही आज का झंकार कार्यक्रम समाप्त तो होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे प्रसारण आपको मीडियम वेव के मीटर, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH, DRM और वेब OTT पर एक साथ उपलब्ध हैं।

दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। आज की प्रस्तुति अरुण पांडेय की।

0: इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का।
1: एक्सक्यूज मी,
2: क्यूट है ना?
0: और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार।
3: सलाम।
0: आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 222-1052 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से।
4: जी कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
5: जी सर नमस्कार।
4: नाम बताइए अपना।
5: सर बड़े दिनों के बाद आपसे बात हो रही है, गजराज लोधी बात कर रहा हूँ, रेलाई राज।
4: जी जी, काफी दिनों के बाद हमारी आपसे बातचीत हो रही है, क्या हाल चाल है आपके?
5: सर बहुत अच्छे हैं। सर आप सुनवाइए, क्योंकि काफी दिनों के बाद बात हो रही तो हमारी भी इच्छा हो रही है आपसे पूछने की।
4: जी बिल्कुल, मानसून की आमद हो तो सभी को खुशियां मिले, क्योंकि हम लोग की तरफ अभी गर्मी और उमस का ही आलम है।
5: हमारे यहाँ सर हालचाल बता देता हूँ, यहाँ बारिश हो चुकी है और हमारी बोनी भी हो चुकी है।
4: क्या कहने, तब तो बहुत अच्छी बात है, यानी खेती बाड़ी का काम शुरू हो गया है।
5: जी बिल्कुल सर।
4: इन दिनों जब आप खेती बाड़ी करते हैं, शुरुआत में 20-30 साल पहले हमें नहीं मालूम कि आप उस वक्त क्या करते थे या कब के हैं, लेकिन पहले एक दौर था कि जो लोग रेडियो के ही सुबह के प्रोग्राम सुन करके दिन भर की प्लानिंग करते थे कि आज खेती बाड़ी में करना क्या है।
5: बिल्कुल सर, वो रेडियो जो चौपाल होता था शाम को जो आती थी ना।
4: जी जी,
5: भेड़ बार था, उस हिसाब से होती थी सर पहले खेती।
4: जी, और उसमें विशेषज्ञ आते थे और वो किसानों को जानकारी देते थे। तब मीडिया का इतना ज्यादा दौर नहीं था और एकमात्र रेडियो ही माध्यम था, आकाशवाणी, जिसके जरिए ये जरूरी बातें लोगों तक पहुँचती थी।
5: बिल्कुल सर, बराबर ये बात सच्ची है, और पूरे दिन हमारे साथ रेडियो खेतों के साथ रहता था।
4: जी, और हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, अभी भी अच्छे लग रहे हैं आपको?
5: सर सबसे ज्यादा अच्छे तो हमें वाराणसी और लखनऊ के प्रोग्राम अति सुंदर लगते हैं सर।
4: जी जी, और आज किस गाने की फरमाइश है आपकी?
5: शेषनाग मूवी का सुनवा दीजिए सर। छेड़ मिलन के गीत।
4: छेड़ मिलन के गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत है और ये गीत अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाजों में है। गीत आप तक पहुंच रहा है, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: नमस्कार सर
0: जी, थोड़ा सा तेज बोले, आवाज धीमी आ रही है आपकी।
1: जी हम धर्मवीर कश्यप सब्जी मंडी कसौसावा वार्ड नंबर 1 जिला बदायूं से बोल रहे हैं।
0: बदायूं से आप बोल रहे हैं और हमारे पुराने श्रोता हैं आप।
1: जी जी जी।
0: और ये फोन इन कार्यक्रमों से जुड़ाव आपका कितने वर्षों से है?
1: जी हम तो सुन रहे हैं करीब 20 वर्ष हो गए कार्यक्रम सुनते हुए।
0: और बदायूं में बारिश वगैरह की शुरुआत हुई कि नहीं?
1: बारिश हो रही है बहुत ज्यादा अभी।
0: अच्छा, अभी ज्यादा हो रही है, यानी हम लोग की तरफ बारिश अभी आई नहीं, लेकिन हमें लग रहा है कि अब बदायूं से बनारस बारिश आने वाली है।
1: सुबह से बारिश हो रही है।
0: जी जी, चलिए मानसून का अब जुलाई का महीना भी आ गया है तो बारिश तो होनी चाहिए ताकि खेती बाड़ी का जो काम काज है वो शुरू हो सके और लोगों को गर्मी से राहत मिले। और हमारे कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं आपको?
1: जी सारे कार्यक्रम आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे सुनते हैं सारे प्रोग्राम।
0: जी बिल्कुल, आकाशवाणी का वाराणसी जो केंद्र है उसका फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, वहाँ से सभी श्रोता जुड़े रहे। और कौन से गाने की आज फरमाइश है ये बता दें।
1: आज एक रवि साहब की आवाज में है जीने की राह मूवी, आने से उसके आए बाहर।
0: आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, और ये गीत आप तक पहुँच रहा।

0: कार्यक्रम। हेलो, फोन इन, फरमाइश।
1: अरे सर नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: बहुत ही लकी हम श्रोता है मौनी बाबा धाम चोचकपुर बाजार जिला गाजीपुर से राम शकर चौधरी बोल रहा हूँ सर।
0: आपकी खुशी में हम सब शामिल हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोताओं को शिकायत होती है कि कैसे किसी का फोन लग जाता है और हमारा नहीं लगता, लेकिन राम शकर जी उदाहरण है कि वो मेहनत करते हैं और फोन लग जाता है।
1: जी सर मेहनत तुम करते हैं और लकी भी है, बाबा विश्वनाथ की दया कृपा है सब उनकी सर।
0: बिल्कुल। अच्छा, आप क्या बताएंगे श्रोताओं को, किस तरह से आप प्रयास करते हैं कि लगभग हर हफ्ते आपका फोन लग जाता है?
1: प्रयास क्या करते हैं सर, जिसे काट काट कर थोड़े एक मिनट दो मिनट के बाद लगाते रहते हैं उससे।
0: जी बिल्कुल, हम भी यही श्रोताओं को कहते हैं कि एक दो मिनट के बाद लगाते रहें। दरअसल जब जी
1: दोनों नंबर पर डायल करते रहते हैं किसी नंबर पर लग जाता है।
0: जी बिल्कुल, यही कोशिश करनी है
1: जी। किसी का भाग है और नसीब रहेगा तो लग जाएगा।
0: जी जी जी, तो बढ़िया है। बारिश तो अभी हम लोग के इलाके में शुरू नहीं हुई है।
1: नहीं सर अभी तो बहुत है सर, मौसम रात में ठंडा रहता है सर, सुबह तक 6 बजे के बाद जब धूप आती है ना
0: तो उमस गर्मी वापस से हो
1: जाती है सर।
0: लेकिन हमें जी
1: जी आप बताए आकाशवाणी परिवार के लोग कैसे हैं सर?
0: जी सभी अच्छे से हैं। आज किस गाने की फरमाइश जी, प्रोग्राम के बारे में बताएं।
1: हम तो नियमित श्रोता है, रेगुलर रेडियो पर प्रोग्राम आपसे सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर जी।
0: जी
1: ईमेल पर कृषि जगत कार्यक्रम हुआ, घर आंगन कार्यक्रम, गृहलक्ष्मी, सभी कार्यक्रम वाला सुनते रहते हैं
0: जी। आज किस गाने की फरमाइश है आपकी?
1: सर गाना तो मालूम है सर, सोच रहे हैं कि बारिश का ही गाना सुनने की, कम से कम भगवान सुन ले की हमारी विनती।
0: जी
1: जी, फूल और कांटे है फिल्म सर,
0: हम्म,
1: उसका बारिश वाला गाना, पहली बारिश
0: मैं

0: और तू। तो फूल और कांटे में समीर के बोल नदीम श्रवण का संगीत है और ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर। कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल ने इसे गाया है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार राम सकल जी।
1: धन्यवाद सर, नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो फोन इन फरमाइश सर को नमस्कार।
0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। केसरी सिंह राजपूत, बेरसी जिला भोपाल, मध्य प्रदेश सर।
0: जी, हमारे दूर दूर के श्रोता हमसे जुड़े रहते हैं, बातें करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। और बहुत सारे श्रोता ऐसे भी हैं जिन्हें ये डाउट होता है कि कुछ श्रोताओं के फोन लग कैसे जाते हैं। और चूंकि फोन लगाने वालों में हम लोग नहीं है, तो आप बता दें कि कैसे फोन लग जाता है आप जैसे दूर दराज के श्रोताओं का।
1: सर क्या पता, वो तो एक इत्तेफाक लीजिए, नहीं तो कम से कम 5 या 6 महीने से मैंने ट्राई किया, कुछ कारण बस क्या ऐसा हो गया था, कॉल नहीं कर पाए तो लग नहीं कर पाए ना।
0: जी जी।
1: फिर जब कॉल की तो आज हैट्रिक हो गई सर, 3 हफ्ते से, और बिल्कुल इतनी आसानी से मिल गए तीनों बार के।
0: क्या कहने, तो बहुत बधाई, मुबारकबाद। और अब बताएं किस गाने की फरमाइश है आपकी।
1: गाना सर आप कोई सा भी, आज मैं आपकी पसंद से सुनूंगा पुराना गाना कोई सा भी।
0: तो जैसे कोई फिल्म हो तो आपको याद आ रही है तो बता दें।
1: फिल्में तो सर बहुत सारी हैं, लेकिन आज मेरी इच्छा है कि आपकी पसंद का ही सुनूंगा।
0: अब जब भी श्रोता ऐसा कहते हैं तो हम थोड़ा पशुपेश में हो जाते हैं कि श्रोता को क्या पसंद है, किसके गाने पसंद है, ये थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है।
1: नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, आपकी पसंद हमारी पसंद।
0: तो गीत आप तक पहुँच रहा है एक अच्छा सा, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: बहुत बहुत नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, यानी इंतजार बड़ा लंबा हो गया।
1: अच्छा, हमारा इंतजार था, मुझे तो नहीं लगा।
0: अब ये होता है कि अगर हमें

0: हो न हो हमारे श्रोता तो जिक्र आपका बार बार करते हैं।
1: ये तो श्रोताओं का प्रेम है जो हमारे प्रति बहुत वर्षों से है।
0: तो इस पे थोड़ा सा होता होगा ना, जिसको कहते हैं क्या,
1: ये आवाज थोड़ी सा इको कर रही है तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल।
0: तो आपने वो ईयरफोन लगाया है क्या या स्पीकर ऑन है?
1: मुझे ये मिल रही है, ये हो सकता है नेटवर्क की।
0: हाँ, लेकिन रिकॉर्डिंग ठीक हो रही है, आवाज थोड़ी सी आपकी धीमी है। चलिए,
1: वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भले बात करने में दिक्कत आ जाए।
0: हाँ हाँ हाँ, अब श्रोताओं की इतनी मोहब्बत है, वो आपका इतना इंतजार करते हैं कि उनके लिए तो 2-4-10 परेशानियां झेली जा सकती हैं। नाम बता दीजिए इससे पहले कि उन्हें।
1: उदिता विश्वकर्मा, देवरिया, यूपी से।
0: तो ये कितने दिनों का अंतराल, जिसको आप बड़ा शुद्ध हिंदी में कहती हैं, वो रहा?
1: जी, अगर अंतराल बोले तो दिनों का नहीं बल्कि महीनों का है। जनवरी माह में आखिरी बार हमारी आपसे मुलाकात हुई थी टेलीफोन लाइन के माध्यम।
0: अच्छा, तो भी अच्छा, किसी और माध्यम से तो मुलाकात की संभावना ही नहीं है।
1: नहीं, आना पड़ेगा के लिए।
0: अच्छा, होता ये कि व्यस्तता भी यहाँ इतनी होती है और थोड़ा काम काज, हम लोग का स्टूडियो हाँ, वाला है ना, दफ्तर जैसा काम नहीं है कि कोई आया और बैठ गए, मिल लिए, बात कर लिए, चाय पानी पी लिए।
1: वैसे मेरा भी हो गया व्यस्तता कि हम कॉल भी नहीं मिला सकते।
0: हाँ, तो होते होते हर कोई बड़ा हो जाता है।
1: हाँ, बूढ़ा भी हो जाता है।
0: नहीं, बड़ा होना ये संदर्भ हमारा नहीं था, ये है कि हर कोई मसरूफ हो जाता है अपने काम में।
1: हाँ, वो थोड़ा सा मैंने मजाक मूड में ले लिया था, खैर कोई नहीं, आपकी भावनाओं इससे समझ रहे हैं।
0: नहीं, मेरी भावना की कोई परवाह ही नहीं करनी है, समझदारी तो आ ही जाती है वक्त के साथ साथ।
1: ये तो है खैर। और हालचाल आपके कैसे हैं?
0: अब बस हमारे हालचाल तो प्रोग्राम के जरिए, अगर आपको कभी फुर्सत होती होगी तो मिल जाता होगा।
1: कभी कभी YouTube से ही सुन पाते हैं, खासतौर पे हेलो फोन पर।
0: तो ये जो आपकी व्यस्तता हुई है, ये आपका आपके ये रेडियो रिलेटेड काम के चलते है?
1: दोनों है, पार्लर।
0: अच्छा, पार्लर वाला भी है।
1: पूरा कंप्लीट हो गया, मैं खुद का स्टॉप डाल दिया मैंने।
0: तो बहुत बधाई मुबारकबाद। हुआ ये कि शुरुआत में कॉल की रिकॉर्डिंग अच्छी हो रही थी, अब कट कट के होने लगी है। तो आपका पार्लर खुल गया?
1: जी हाँ।
0: जो इतने अरसे से आपका तो, अच्छा बड़ा लंबा सफर रहा, पहले आप टीचर बनना चाहती थी।
1: हाँ, पहले
0: पहले
1: लेकिन मैंने पढ़ाया भी प्राइवेट।
0: उसके बाद तो आरजे बनना चाह रही थी, तो आरजे तो कुछ हद तक आप बन गई।
1: कुछ हद तक आपको मालूम है सब कुछ? सब कुछ मालूम है।
0: ये तो दुनिया इतनी छोटी सी है ना, कि कोई कितनी भी बातें छुपाए बताए, बात तो वो मालूम हो ही जाती है। लेकिन आप जो प्रोग्राम करती हैं, शायद भोजपुरी में करती हैं?
1: नहीं, सारे हिंदी के भी करती हूँ, भोजपुरी का भी करती हूँ। तो भोजपुरी भी लोग पसंद करते हैं, थोड़ा सा अजीब सा लगता है भोजपुरी, लेकिन गाने काफी कमाल के होते हैं भोजपुरी।
0: जैसे इधर हाल में कौन सा कमाल का गाना है जो आप हमें, हमारे श्रोताओं को अपनी कमाल की आवाज में सुनाना चाहेंगी?
1: भोजपुरी का? अरे वो तो पता नहीं कैसा कैसा।
0: तो यानी आप कैसे कैसे गाने बजाती सुनाती हैं?
1: नहीं नहीं, मैं मर्यादा में रह के ही गाने प्ले करती।
0: तो वैसा ही कोई मर्यादा में रह के वाला गाना कौन सा है?
1: बहुत सारे, पर मैं इतना गाती नहीं हूँ। अब सुनाने लगी ना तो मैं खुद अपनी आवाज में नहीं गाती, जैसे लगता है कि कितना खराब मेरी आवाज है।
0: नहीं, इतने वर्षों तक तो आपकी आवाज बहुत अच्छी थी, हमें लग रहा है 12-15 साल से आप हमारे कार्यक्रम में फोन कर रही हैं।
1: 2014 से।
0: 14 यानी 12 साल तो हो ही गए, इतने में तो बच्चे बड़े हो जाते हैं और आप तो बहुत बड़ी हो गई। तो एक दशक में आप आरजे तो बन ही गई।
1: सुनते हुए आपको हमें हो गया लगभग 7 साल की थी ना, जहाँ तक मेरा माइंड काम कर रहा है तब से मैं सुनती हूँ।
0: और बस
1: आप और पांडु सर तीन लोग आते थे तब।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: तब का जो सिग्नेचर ट्यून होता था ना, उसमें गाने जो मिक्सिंग होते थे, तो वो सुनने के लिए हम बड़े परेशान रहते थे कि इसमें कई सारे गानों का समावेश है, हम सुन ले।
0: आप हिंदी के शब्दों का बड़ा अच्छा प्रयोग करती हैं।
1: तो
0: जैसे अभी समावेश आ गया।
1: हाँ, तो ये तो सुनते सुनते और कुछ पढ़ते पढ़ते तो आ ही जाता है, लेकिन आप जितना तो नहीं आ सकता, आपके तो उर्दू हो या हिंदी हो।
0: अब हम लोग के तो चलने निकलने का वक्त आ गया, दौर आप लोगों का है।
1: कैसे कह दिया आपने, आप ऐसे बोलेंगे श्रोताओं का दिल टूट जाएगा।
0: बस कुछ दिनों का साथ, और खैर जब तक आदमी है, 4 दिन की जिंदगी है, वो 4 दिन अच्छे से यादगार होनी चाहिए।
1: लेकिन आपसे बात करके अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।
0: वो श्रोता जो आपको रोज याद करते थे और कभी कभी हफ्ते में हमारे कार्यक्रम में भी बता दिया करते थे, उनके लिए क्या कहेंगे?
1: ये बताइए, श्रोता याद करते ही रहते हैं।
0: हम तो बहुत सारी हर बात तो प्रोग्राम में कह नहीं सकते ना, राज की बात भी कुछ होनी चाहिए।

0: वैसे आप काफी मशहूर हो गए हैं
1: इन दिनों, क्या
0: इन दिनों भी? और बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ, सोशल मीडिया का जमाना है, इंसान को सब चीजों की खबर रहती है।
1: तो फिर आपने कैसे सोचा कि आपकी खबर हमें नहीं रहेगी?
0: आप खबर लेने वाले ही तो रखेंगे खबर।
1: यानी आपको लगता है कि दोनों ही एक दूसरे की खबर लेते रहते हैं?
0: नहीं, लेते रहते हैं, हम यहाँ वहाँ देखते रहते हैं
1: इस व्यस्तता के बीच
0: ऐसा
1: भी।
0: नहीं, लेकिन मेरे लाइफ
1: अच्छा,
0: में
1: वो शेरो शायरी कुछ जो आप सुनाती थी शुरुआत में, अब पढ़ना लिखना सुनाना बंद हो गया?
0: नहीं, अब तो मेकअप पुट्टी पॉलिश शुरू हो गया ना।
1: अच्छा, तो अब आप बताएं पार्लर रिलेटेड कि वहाँ कितने लोग हैं और कितने अरसे हुए आपने शुरू किया खुद का, कौन सी जगह पे?
0: जी बताना चाहूंगी कि अभी मैंने बहुत हैवी पार्लर नहीं, अभी नॉर्मल ही है क्योंकि शादी नहीं हुई मेरी, तो

0: कि अभी मैंने बहुत हैवी पार्लर नहीं, ये भी नॉर्मल ही है क्योंकि शादी नहीं हुई मेरी, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी पार्लर डाल के कोई मतलब नहीं है। सपोज कीजिए मेरी शादी हुई, फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे सारी चीजें लेके आओ अपना गोरी बिस्तर, तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, इसलिए नॉर्मली भी चल रहा है।
1: शादियां भी आसपास भी हो जाती हैं और किसी को आज के दौर में दिक्कत नहीं,
0: मुझे शादी करनी है।
1: हाँ, ये भी हो सकता है कि आसपास भी हो जाए शादी तो आपको फिर दिक्कत ना आए। कोई जरूरी नहीं कि दूर ही शादी होगी,
0: कहाँ नहीं जा सकता, कहाँ मेरा लिखा हुआ
1: तो
0: है।
1: ये मतलब कहाँ पे डाला है, अपने यहाँ या फिर देवरिया वगैरह में या गोरखपुर में? देवरिया शहर में?
0: अभी इसको एक दो लोग और हैं हमारे, मतलब फ्रेंड है, तो वो बोल रही है कि अब कहीं और चलते हैं। प्रॉफिट जैसे गांव एरिया में मेकअप थोड़ा सा कम डेवलप है और शहरों में इसकी डिमांड ज्यादा है।
1: और वो जो आपका आरजे वाला काम है वो घर से ही हो जाता है?
0: हाँ, ये तो घर से होता है।
1: जी जी, तो उसमें एडिटिंग करनी होती है या लाइव वगैरह है?
0: पहले मैं
1: और वो
0: रिकॉर्डेड ही
1: जो
0: करती
1: जो जो
0: थी।
1: प्लेटफॉर्म है वो आपने खुद बनाया है या किसी और का
0: नहीं,
1: है?
0: किसी और का है, मैं वहाँ पे एज ए आर से काम करती हूँ। और पहले एडिटिंग वाला ही था, लेकिन उसमें बहुत झंझट होता है। जैसे आप लोग रिकॉर्ड पे हमने कहा कि जब लाइव प्रोग्राम्स होते हैं ना, तो उसमें समय का मैनेजमेंट नहीं करना पड़ता है, जबकि रिकॉर्डेड में काफी मेहनत, डबल मेहनत करनी पड़ती है।
1: बिल्कुल, एक तो देखिए रिकॉर्डिंग के शुरुआत में ही लाइनें दिक्कत करती हैं और 10-15 मिनट तो उसी में लग जाता है। जैसे श्रोताओं के फोन आते हैं और आवाज़ नहीं आती और उन्हें लगता है कि हम लोग किसी खास वजह से उनका फोन काट दे रहे हैं।
0: जी, और
1: लेकिन ऐसा
0: सबसे
1: होता
0: बड़ी
1: नहीं
0: बात
1: है।
0: ये होती है ना लाइव में कि श्रोता भी सजग होकर बात करता है कि हमारी बात सब लोग सुन रहे हैं। रिकॉर्डेड में क्या होता है कि हमें एडिटिंग की नौबत बहुत ज्यादा आती है, श्रोता भी बेबाक बोलता है कुछ भी जो मन में आए वो, ताकि यार्जे है इनका काम है तो एडिट
1: तो
0: करने के
1: आपका
0: लिए।
1: कामकाज ठीक चल रहा है तो अब तो वो
0: बहुत
1: जो
0: बढ़िया।
1: गुल्लक था वो तो बड़ा सा बंदूक संदूक में बदल गया होगा।
0: हाँ, बैग अब खरीद लिए, उसमें भर भर के रख देते हैं, अभी भरा हुआ है दो
1: तो
0: तीन।
1: ध्यान उधर ही होगा आपका।
0: नहीं, ध्यान उधर नहीं है, हम जहाँ बात करते हैं ध्यान वही रहता है मेरा।
1: देखते देखते हर कोई समझदार हो जाता है।
0: आपने कहा ना बड़े लोग हो जाते हैं, बड़े के साथ साथ थोड़ी थोड़ी समझदारी भी हो जाती है।
1: यानी दोनों बातें आपने स्वीकार तो कर ली ना।
0: हाँ, वो करना ही पड़ेगा।
1: अब बताइए कौन सा गाना सुनेंगी और क्या खास बताएंगी? सुचिता के क्या हालचाल हैं?
0: सुचिता के हाल चाल बहुत अच्छे हैं और रक्षाबंधन में फिर से मुलाकात होगी।
1: अच्छा, ये
0: अभी
1: वो
0: जा रही
1: वक्त
0: थी।
1: है जब रक्षाबंधन आने वाला होता
0: हाँ,
1: है तब हमारी आपकी बात हो ही जाती है।
0: एकदम सही।
1: क्योंकि याद आया पिछले साल भी इसी के लगभग बात हुई थी जब बहुत सारी
0: सही
1: बातें हुई
0: बात
1: थी,
0: है,
1: लेकिन हिस्सा
0: हमारे
1: मुझे
0: लिए
1: मिला नहीं
0: शुभ
1: आज
0: है,
1: तक।
0: यही तो कह रहे हैं, हमारे लिए रक्षाबंधन शुभ है।
1: कि हिस्सा बच जाता है हमारा वाला।
0: हाँ। गाना सुनना है मुझे नगीना फिल्म का, भूली बिस्ती सी कहानी।
1: अच्छा, यानी बातें कहानियां हो गई हैं अब। 10-12 वर्षों में ही कहानी हो गई, हकीकत से कहानी
0: वही
1: में।
0: खूबसूरत गीत है, तो समझ में नहीं कौन सा गाना सुने, तो सडनली याद आया, मैंने कहा चलो इसी को सुनते हैं।
1: और सुनाते हैं कौन सा?
0: सुनाना भी पड़ेगा।
1: पड़ेगा।
0: अरे मेरे पे इतना तेज साउंड बज रहा है ना, चलिए सुना देती हूँ। एक्चुअली मेरी आवाज थोड़ी चीको कर रही है,
1: नहीं,
0: तो
1: हमारे यहाँ
0: कोशिश
1: ठीक है।
0: करती हूँ। तो मुझे गाना है ना, आपको थोड़े गाना है, आप
1: हम तो
0: जरा
1: कभी
0: सुनिए।
1: गा ही नहीं सकते, गाना ही आता तो हम यहाँ नहीं रहते।
0: नहीं, आप गाते होंगे, लेकिन ये किस्मत
1: नहीं, जब
0: कैसी है
1: गाते
0: कि मैं सुना ही नहीं हूँ। अभी
1: होंगे।
0: दो चीजें आपकी जुबान से मैंने सुनी नहीं, एक तुम और एक गाना।
1: ये हाँ, तो हम कभी गाते भी नहीं और कभी किसी को भी तुम नहीं कहते हैं।
0: सोचिए कितने शिद्दत से हमने आपको सुना है।
1: ये तुम वाली बात हम लोगों की पहले भी कभी हुई है।
0: हाँ, वो मैंने नोटिस करके बताया
1: हाँ,
0: था,
1: वो
0: इसलिए
1: नोटिस करके
0: आपको
1: हम
0: कहा
1: भी
0: है।
1: याद रखते हैं, बोले ना बोले।
0: हाँ, चलिए ये ठीक है।
1: सब भूली बिसरी एक कहानी हो गई।
0: ये नहीं, दूसरा गाना सुना देती हूँ
1: क्यों?
0: मैं,
1: अच्छा हाँ, सुनाना दूसरा है लेकिन सुनना तो यही है।
0: सुनना तो यही है। हाँ बिल्कुल। भोजपुरी क्या सुनाऊँ, हिंदी सुनाती हूँ।

0: कौन कौन सी फिल्में थी वो जिसमें एक लता जी का गाना था, क्या वो
1: गाना था
0: गीत भी
1: हजार
0: हमें भूल
1: बातें
0: गया,
1: कह रहे हैं।
0: हजार बातें, और महेंद्र
1: जी
0: कपूर
1: जी
0: का, अलका
1: प्यार की
0: याग्निक का,
1: कविता
0: बहुत से गाने आप ढूंढ ढूंढ के लाती थी जो प्रचलन में नहीं होते थे और लगता था कि आपके मन की गहराई से निकले हुए गाने हैं।
1: आएंगे फिर से, ये भी मन की गहराई से भी ये गीत है।
0: उम्मीद करें जिस पर दुनिया कायम है।
1: बहुत अच्छा लगा बात करके, आगे भी कभी कोशिश करेंगे, फिर मुलाकात होगी आपसे।
0: उदिता, बहुत सारी शुभकामनाएं, आप खुश रहें और भी बड़े मुकाम तक जाएं। नमस्कार, शुक्रिया।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: जी हेलो फोन इन फरमाइश, नमस्कार जी।
0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हेलो
1: उत्तर, हाँ जी
0: बोलिए।
1: उत्तर प्रदेश जिला शामली से गुलजार बात कर रहा हूँ।
0: गुलजार जी, बहुत स्वागत है आपका। तो कितना गुलजार है, शामली या शामली से ही आप बोल रहे हैं ना? जी जी, क्या हाल चाल है आपके यहाँ के, और आप हमारे ये प्रोग्राम से कितने अरसे से जुड़े हुए हैं?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं, आपका नाम क्या है?
0: जी मैं अरुण पांडे बोल रहा हूँ, यानी हमारे प्रोग्राम आपने नहीं सुने हैं पहले?
1: नो सर। जी जी, आपसे ये पूछना चाहता हूँ
0: जी,
1: फरमाइश कार्यक्रम का बात है,
0: ये सारी सूचनाएं हमारे यहाँ सोशल मीडिया पेज है उस पर दिया रहता है। वैसे रिकॉर्डिंग हमारे यहाँ आकाशवाणी वाराणसी में बुधवार को सुबह में 10:10 से 11 बजे तक होती है। हर प्रोग्राम के आखिर में शुरू में हम लोग बताते हैं, और प्रसारण शनिवार को 11 से 12 और रविवार को 12 से 1।
1: शनिवार को 11 से 12
0: जी, और रविवार 12 से 1। और हमारे प्रसारण आप न्यूज ऑन AIRF, DTH, DRM वगैरह पे सुन सकते हैं।
1: वैसे मैं सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसके यूट्यूब पर नहीं होते? यूट्यूब पर भी आता है ये?
0: जी आप ढूंढेंगे तो हमारे यहाँ के बहुत सारे कार्यक्रम आपको आकाशवाणी के चैनल पर मिल जाएंगे। अब बताएं कौन सा गाना आपको सुनना है?
1: सर गाना तो हम जरूर सुनेंगे, आकाशवाणी वाराणसी यूट्यूब पर भी मिल जाएगा या नहीं?
0: AIR आपने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की है? AIR वाराणसी यानी आकाशवाणी वाराणसी का यूट्यूब चैनल भी है और फेसबुक पेज भी है, और फेसबुक पेज पर तो बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसमें आप लाइव कमेंट के जरिए भाग भी ले सकते हैं, तो जरूर वहां विजिट करें। अब बता दें गाना।
1: सर जी फिल्म का नाम सर है वैसा, क्योंकि
0: क्योंकि हाँ
1: हर गाने के बोल रहे क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम।
0: बहुत अच्छे गीत की जी।
1: और इसकी फेवरेंसी तो बतला दो, आकाशवाणी वाराणसी की फेवरेंसी क्या है?
0: अच्छा फ्रीक्वेंसी,
1: हाँ
0: 1242 किलोहर्ट्ज़, 241.54 मीटर।
1: और FM पे?
0: FM पे हमारे यहाँ विविध भारती वाराणसी है 100.6
1: मेगाहर्ट्ज़।
0: जी अब सुनते हैं आपकी पसंद का गीत, फिल्म है क्योंकि, हिमेश रेशमिया। और
1: मैं ये पूछना चाहता हूँ ये कार्यक्रम वाराणसी पे कब आता है, वो FM पे कब आता है ये कार्यक्रम, और ये FM
0: पे नहीं है।

0: था, वाराणसी का समय हमने आपको बता दिया है।
1: एफएम पे भी दोनों पे भी आता है?
0: नहीं, ये नहीं आता एफएम पे। गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है क्योंकि, हिमेश रेशमिया का संगीत, समीर के बोल और उदित नारायण के साथ अलका याग्निक की आवाज। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

श्रोताओ, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आप इस कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं अगर अपनी पसंद का गीत, तो हमें आप बुधवार को सुबह में 10:10 से 10:50 तक फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 2221052 यानी 222-1052। STD कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। कभी कभी 52 नंबर पर तकनीकी कारणों से आवाज नहीं आती है, तो आप 2221050 पर भी प्रयास कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिक जो हमारा नंबर है वो 2221052 है। तो दोनों ही नंबर नोट रखें और जिसमें भी आपका फोन लग जाए, हमारी शुभकामनाएं तो हमेशा आपके साथ हैं। तो अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको बता दें कि ये जो रिकॉर्डिंग होती है बुधवार को, उसका प्रसारण शनिवार को 11 से 12 बजे तक और रविवार को दिन में 12 से 1 बजे के बीच होती है। तो अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपने दोस्त अरुण पांडे को। नमस्कार, शुक्रिया।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश, प्रस्तुति अरुण पांडे की थी। श्रोताओं, कार्यक्रम का शेष भाग यानी बुधवार को हुई रिकॉर्डिंग के शेष कॉल्स आप सुन पाएंगे कल दिन में 12 बजे से 1 बजे के बीच। फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, DTH, DRM, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेब्स OTT पर, कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वहीं हमारा साथ।
1: सुन जा आ ठंडी हवा, आ ठंडी।
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कहकशां। इस प्रोग्राम में आज हम आपको कव्वालियां सुनवा रहे हैं। फनकार हैं असलम साबरी और उनके साथी।

प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा। यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।

इस दिल के दरीचा दामन को देखो तो सही, सोचो तो सही, जिस झोली में सौ छेद हुए उस झोली का फैलाना क्या। इब्ने इंशा की ये मशहूर गजल आप सुन रहे थे कव्वाली की शक्ल में, असलम साबरी और साथियों की आवाजों में। और अब इसी फनकार को एक बार फिर सुनते हैं, यह है आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश।

0: मशहूर शायर बिस्मिल अज़ीम आबादी की ये गज़ल कवाली के रूप में आप तक पहुंच रही थी असलम साबरी और साथियों की आवाज़ों में। हो रही है बिस्मिल की जिंदगी बसर कैसे, फूल कैसे मुरझाएं, डालियां बताएंगी। इस पेशकश के साथ ही आज का कहकशां प्रोग्राम खत्म होता है। फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेब ओटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वहीं हमारा साथ।
1: सुन जा आ ठंडी हवा, आ ठंडी।
0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, वेब्स, ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आप हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ। समय है सुगम संगीत कार्यक्रम का।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए
4: 0542227658।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें
0: 0542227658। कार्यक्रम में आज सुनते हैं नेहा चटर्जी की गायी रचनाएं। सबसे पहले संत मलूक दास की भक्ति रचना।

0: अभी आप सुन रहे थे जयशंकर प्रसाद की रचना। कलाकार थीं नेहा चटर्जी।
1: प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के ठीक 12:45 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आइए सुने डॉक्टर राकेश कुमार का बांसुरी वादन। राग है मदमाद सारंग, तबले पर संगति की है बलराम मिश्र ने।

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बांसुरी वादन, राग था मदमाद सारंग, कलाकार डॉक्टर राकेश कुमार, तबले पर संगति की बलराम मिश्र ने। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजने को है, अब समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजस्थान के बालोतरा में हैं। उन्होंने बालोतरा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
2: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ

0: विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण विकास से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूएपीए अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके देश के आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के एसआईआर के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया है। श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉ अनिल मिश्रा द्वारा किए गए त्यागपत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले सूचनाएं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। सहायक पुलिस आयुक्त पिंडरा कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार रन्नो देवी, पति का नाम रामजीत यादव, ये परागडीह सिंधौरा वाराणसी की निवासी हैं और 25 अगस्त 2023 की सुबह 7 से घर से लापता हैं। रनु देवी की आयु 54 वर्ष 4 फीट 8 इंच, रंग गोरा, दोहरा शरीर। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था हरे रंग की साड़ी। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो सहायक पुलिस आयुक्त पिंडरा कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। कार्यालय पुलिस उपायुक्त अपराध कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त एक सूचना के अनुसार डिम्पल गौड़ मार्फत संतोष गौड़, ये नई बस्ती पांडेपुर लालपुर वाराणसी की निवासी हैं और 3 सितंबर 2024 से लापता हैं। डिंपल गौड़ की आयु 17 वर्ष 5 माह, रंग सांवला, चेहरा गोल, आंखें और बाल इनके काले हैं, कद 5 फीट 5 इंच। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था नीले रंग का टी शर्ट और काले रंग की प्लाजो। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो प्रभारी मिसिंग सेल कमिश्नरेट वाराणसी को सूचना दें। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त एक सूचना, इसके मुताबिक

सुनीता, पिता का नाम पांचू चेरो, ये ग्राम टेढ़ा, दुधी सोनभद्र की निवासी हैं और 24 अक्टूबर 2025 से ग्राम टेढ़ा से लापता हैं। सुनीता की आयु 34 वर्ष, कद 5 फीट 5 इंच, रंग सांवला, चेहरा गोल है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था नीले रंग की साड़ी। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र को सूचना दें। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और अब जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की। आज शाम 5:10 पर आप सुनेंगे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। रात में 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अंजुमन कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में मनहर उदास की गाई गजलें सुनवाई जाएंगी रात्रि 8 बजे। हिंदी वार्ता कार्यक्रम में शाम 7:31 पर डॉक्टर शिवेंद्र प्रताप सिंह की वार्ता होगी स्वामी विवेकानंद का वैश्विक राष्ट्रवाद वसुधैव कुटुंबकम। कृषिगत कार्यक्रम शाम 6:30 पर होगा। इसमें आज जुलाई माह में किए जाने वाले सामयिक कृषि कार्य विषय पर प्रभाष चंद्र सिंह से रामकृष्ण मिश्र की बातचीत सुनवाई जाएगी। इसी कार्यक्रम में लोकगीत के कलाकार होंगे वीरेंद्र कुमार चौबे। इनके गाए कुछ लोकगीत आप दिन में 1:45 पर लोक संगीत में भी सुन सकते हैं। युवाणी कार्यक्रम आज प्रसारित होगा शाम 5:35 से। इसमें आज की बात यूथ जंक्शन फोन इन कार्यक्रम, यूथ डायरी में आज के शब्द, इतिहास में आज के दिन और रोजगार सूचना युवा साथी सुनेंगे। नन्ही दुनिया कार्यक्रम होगा शाम 5 बजे। 2:30 पर गीतांजलि कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रस्तुति प्रियदर्शी गौतम की। 1:15 पर अंगनैया कार्यक्रम में ऋतुचर्या और दिनचर्या का महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव विषय पर डॉक्टर मंगला गौरी से अर्चना गोस्वामी की बातचीत सुनवाई जाएगी, साथ ही चर्चा और गीत संगीत। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 1:10 पर इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से रिले की जाएंगी।

0: नवीन उत्तर प्रदेश के दो रोजा दौरे पर आज लखनऊ पहुंचे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। जनाब नवीन रियासती बीजेपी सदर पंकज चौधरी के साथ हवाई अड्डे से बीजेपी के रियासती दफ्तर तक रोड शो कर रहे हैं। पार्टी कारकुनों ने मुख्तलिफ मकाम पर उनका इस्तकबाल किया। नई रियासती बीजेपी टीम की तश्कील के बाद यह उत्तर प्रदेश का उनका पहला दौरा है। इस दौरे के दौरान वो पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और अहदेदारों से कई तंजीमी मुलाकात करेंगे। वो बीजेपी के अवामी नुमाइंदों और एनडीए कायदीन से भी बातचीत करेंगे। अपने दौरे के दौरान बीजेपी सदर तंजीम को मजबूत बनाने के लिए मुनक़दा शक्ति केंद्र कोऑर्डिनेटर कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। जनाब नवीन रियासती कोर कमेटी के इजलास में भी शिरकत करेंगे। कल दोपहर वो प्रेरणा स्थल में शक्ति केंद्र कोऑर्डिनेटर कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में महकमे सेहत और तिब्बी तालीम और मुख्तलिफ माहरीन के साथ एक आला सतही मीटिंग की और उत्तर प्रदेश स्टेट कैंसर टास्क फोर्स और उत्तर प्रदेश ट्रामा एंड इमरजेंसी नेटवर्क UPTEN की तरफ से पेश किए गए एक्शन प्लान का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने रियासत के हर जिले में कैंसर के इलाज की सहूलियात की तरक्की और सड़क हादसात और दीगर हंगामी हालात में सुनहरी घड़ी के अंदर इलाज को यकीनी बनाने के लिए रियासत गिर मरबूत ट्रामा और इमरजेंसी नेटवर्क के कयाम की हिदायत दी। एक रिपोर्ट।
1: उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से

0: कैंसर उपचार सुविधाओं का विकास किया जाए तथा प्रत्येक मंडल में आधुनिक कैंसर केंद्र स्थापित किए जाए। मरीजों की स्क्रीनिंग से लेकर उपचार और फॉलोअप तक की पूरी व्यवस्था डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ी जाए। बैठक में बताया गया कि ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क के अंतर्गत एकीकृत चिकित्सा इकाइयों का विकास किया जाएगा। इसके माध्यम से प्रदेश की लगभग 95% आबादी को 60 मिनट के भीतर विशेषज्ञ आपात चिकित्सा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
1: वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में 3 रोज़ा मैंगो फेस्टिवल 2026 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत में आम की सयाहत को फ़रोग दिया जाएगा। इसे हासिल करने के लिए आम की तमाम इकसाम के लिए GI टैगिंग लगाई जाएगी। मेले में 50 ग्राम अंगूरदाना आम और 5 किलोग्राम वजनी गजानन आम तवज्जो का मरकज रहे। इस दौरान वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कहा,
2: हमारा प्रयास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन का केंद्र बनाएं। इसके लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना होगा, जहां पे इससे संबंधित रिसर्च भी हो, यहां पे आम की नई पौध को उत्पादन करने की तकनीक भी हमारे पास होनी चाहिए, ड्रोन और AI बेस्ड फार्मिंग को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे हो सकता है, इसके बारे में काम करने की आवश्यकता है।
1: वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कल एक जायजा मीटिंग की, जिसमें अलनीनो की वजह से मुल्क के कुछ हिस्सों पर मामूल से कम बारिश और उसके असरात से मुतालिक सूरत हाल का जायजा लिया गया। जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत अलनीनो की वजह से मुल्क के कुछ हिस्सों में मामूल से कम बारिश और मुमकिन खुश्क साली के हवाले से सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। उन्होंने वजारत ज़राअत और तमाम मुतालिका वजारतों को हिदायत दी कि वो चौकस रहें और रियासती हुकूमतों के साथ तालमेल कायम करें ताकि किसानों को मुनासिब फसलों की बुआई के बारे में मशवरा दिया जा सके। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पीर 6 जुलाई 2026 को अपने अराकीन की मीटिंग बुलाई है, जिसमें कई अहम इंतजामी और माली मामलात पर तबादले ख्याल किया जाएगा, जिसमें ट्रस्ट को मिलने वाले एहतियात की गिनती की जांच करने वाली खसूसी तहकीकाती टीम SIT के नतायज भी शामिल हैं। 8 जून 2026 को जारी करदा एक सरकारी नोटिस के मुताबिक ट्रस्ट के सदर की मंजूरी से खजानची स्वामी गोविंद देवगिरी की तरफ से इजलास बुलाया गया है, क्योंकि इन मसाइल पर बहस और फैसले की जरूरत है। ये मीटिंग दोपहर 3 बजे मनीरामदास छावनी अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश में होगी। एजेंडे में जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा की तरफ से जमा कराए गए इस्तीफों पर गौर करना शामिल है। इस नोटिस में स्पीकर की इजाजत से किसी दूसरे मामले पर बहस का भी बंदोबस्त किया गया है। उत्तर प्रदेश टीचर अहलियत टेस्ट UPTET का दूसरा दिन कल पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। 3 रोज़ा इम्तिहानात के शफाफ और मुनसिफाना इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए थे। इम्तिहान के दौरान एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से AI कैमरों का इस्तेमाल करते हुए तमाम इम्तिहानी मराकज की निगरानी की। कमीशन के चेयरमैन डॉ प्रशांत कुमार ने बताया कि UPTET इम्तिहान के आखिरी दिन आज एक ही शिफ्ट में इम्तिहान लिया गया। और श्री अमरनाथ यात्रा कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल रास्तों से शुरू हुई। तीसरा जत्था हफ्ते की सुबह यानी आज जम्मू के भगवती नगर में वाकई यात्री निवास से रवाना हुआ। कल रियासत के कई जिला में भारी से दरमियानी बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि कुछ जिला में मरतूब गर्मी जारी रही। महकमा मौसमियात ने आज रियासत के मशरकी हिस्से के कुछ जिला में हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई की है। मगरबी जिला में गरज चमक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
3: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 737।
4: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:16 हुए हैं। अब ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम अंगनैया।

0: और गुंजा
1: हम्म,
0: तोहों के नमस्ते हो।
1: नमस्ते हो मुनक्का दीदी, नमस्ते आ हमरे ओरी से भी बहनी लोगन के नमस्ते।
0: ये गुंजा
1: हाँ
0: देखा हो, काल परसों तो ऐसा लगत रहा कि दाऊ का तनी सा मन नरमा गया है, तनी सा बरखा कर दिया, तनी राहत मिली। बाकी आज तो फिर वैसे ही ऐसा ना खोले हुआ कि का बुझा था कि बाहरे मत निकला।
1: सही कहलू हम मुनक्का दीदी, हम लोगन भी यही जोहत रहली कि कब दाऊ बरसे आ कब तनी सी मौसम बदले, लेकिन का किहल जाए, अब दाऊ तो सुनते ना हमन, भाई मौसम तो हो ही गेल हो कि अब बरखा बुन्नी आ जाए, लेकिन का करल जाए, बरखा बुन्नी तो ऐसन रूठ गेल है जैसे ना कि बस सब मनई तड़पत हुए समय।
0: हाँ, तो जानत हूँ, जानकार लोग भी कहत हुआ नहीं है कि भाई देखा एहू का कारण हम मनैये है ना, अपने
1: हाँ
0: अपने फायदा खातिर पेड़ तक कटत चल जात हो, है ना, ऊंच ऊंच मकान बनल चल जात हो। आ जानकार लोग कहना, विज्ञानी लोग कहना कि बरखा हो बदे पेड़ का होना भी जरूरी हो, है ना, तब जा कर के मानसून बनी, आप बरखा हुई बढ़िया और फसल पैदा हुई, माने हर चीज बदे देखा मौसम का संतुलन होना जरूरी है, पर्यावरण का संतुलित होना जरूरी है। तो आपन जौन है कुल स्वार्थ एके तो एक उरी करही के होई, तब तुमके समय से बरखा होई या समय से कुल होई, आ तब जौन है कि गर्मियों से राहत मिली, है ना।
1: एकदम सही बात कहा तू हो मुनक्का दीदी, और संगे संगे देखा हो बरखा बुन्नी के तो जोहल जाता हो, लेकिन ये जो गर्म हो ना इसमें जब लाइन कट जाता हो तो देखा था ना कैसे तड़प तड़प के मनाई घर के बाहरे भागा था,
0: सही
1: ऐसने में
0: कहते
1: देखा बरखा बुन्नी के जोहत जोहत लोग लाइन के जोहे लगा था हुआ कि
0: सही,
1: कब आ जाए, कम से कम ओहे से तो राहत मिले।
0: हाँ बात सही कहत हूँ। लेकिन एहू में वो लोग बड़ी मुस्किया थुअन, हवा ले थुअन, जेकरे छत्ते पर लगल है सौर ऊर्जा, सोलर पैनल जे लगा ले है ना, ओके लाइन कटत है तो कटो, ओके कोनो ज्यादा फर्क ना पड़त हो।
1: सही बात कहलू है, आ हमरे गाँव में भी लगत रहल है, बाकी तनी पैसा कमे कर रहल त हम कहली कि पहले पूरी जानकारी ले ले हब तब ओकरे बाद लगवाई, काहे से कि देखा जानकारी न रहले से ना बड़ा काम मुश्किल में पड़ जाला।
0: सही
1: लेकिन
0: बात है।
1: सुनत है कि ई जोन पीएम सूर्य घर योजना हो ना बड़ी बढ़िया हो भाई, जे लगवावत तो ओके फायदा हो, अपने त अपने बिजली इस्तेमाल करत हो, जौन बच जातो ना ओके बेच भी देत हो त तनी आमदनी हो जात हो।
0: ई बात देखा पते के कैलू है गुंजा कि अब आपन जौन बहिन लोगन भी जानकार होत हैं, जागरूक होत हैं। आ सही बात है, जौन पीएम सूर्य घर योजना सरकार के ओरी से चलत हो ना, तो एकरे पीछे देखा अपने सरकार का मनसा हो कि भाई जेकर आर्थिक स्थिति नाही बढ़िया बा, देखा लाइन तो बारे में बड़ा निक लगला है ना, बाकी जब बिल आवला ना तो कपार टनटनाए लगला है ना, तब समझ में आवला कि हाँ कितना खर्चा होता। तो यही से बचे बदे और मनई के जवन है कि उनकर आर्थिक रूप से कुछ मदद हो जाए, एकरे लिए सरकार के ओरी से योजना देखा चलावल जाता कि भाई आगे बढ़ के ये योजना का लाभ उठावे लोगन, जेके कहल गया है कि चाहे उनके 2 वाट का जरूरत हो, किलो वाट का, या फिर 2 से 3 किलो वाट का, या ज़्यादा का जरूरत बा, तो उनके ये जौन है योजना से राहत मिली। और ये सही कलू है कि भाई जेके आपन जितना उपयोग उतना तक कर लेता, लेकिन अगर ज़्यादा बिजली उनके घरे पैदा होता तो ग्रिड के रूप में चाहे तो एके दूसरे के बेच के भी अपन आर्थिक रूप से जो है ना हाथ बरियार कैसे कहना।
1: तो बहनी लोगन योजना का लाभ लेवे, अपने घरे भी हो सके तो ये जो सूर्य घर योजना चलत हो ना पीएम सूर्य घर योजना एके लगवावे। एक बात और हो मुनक्का दीदी,
0: कहो
1: देखा हो लाइन बिजली चाहे कुछ हो एके बचावल भी जरूरी हो, ई
0: एकदम।
1: ना कि लग गए तो फिर अब बिल उल तो देवे के ना हो, मन करे तो जितना चलावा चलावा चलावा, ई ऐसा ना करे के चाहिए। अब
0: बिल्कुल
1: भाई बचावे के बाद तोरे पास जोन बच जाता उसे आमदनी भी तो होता, तो हर इो तो सोचे के चाहिए।
0: सही बात है, सोचे के विषय है। आ ऊर्जा देखा मनई के जिंदगी का कह सकलू कि बहुत खास अब अंग बन गया है, तो चाहे हम लोग बिजली के बात करीला, या फिर पानी के बात करीला, या फिर जौन है पेट्रोल हो, डीजल हो, है ना, खाना बनाओ वाला जौन अपन ईंधन हो, गैस हो, ये कुल के सोच समझ के पूरा योजना के साथ आप खर्चा करें, जितना जरूरत हो उतना उपयोग में लिया, काहे से कि आपका जौन छोटी छोटी जौन बचत है ना, वो आगे चल के आप ही के काम देही ना।
1: मुनक्का दीदी बहुत ज्ञान का बात बतियलू है तू, आ बहनी लोगन एके सुनले।

0: लेकिन देखा हो अपने कार्यक्रम में आगे बढ़े के पहले ई जो जरूरी संदेश है ओके भी सुन लिया जाए।
1: एहू से जानकारी मिलेला।
2: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
5: 0542227658।
3: ओ
2: 0542227658।
3: लो अभी फोन लगाता हूँ।
2: 0542227658।
1: गुंजा।
0: हाँ?
1: देखा हो कहल गयल हो कि मौसम के हिसाब से अगर रहल जाए तो जौन हो स्वास्थ्य भी बढ़िया होला। आ कौनो मौसम हो, देखा सही बात है, अगर मौसम के अनुसार खा पिया, मौसम के अनुसार रहा, सावधानी बरता, तो एकर जौन है ना कह सकलू कि स्वास्थ्य पर सीधा जौन की प्रभाव पड़ेला।
0: बात तो बिल्कुल सही हो तो हार, लेकिन ई ना समझ पावत है कि ई तो मौसम के अनुसार खायल पियल, मौसम के अनुसार रहल का बात करत काहे हो।
1: ऐसे करत है कि देखा हम लोग समय समय पर अपने कार्यक्रम में भी बहन लोगन के जागरूक करत रही लजा कि अपन जो है मौसम के हिसाब से रहा। तो ऐसे ही देखा आज अपने कार्यक्रम में भी हम लोग जो बतकही लेके आये है वो यही तरह का हो कि जौन ऋतुचर्या हो और दिन ओकरे अनुसार जौन दिनचर्या होला ओकर महिला लोगन के स्वास्थ्य पर का प्रभाव पड़ला, यही विषय पर डॉक्टर मंगला गौरी से बात कैले हैं अर्चना गोस्वामी। तो बहन लोगन ये बतकही सुने।
6: बहन लोगन कहा जाला ना कि घर गृहस्थी बाल बच्चा परिवार सबकर देखभाल करना जोन हो ये महिला लोग के जिम्मेदारी होला, लेकिन जरूरी ये भी हो कि अगर महिला लोग घर का सारा काम काज करते हैं, आजकल देखा बहन लोग बाहर भी जाते हैं तो उनके ऊपर दोहरा बोझ हो, एक तो घर का भी हो और दूसरा जोन हो अगर बाहर कार्य करते हैं तो ओकर भी हो, लेकिन एक बदले जरूरी ये भी हो कि अगर अपन बहन लोग मन मस्तिष्क से स्वस्थ रहे, शरीर से स्वस्थ रहे तो वो काम काज और अच्छे ढंग से कर सके। नहीं आज अपन ऋतुचर्या कैसन हो, दिनचर्या कैसन हो और महिला लोगों पर ए पर का प्रभाव पड़ला, यही पर बातचीत करे बदे आज हम अपने स्टूडियो में बोलौले है डॉक्टर मंगला गौरी जी के जो की BHU आयुर्वेद विभाग में है। तो डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत हो। पहले तो आप हमारे बहन लोग के यह बता दें कि बहन लोग दिनचर्या और ऋतुचर्या से का समझें।
7: सभी लोगों को नमस्कार। ये दिनचर्या और ऋतुचर्या जीवन शैली है
6: जी।
7: कि कोई भी व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है तो एक सिस्टम में चलना पड़ता है, उसको ही जो है कि दिनचर्या और ऋतुचर्या दो भागों में हम विभाग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग रोजमर्रा जिंदगी में कि सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम लोगों को आहार है विहार है जिसका सेवन करना है वो दिनचर्या में आता है
6: जी।
7: और ऋतुचर्या में कि जैसे ऋतु बदलती है तो साथ ही साथ की हमारे जो पर्यावरण में बदलाव आता है, गर्मी बढ़ती है या बारिश होती है या बहुत ज्यादा उमस होता है, इन सभी चीजों का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और उस शरीर पर पड़ने से कि हम लोगों के आयुर्वेद में बोलते हैं वात पित्त और तीन किस्म का दोष होते हैं, उसमें थोड़ा इधर उधर होने के कारण जो है कि पर्सन बीमार पड़ता है। तो अगर ऋतुचर्या सही से पालन करते हैं तो उसको हम रोक सकते कि बहुत सारे बीमारियां जो होती है आजकल हम लोग जीवन शैली व्याधियां जो बोलते हैं कि डायबिटीज हो या जो BP बढ़ गया ये हो या जो हार्ट का प्रॉब्लम्स हो, ये सब बहुत सारे बीमारियां होती है, ये भी जो है कि अगर सही से हम जीवन शैली का पालन करते हैं तो इसको हम रोकथाम कर सकते हैं।
6: बिल्कुल सही बात कहते हैं, मतलब कि आपके बताओ के ये मतलब हो कि जैसे गर्मी हो जाड़ा हो बरसात हो ये तो भाई ऋतु परिवर्तन हो, लेकिन अगर आपके स्वस्थ रहना हो तो आपके अपने दिनचर्या का पालन अच्छे ढंग से करे के हुए
7: सही।
6: साथ में ये बताए ना बहन लोगन के जिनकी जो ये ऋतु परिवर्तन होला एकर महिला लोगन के शरीर पर का दुष्प्रभाव पड़ेला?

0: ऋतु परिवर्तन से मेनली जो होता है कि जैसे मैंने कहा कि बहुत गर्मी हो गया,
1: जी
0: तो बहुत गर्मी के कारण क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि होती है या हमारा जो पाचन का शक्ति होता है वो कम हो जाता है। तो उसका कम होने के कारण जो है कि हम लोग खाया हुआ चीज ठीक से नहीं पचता है। तो इसलिए ये जो गर्मी के मौसम में हमको लघु आहार सेवन करना चाहिए, साथ ही साथ कि हमारे शरीर के अंदर का जो पानी का अंश है वो कम हो जाता है धूप की वजह से,
1: जी
0: तो उसका मेंटेन करने के लिए हम लोगों को जैसे लिक्विड्स ज्यादा लेना चाहिए, जैसे शरबत हो
1: तरल
0: या जो
1: पदार्थ।
0: है कि हाँ तरल पदार्थ हो या जो छाछ है, ये सब चीजें हमको सेवन करना चाहिए।
1: तो लघु आहार से क्या मतलब है?
0: लघु आहार है जैसे कि हमारे यहाँ दाल में हो गया मूंग मसूर अरहर है,
1: जी
0: या जो है कि रूटीन हम लोग जो सब्जी रोटी खाते हैं ज्यादा तेल डाल के ना बनाएं, कि ऋतु के साथ साथ कुछ कुछ जो सब्जियां हैं फल है ये आते हैं, जो हमारे मार्केट में ज्यादा सब्जियां हैं या फल हैं उनका सेवन हमको करना चाहिए, जो कम दिखता है तो जो है कि उसको उतना सेवन नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो सर्दियों के टाइम में जो है, तो उस टाइम पे हमारा जो भूख है अच्छे से बढ़ जाता है, उस टाइम पे जो हम हैवी खाना है जैसे उड़द है या जो मटर है सीजन में आता है,
1: हाँ
0: तो ये सब जो हैवी होता है उनको हम अच्छे से सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ व्यायाम बहुत अच्छे से करना चाहिए जो सर्दी के मौसम में, ताकि जो है कि हम लोगों का जो आगे जाके कफ बढ़ता है वो कम रहे, तो इसलिए सर्दी के मौसम में अच्छे से व्यायाम करना चाहिए। और वैसे ही शरद ऋतु आता है तो शरद ऋतु में जो है कि पित्त का बढ़ाव होता है, तो इसलिए जो है कि ठंडे चीजों का इस्तेमाल शरद ऋतु में करना चाहिए।
1: अच्छा जी
0: और साथ ही साथ कि जैसे एक तो ऋतुचर्या हो गया, दूसरा एक होता है ऋतुचक्र।
1: जी
0: महिलाओं में जो है पहले बार जो है कि उसका ऋतुचक्र प्रारंभ होता है तो उस टाइम में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे कि वो बढ़ती उम्र है मतलब ज्यादा ग्रोथ जो होता है उस टाइम होता है, तो उस वजह से क्या होता है कि ज्यादा पोषकांश का आवश्यकता पड़ती है,
1: जी
0: तो जैसे दूध है या जो कैल्शियम का ज्यादा जो होता है जैसे कि रागी है या बैंगन है,
1: बाजरा है,
0: हाँ बाजरा है, ये सब चीजों का
1: ज्वार।
0: इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। साथ में कि आयुर्वेद में बोलते हैं कि दूध और घी, गाय का दूध और गाय का घी ये
1: जी
0: रसायन है तो
1: अच्छा
0: सबको अच्छा है, तो
1: जी
0: इसका सेवन अच्छे से करना चाहिए। और साथ ही साथ कि जैसे कि ऋतुचक्र के साथ जुड़ा रहता है कि खून की कमी, तो खून की कमी अगर ना हो इसके लिए हमारा जो है कि अच्छा आहार सेवन करना जरूरी है, जिसमें जो है कि पत्तेदार सब्जियां हैं या जो है खजूर है अगर ये है या अंगूर है, ये सब चीजें किशमिश है, ये सब चीजें हमको अच्छे से सेवन करना चाहिए ताकि जो ऋतुचक्र से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है वो भी कि ना होता है। थोड़ा उम्र हो जाता है तो पेरीमोनोपॉजल पीरियड आता है जहां महीने महीने का रुकने का
1: जी
0: समय आता है, तब भी जो है कि लेडीज का जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाते हैं हार्मोनल कारण के वजह से, तो जो है कि उसको हमको रोकथाम करने के लिए ज्यादातर जो है कि कैल्शियम का दूध से बनी हुए चीजें हैं या जो है कि जैसे रागी मैंने बताया
1: जी
0: या इवन जो है कि खजूर जैसे जो ये है ड्राई फ्रूट्स
1: मैंने
0: वगैरह
1: अपने
0: है,
1: खान पान
0: हाँ
1: में उस
0: खान पान में हमको खासकर ध्यान रखना पड़ेगा ताकि कि वो हड्डियां मजबूत रहे। साथ ही साथ एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो
1: जी
0: व्यायाम है कि उससे हमारे जो मजल्स हैं कि एक उम्र के साथ हमारा जो
1: मांसपेशियां।
0: मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाते हैं, वो मात्रा में कम हो जाता है, तो उसको अच्छे से रखने के लिए व्यायाम से अच्छा उपाय और कुछ नहीं है, तो व्यायाम भी करना चाहिए। साथ में प्रोटीन का इंटेक जो है कि हमको अच्छे से लेना चाहिए, अगर शाकाहारी हो तो सारे किस्म के जो हम लोग पल्सेस बोलते हैं या द्विदल
1: दालिया।
0: धान्य, तो द्विदल धान्यों का सेवन अच्छे से करना चाहिए। अगर नॉन वेजिटेरियंस है तो फिर जो है कि अंडा है अजा मांस हम लोग जो बोलते हैं
1: जी
0: तो वो सब चीजों का भी सेवन कर सकते हैं।
1: टाटा साहब, बहुत अच्छी जानकारी हमारे बहन लोग के दे थे कि भाई जब ऋतु चक्र हो उनमें भी बहन लोग अपन थोड़ा सावधानी बरते हैं खान पान में। भाई उम्र के साथ हमारा खान पान हम लोग के बदे बहुत जरूरी होला कि मौसम के अनुसार भी जो प्रकृति हम लोग के फल फूल साग सब्जी देले हो ओके खा के भी हम लोग स्वस्थ रह सकीला। डॉक्टर साहब एक बात और बताएं कि आज के जीवन शैली दिनचर्या जो लोगों का बदलत हो और महिला लोग

0: खाली घर में ही रह के नहीं बल्कि बाहर भी जाके काम करते हैं। तो ये जो आधुनिक जीवन शैली है इनमें जो कामकाजी महिला लोग हैं इनमें एक तरह के जो दिनचर्या अपनावे जैसे कि वो स्वस्थ भी रहे और उनका कामकाज भी प्रभावित न रहे।
1: कामकाजी महिलाओं के लिए सबसे जरूरी चीज है घर का भी काम करना पड़ता है, बाहर का भी काम करना पड़ता है। इन दोनों के बीच में एक समतोलता लाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कि खासकर उन लोगों को सुबह से लेकर शाम तक दिनचर्या में कुछ कुछ चीजों का खास ख्याल रखना है कि एक तो कि जैसे मैंने पहले कहा कि व्यायाम है, या जैसे उसी के साथ योग भी आता है कि जो है कि अगर व्यायाम योग दोनों करने का समय बहुत टाइम नहीं रहता है तो उस टाइम में क्या करना है कि योग में अलग अलग आसनों का बताया गया है। अच्छा। आसनों के साथ प्राणायाम है, ध्यान है, मेडिटेशन है, ये सब करने से जो है कि स्ट्रेस जो बोलते हैं हमारे मन के ऊपर जो बहुत सारा दबाव रहता है वो कम हो जाता है। और उसके साथ हर समय से ले कि बहुत बार होता है महिलाएं कि बाकी सब लोगों को खिलाने के चक्कर में कि अपने खुद का ही खान पान छोड़ देते हैं, तो वैसे कभी ना करें, अपने आप को भी जो है कि महत्व दे ताकि वो स्वस्थ रहेंगे तो ही उनका परिवार स्वस्थ रह पाएगा। अगर खुद बीमार पड़ जाएंगे तो वो परिवार का देखभाल करना उतना अच्छे से हो नहीं पाता है।
0: जी जी।
1: तो इसलिए खुद के लिए और परिवार के लिए कि एक काम और घर का काम इसके बीच में खुद के लिए भी वक्त जरूर निकालें।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। और यह हमारा पूछना भी आपसे जो उद्देश्य रहा है कि बही लोग अगर आप काजी महिला हैं घर से बाहर जाते हैं तो आप अपन भी एक जो की समय सारणी बना लें कि इतने समय में हमें भी खाना खा लेना हो, व्यायाम भी कर लेना हो, घर के सदस्यों का भी देखभाल कर देना हो। तो कह जाना कि भाई अगर हम समय सारणी के अनुसार अपन दिनचर्या पालन करें तो हर काम बड़े अच्छे से हो जाला। और साथ में जब आप कह रही है ना कि ऋतुचर्या का है तो ऋतुचर्या का भी पालन बहन लोगों के करे के चाहिए। गर्मी जाड़ा बरसात जे भी तरह से हो उनमें अपन दिनचर्या वो ढंग से बना ले। आप साथ में एक बात और बहन लोग बताई ना कि अगर ऋतुचर्या का पालन ना हो या दिनचर्या का पालन ना हो तो इसे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा?
1: ऋतुचर्या का समय से पालन नहीं करेंगे तो ऋतुजन्य व्याधियां बोलते हैं, जैसे सर्दी जुकाम हो या जो है कि इसकी शरद ऋतु में जो है कि पित्त का बढ़ के जो है कि स्किन डिसीजेस हैं, या जो है कि हाइपर एसिडिटी जो बोलते हैं पित्त बढ़ने के कारण से जो होता है चक्कर आना है, ऐसे कुछ कुछ चीजें जो है कि हो सकता है। और दिनचर्या सही से पालन करने से ना पालन करने से जो होता है कि हम लोगों का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आज के रेट में जो बोलते हैं कि मोटापा हो या जो है कि डायबिटीज हो या बीपी बढ़ना हो या जो है कि थायराइड का प्रॉब्लम हो, ऐसे बीमारियां बहुत सारी बीमारियां हो सकता है। इसलिए कि जो स्वस्थ विहार
0: जी
1: और स्वस्थ आहार की हित भूख जो हित आहार है वो मित मात्रा में या सही मात्रा में सेवन करे और ऋतु अनुसार सेवन करने से कि सारे ही बीमारियों को हम रोकथाम कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमारा जो इम्यूनिटी है या व्याधि क्षमत्व हम जो बोलते हैं बीमारियों को दूर भगाने वाला हमारा अंदर का शक्ति वो अच्छे से मेंटेन रहता है और स्वास्थ्य बना रहता है।
0: बहुत अच्छी जानकारी आप देनी है। और आप बताएं कि चलत चलत हमारे बहन लोग उनके क्या संदेश देवल जाते हैं जैसे कि भाई वो अपने जीवन में स्वस्थ रह के अपन काम काज कर सके।
1: आयुर्वेद में बोलते हैं रोज हित आहार सेवन करना चाहिए, साथ ही साथ हमारा जो मानसिकता है पॉजिटिविटी लाए कि ताकि जो है कि हम लोगों के अंदर कम से कम स्ट्रेस बने रहे, क्योंकि स्ट्रेस जो है कि बहुत सारे शरीर मानसिक बीमारियों का जो एक मूल कारण है, तो उसको बहुत अच्छे से रहे और जिंदगी में वर्क लाइफ बैलेंस जो बोलते हैं उसको बहुत अच्छे से रखने से बहुत सारी बीमारियों को रोक सकते।
0: बहुत अच्छी जानकारी आप देनी मेरे बहन लोगों के कि सकारात्मक सोच रख करके हम लोग जो है अपने जीवन के चलाएं, दिनचर्या का पालन करें, ऋतुचर्या का पालन करें जैसे कि हम लोग स्वस्थ रह सकेला। तो डॉक्टर मंगला गौरी जी आप हमारे स्टूडियो में आईनी और बहन लोगों के ये विषय पे इतनी अच्छी जानकारी देनी, इसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तमुनक्का दीदी देखा हो बहनी लोगन अभी सुनत रही हैं ये बात कही ऋतुचर्या और दिनचर्या का महिला के स्वास्थ्य पर का प्रभाव पड़ेला पे डॉक्टर मंगला गौरी से बतियावत रही हैं अर्चना गोस्वामी। तो देखा हो बात तो बड़ा नीक रहा है कि अपने जीवन में माने कि जो तनाव हो के दूर रखे के चाहिए तबे अपन जीवन अच्छे से चल पाई।
3: बिल्कुल सही कहलू है कि तनाव दूर रहे के चाहिए। और एक बात यो कहब ना कि देखा खान पान का तो स्वास्थ्य पर बढ़िया

0: पड़बे करेला।
1: हाँ
0: बाकी जौन तू तनाव के बात कैलू है ना, तो जब गीत गौनई होला ना तो एक हिस्सा जौन है कि मन ऐसे ही खुश हो जाला, तो अगर कोनो तरह का दिक्कत होला शरीर में तो उहो दूर हो जाला।
1: तो यही तनाव के दूर करे खातिर अपने बहनी लोगन के चला गीत गौनई की ओर ले चलल जाए और सुनवावल जाए ई गीत।

0: कैसे बनावल जाए ई कुल भी जानल जरूरी है।
1: हाँ तो देखा बात कह देलू ना खाए पिए का, तो आज अपने कार्यक्रम में लेके आ ली जा ऐसा चीज जौने में कैल्शियम मैग्नीशियम फाइबर विटामिन ए विटामिन सी कार्बोहाइड्रेट ई कुल बड़ा अच्छी मात्रा में पावल जाला। और देखा ई शरीर के स्वस्थ रखे बदे ई सब जौन पोषक तत्व तो है उ जरूरी है। तो बात करत ही जा हमान अरबी का कहल जाला ना कि का खेबू घुइया समझत हो ना।
0: हाँ हो लेकिन का कही जब ई सब्जी बन जाला ना
1: हाँ?
0: तो बड़ी चटकार लगेला।
1: हाँ?
0: जहाँ दुई रोटी खाल जाला वहाँ एगो और रोटी लेके खा लेवल जाला।
1: हाँ,
0: लेकिन देखा हो इतना कुछ गुण मिलत जरूर हो लेकिन एक बनावल भी जरूरी हो। जैसे हम लोग अरुई खाई जाए ना तो वही तरह ओकर पत्ता का देखा पकौड़ी बनेला रिकवच बनेला सब्जी बनेला कुल बनेला। लेकिन देखा एक बात कहब कि एकर खाए में सावधानी बरतल जरूरी हो। कह से कि अगर एकर पत्ता कच्चा खा लेवल जाए ना तो इमें ऐसन कुछ तत्व तो होला जे कि जाके मुँहे में गले में खजूली करेला।
1: अरे हथवे लगला चुन चुनाए तो ऐसे बचे के होला पन्नी जौन है कि हाथे में लगा के ग्लव्स लगा के तब के हमन काटी ला जा। तो ई कुल सावधानी रखे के हो नहीं तो जितना तो बनैह नहीं उतना परेशान हो जइहन हो।
0: हाँ अब बहने लोगन के भी बतावल जरूरी हो कि चाहे तो एक उबाल के बनावे चाहे तो एक अगर सब्जी बनावत हैं तो उसमें तनी से खटाई डाल देवे नेबुआ डाल देवे चाहे कौन और खटाई हो के डाल देवे और ओकरे बाद ई बनावे और ओकर स्वाद लेवे ताकि ओकर तुहार न मुँह काटे न गर काटे।
1: बिल्कुल तो मौसम के हिसाब से देखा ये मौसमी चीज़ है एक अपने जौन है कि भोजन में जरूर उपयोग में लिया मैं और कहीं न गुंजा। ये
0: हाँ
1: देखा बतकही करत करत अब तो बहिन लोगन से विदा लेवे का समय हो गल हो। तो अब अगले कार्यक्रम में बहिन लोगन से फिर मिलावल जी नई जानकारी के संगे। तो चला चलल जा।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: देखा हो गुंजा गीत तो बड़ा निक कर रहल हो और शादी ब्याह के मौका पर अपन जवन बड़ बुजुर्गन का आशीष है ना वो बहुत जरूरी है। तो बस यही कहे के बा कि जेकरे घरे बड़ बुजुर्ग हुन उनकर पूरा देखभाल करें उनके जौन है कि संभार के रखे हो।
1: संभार के रखल तो जरूरी है और संगे संगे भाई खान पियन का उनकर ध्यान रखा। और जब खाए पिए का बात हो तो ना दीदी तो देखा अपने पिटारी में भी आज बहनी लोगन के कुछ ऐसा बता देहल जाए कि देखा वो खाए लिन तो जरूर ओके लेकिन संगे संगे ओकर कुछ सावधानी हो।

ग्रामीण महिलाएं सुन रही थीं अपना कार्यक्रम मंगनैया। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत। कार्यक्रम में कलाकार हैं वीरेंद्र कुमार चौबे। पहले सुनिए इनकी गाई एक लचारी।

0: इस लाचारी के बाद एक दादरा प्रस्तुत है, कलाकार वीरेंद्र कुमार चौबे।
1: हमर मन का खिड़कियां

लोक संगीत कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं वीरेंद्र कुमार चौबे के गाए लोकगीत। इस दादरा के बाद कार्यक्रम के आखिर में एक खेमटा।

0: खेमटा अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे वीरेंद्र कुमार चौबे। लोक संगीत कार्यक्रम समाप्त तो होता है। इनके गाए कुछ लोकगीत आप शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज, डीटीएच, डीआरएम वेव्स, ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में 2 बजे आप सुनेंगे मिड डे न्यूज, उसके बाद 2:15 पर होंगे दोपहर समाचार। ये दोनों ही समाचार बुलेटिन हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: Afternoon. This is Akashvani and I am Saira Mujtaba with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi dedicates India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra, Rajasthan. Also inaugurates new terminal building of Jodhpur Airport. Home Ministry designates 23 Pakistan-based individuals as terrorists under UAPA. Centre issues notice to Telegram messaging app over widespread piracy reports. Asked to submit report within 15 days. Bilateral investment agreement between India and Israel comes into force today. IMD says southwest monsoon to further advance into parts of Gujarat, Haryana, Punjab and Rajasthan during the next 4 days. And in men's cricket, India to face host England in second T20 International in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi dedicated, inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees at Balotra, Rajasthan. These projects spanned multiple sectors including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. The Prime Minister dedicated India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex to the nation at Pachpadra in Balotra, marking a landmark achievement in the country's energy and petrochemical sector. Speaking on the occasion, Mr. Modi said this refinery will provide employment to thousands of young people.
2: आज इस refinery को देश को समर्पित किया गया है। ये refinery यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस refinery की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: Prime Minister Modi also laid the foundation stone for Phase 2 of the Jaipur Metro Rail project, which has a total cost of over 13,000 crore rupees. Under Phase 2, a 41-kilometer north-south metro corridor.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है।

0: उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1,000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
0: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे सांणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित

0: के जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में अयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
2: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है। अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये

0: आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
1: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार पांचवें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लिए लियोनल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतांजलि।
4: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम गीतांजलि में और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रियदर्शी। दोस्तों कहते हैं हर रिश्ता शब्दों का मोहताज नहीं होता। कुछ रिश्ते आंखों से बात करते हैं, कुछ खामोशी से और कुछ सिर्फ एहसासों से।

जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शब्द कहीं खो जाते हैं। माँ से कहना चाहते हैं, माँ तुम बहुत याद आती हो। पिता से कहना चाहते हैं, आपकी मेहनत समझता हूँ। दोस्त से कहना चाहते हैं, तुम्हारे होने से जिंदगी आसान लगती है। लेकिन ये बातें अक्सर दिल में ही रह जाती।

आज गीतांजलि में हम इन्हीं अनकहे शब्दों की कहानी सुनेंगे, उन भावनाओं की जो कही नहीं जाती लेकिन सबसे ज्यादा महसूस की जाती है। दोस्तों, शब्दों की अपनी एक दुनिया होती है, लेकिन रिश्तों की दुनिया अक्सर शब्दों से कहीं बड़ी होती है।

कभी माँ बिना पूछे आपकी पसंद क्या खाना बना देती है, पिता बिना बताए आपकी जरूरत पूरी कर देते हैं, भाई बहन बिना बोले समझ जाते हैं कि आज आपका मन ठीक नहीं, दोस्त सिर्फ एक क्या हुआ पूछकर सारी परेशानी पढ़ लेते हैं। यही तो है अनकहे शब्द जो सुनाई नहीं देते लेकिन महसूस बहुत गहराई से होते हैं। श्रोताओं, कभी आपने सोचा है खामोशी अगर अपनेपन की हो तो कितनी प्यारी आवाज बन जाती है, लेकिन हर खामोशी अच्छी नहीं होती। कई बार यही खामोशी रिश्तों के बीच दूरियां भी ले आती है, क्योंकि हम मान लेते हैं कि सामने वाला बिना कहे सब समझ जाएगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। इसलिए जहां जरूरी हो वहां अपने एहसासों को शब्द भी दीजिए, क्योंकि समय लौट कर नहीं आता और कुछ बातें हमेशा के लिए अधूरी रह जाती है।

श्रोताओं, रिश्ते कभी बड़े बड़े वादों से नहीं चलते, वे छोटी छोटी बातों से महकते हैं। एक गिलास पानी, थोड़ी सी चिंता, एक मुस्कान और कभी कभी सिर्फ किसी का पास बैठ जाना, यही तो है रिश्तों का असली संगीत। कितनी अजीब बात है ना, जब हम छोटे थे माँ का हाथ पकड़कर चलते थे और बड़े होकर उनका हाथ पकड़ना भूल गए। पिता की उंगली पकड़कर दुनिया देखी, लेकिन एक दिन उनकी आंखों की थकान देखना भूल गए। शायद जिंदगी की सबसे बड़ी व्यस्तता यही है कि हम अपनों के लिए समय निकालना भूल जाते हैं। चलिए अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जो अपनों की गर्माहट और रिश्तों की खूबसूरती को बहुत सरलता से बयां करता है।

दोस्तों, कई बार लोग कहते हैं उन्होंने कभी मुझसे प्यार जताया ही नहीं, लेकिन क्या प्यार सिर्फ कह देने से साबित होता है? माँ की डांट, पिता की सख्ती, भाई की नोकझोंक, दोस्त की डांट, इन सबके पीछे भी तो प्यार ही छिपा होता है ना। हर रिश्ता अपनी अलग भाषा बोलता है, बस जरूरत होती है उसे सुनने की। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है कि एक बुजुर्ग पिता हर शाम अपने बेटे को फोन करते थे। बेटा अक्सर कह देता, पापा अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। एक दिन फोन आना बंद हो गया। बेटे ने सोचा आज पापा व्यस्त होंगे। फिर अगले दिन जब वह घर पहुंचा तो पता चला अब फोन कभी नहीं आएगा। उस दिन बेटे को एहसास हुआ कि जिस बाद में का इंतजार वह कर रहा था, वह बाद कभी आया ही नहीं। इसलिए अगर आज कोई अपना याद कर रहा है तो कार्यक्रम समाप्त होने का इंतजार मत कीजिए, उन्हें फोन जरूर कीजिए। दोस्तों, जिंदगी बहुत तेज चलती है, लेकिन रिश्ते धीरे धीरे बनते हैं और धीरे धीरे ही टूटते भी हैं। इसलिए जब भी मौका मिले अपनों को यह जरूर कहिए कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कुछ शब्द सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते बल्कि जीने के लिए होते हैं। मुझे तुम पर गर्व है, तुम्हारी बहुत याद आती है। धन्यवाद, मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यकीन मानिए, ये 5 वाक्य कई टूटते रिश्ते को फिर से जोड़ सकते हैं। दोस्तों, आज की मुलाकात यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी नई बातों और सफर के साथ। तब तक याद रखिए, रिश्तों की खूबसूरती भाषा नहीं एहसास होते हैं, लेकिन जब कभी अवसर मिले अपने एहसासों को शब्द भी जरूर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि दिल में छिपी बातें सिर्फ यादें बनकर रह जाए। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने अपनों के साथ हर पल को सजो कर रखेंगे, मैं आपसे अभी इजाजत चाहती हूँ। फिर मिलेंगे किसी दिन किसी और सफर पे। तब तक अपना और अपनों का रखें ख्याल। नमस्कार।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम वेव्स, ओटीटी और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अपराह्न के ठीक 3 बजे हैं, आज की हमारी पहली सभा अब सम्पन्न होती है। शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज। न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप, डीटीए, डीआरएम और वेब्स ओटीटी पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है सायंकालीन सभा। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया।

0: बच्चों जय
1: जय
0: हिंद।
1: हिंद।
0: मैं हूँ आपकी दीदी शबनम।
1: और मैं हूँ आपकी दीदी निशा।
0: कैसी हैं दीदी आप?
1: शबनम दी, मैं बहुत अच्छी हूँ।
0: और हमारे नन्हे दोस्त भी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि देखिए स्कूल खुल गए हैं और बच्चों का स्कूल जाना शुरू हो गया है।
1: हाँ, और दीदी जब स्कूल का पहला दिन होता है ना, बहुत अच्छा लगता है सोच करके कि आज हम स्कूल जाएंगे, नए नए ड्रेस होगा, नए नए साथी होंगे, नई नई किताबें होंगी।
0: और कुछ बच्चों के तो नए क्लास होंगे, लेकिन कुछ बच्चे स्कूल ही पहली बार जा रहे होंगे दीदी।
1: वो
0: लेकिन
1: हमारे नन्हे मुन्ने
0: बच्चों स्कूल जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप स्कूल नहीं जाएंगे तब तक आप पढ़ेंगे कैसे, और दुनिया जहान की बातें हम स्कूल से ही तो सीखते हैं।
1: हाँ दीदी, और कुछ जो हमारे नन्हे साथी हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, जो भी अपने जीवन में वो करना चाहते हैं, वो कैसे कर पाएंगे अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो।
0: ये भी बात सही है। और फिर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है दीदी जब हमारी नई नई बुक्स आती हैं, नए
1: हाँ
0: पेंसिल, नए कलर्स और नए टिफिन बॉक्स भी। देखिए बच्चों, जब नई बुक्स आती है तो उसके पेज कितने कड़क होते हैं, बहुत अच्छे होते
1: हाँ
0: हैं, और एकदम साफ सुथरी होती है हमारी बुक्स, हमारी कॉपी, सारे पेज बहुत अच्छे लगते हैं, और उस पर जब सुंदर सुंदर हम कॉपी पे लिखते हैं तो हमारी कॉपी और सुंदर लगने लगती है।
1: हाँ और उसको जब खूब कलरफुल कवर से सजा देते हैं तो कवर क्या करता है ना दीदी, कि उसको फटने नहीं देता है।
0: जी, और देखिए कुछ बच्चे जो है ना पेज बहुत धीरे से खोलते हैं, पेज पलटते हैं, और कुछ फटाफट फटाफट पेज पलटते हैं, लेकिन
1: हाँ
0: ऐसे में अगर आप बहुत तेजी से बुक्स के पेज पलटते हैं ना तो आपकी बुक्स फट भी सकती है, पेज मुड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरे वर्ष आपकी बुक्स अच्छी तरह से रहे, नई रहे, तो पेज वगैरह खोलने के बाद उसको अच्छी तरह से बुक्स को बंद करिए। और
1: हाँ
0: बैग में भी बहुत संभाल के रखना पड़ता है, नहीं तो फिर मुड़ी चुड़ी सी बुक मिलेगी आपको।
1: हाँ और जब स्कूल से हमारे नन्हे साथी आते हैं ना, तो उनको अच्छे तरीके से जब पढ़ाई लिखाई कर लें तो एक टेबल पे या फिर बहुत ही सलीके से अपने बैग में रखें।
0: हाँ, और देखिए बच्चों, जो हमारी बुक्स है वो पूरे वर्ष तो हमें इस्तेमाल करनी है, इसलिए जो अभी जैसी नई नई आपको अच्छी लग रही है उसी तरह रहनी चाहिए। और कुछ बच्चे ना दीदी, जो ड्राइंग वाली बुक्स होती है ना
1: हाँ
0: उसमें
1: दीदी
0: कलर करना रहता है, तो मन करता है सारे पेज कलर कर दे, लेकिन ऐसा नहीं, अभी तो पूरे वर्ष आपको कलर करना है। और ऐसे में जिस दिन आपको होमवर्क मिले, जिस दिन मैम आपको कलर करने को कहे, उसी दिन करिए, और बाकी दिन तो वैसे ही रहने दीजिए, ताकि पूरे वर्ष आपका काम चलता रहे। और पेंसिल वगैरह भी बहुत जल्दी जल्दी मत बनाइए, थोड़ा
1: हाँ
0: संभाल के जितनी जरूरत है उतनी। कुछ बच्चे बड़े शार्प पेंसिल बना लेते हैं और जैसे लिखने चलते हैं पुट करके टूट जाती
1: टूट
0: है।
1: जाती है।
0: कुछ बच्चे जो होते हैं ना कि समझ नहीं पाते कि वो उनकी पेंसिल या दोस्त की है, तो कभी कभी गलती से अपने पास भी ले आते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो अगले दिन ले आके वापस कर देनी चाहिए, और
1: हाँ
0: दोस्ती तो पक्की वाली रखनी चाहिए ना दीदी।
1: हाँ दीदी, और लेकिन गलती से अगर कोई हमारा दोस्त लेके चला भी जाए तो नाराज होने की जरूरत नहीं है।
0: क्योंकि दोस्त जो है ना वो हमारी बहुत मदद करते हैं, और हमें भी एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। अच्छा, एक बात और होती है दीदी, जब हम लोग नए क्लास में बच्चे जाते हैं तो लंच बॉक्स में मम्मी क्या दी है ये भी तो याद रखना पड़ता है और खाना पड़ता है, तो ऐसे में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ना।
1: हाँ क्योंकि दीदी अगर हम शेयर करते हैं ना, तो हमारी दोस्ती भी पक्की होती है, हमारा प्यार बढ़ता है, और दीदी तरह तरह के खाने भी खाने को मिलते हैं।
0: और कभी कभी जब कुछ अच्छी सी चीज हो तो छिपा के भी कुछ दोस्त खाते हैं।
1: हाँ।

0: चलिए दोस्तों, आप अपने नए दोस्तों के साथ रहिए, नई नई किताबों का इस्तेमाल करिए, और हमारी तरफ से ना, और निशा दीदी आपकी तरफ से
1: मेरी
0: भी ना,
1: तरफ से भी दीदी।
0: हाँ, तो सारे दोस्तों को जो नए क्लास में गए हैं, नए नए स्कूल में गए हैं, और पहली बार कुछ बच्चे स्कूल गए हैं, सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप सब बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करें और क्लास में अच्छे मार्क्स लाएं।
1: हाँ, और अपने जीवन में जो भी बनना चाहते हैं आप जरूर बने।
0: हाँ, वैसे दीदी देखिए, कुछ बातें जो है ना, हम किताबों से सीखते हैं, कुछ कहानियों से सीखते हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे अगर लगती तो मुश्किल है, लेकिन रोचक तरीके से अगर बता दी जाए तो बड़ी आसान लगती है और जल्दी भूला भी नहीं जाता।
1: हाँ दीदी, जब हमारे टीचर पढ़ाते हैं ना, तो जब उसको ऐसे ही बता देते हैं तब कभी कभी भूल जाते हैं हम, लेकिन अगर उसको कहानी के तौर पे या बहुत ही रोचक तरीके से बताते हैं तो हम कभी नहीं भूलते।
0: जैसे हमारी रोचक दीदी,
1: हाँ दीदी।
0: आज क्या रोचक दीदी जानकारी लेके आई है दोस्तों के लिए, सुनते हैं।
2: बच्चों नमस्ते, रोचक दीदी फिर आ गई है लेकर अपना जादुई पिटारा। और इस जादुई पिटारे से आज क्या निकलेगा? लहराता गरजता नीला सागर, समुद्र, ओशन या सी। वैसे बच्चों सोचिए तो कि पानी का तो कोई रंग होता ही नहीं है, है ना? हाँ, वो बात अलग है कि हम उसमें कोई रंग घोल दें, लेकिन पानी का अपना रंग होता है क्या? अब जरा याद करिए उस विशाल गहरे समुद्र को। सोचिए इतने बड़े समुद्र का जो पानी है वो भला हमें नीला क्यों दिखाई देता है? पानी का तो अपना कोई रंग होता नहीं है, फिर तो समुद्र का पानी नीला क्यों? मैं बताऊं भाई, समुद्र या सागर का पानी नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन की प्रक्रिया के कारण। होता यह है कि जब सूर्य प्रकाश समुद्र की सतह पर पड़ता है तो पानी के जो छोटे छोटे अणु होते हैं उस प्रकाश को बिखेर देते हैं, और प्रकाश में जो लाल, नारंगी और पीले और नीले रंग की रोशनी होती है ना, पानी के अणु इन लाल, नारंगी और पीले रंगों को अवशोषित कर लेते हैं। केवल नीला रंग जो है वो अवशोषित नहीं हो पाता और बिखरने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचता है, यानी कि हमें वो नीला दिखाई देता है। तो हमें लगता है कि जो समुद्र है वो नीला है, यानी समुद्र का जो पानी है वो नीले रंग का है। अगली बार जब आप समुद्र तट पर जाएं तो इस बात पे गौर जरूर करिएगा। फिलहाल रोचक दीदी अपना पिटारा आज यहीं समेटेगी, फिर आएगी आपके लिए लेकर रोचक जानकारियाँ। बाय बाय।
1: दीदी, रोचक दीदी तो बहुत अच्छी बात बताई, और ये जो जानकारी थी ना, ये सच में हमारे तो काम की है ही और हमारे नन्हे साथियों के काम की भी
0: हाँ,
1: है।
0: क्योंकि देखिए, हमारे पर्यावरण में बहुत सारी चीजें हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, मिट्टी है, सागर है, सब कुछ है, और इन सब के साथ हर किसी का जीवन जुड़ा है।
1: और अभी बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो चुकी है, तो दीदी ऐसे में अगर हम एक पौधा लगाएं, एक पेड़ लगाएं, तो इससे हम अपने पर्यावरण में एक अपना योगदान भी दे सकते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों देखिए, ये मौसम जब बारिश वाला होता है ना, तो कोई भी पौधा लगा दीजिए, कोई बीज रोप दीजिए, वो बहुत जल्दी पनप जाता है, ज्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती ना दीदी। इस मौसम में, यानी कि जुलाई के मौसम में पेड़ पौधे लगाते हैं, ताकि ये पेड़ पौधे भी रहे और हमारा पर्यावरण भी हरा भरा रहे।
1: हाँ दीदी, जो भी हमारा पर्यावरण है, हमारी प्रकृति ने जो कुछ भी हमें दिया है इसे हमें बचा कर रखना चाहिए। पानी हो, हवा को प्रदूषित नहीं करना
0: जी
1: चाहिए, ये सारी चीजें बचाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में अगर इसे बचा के रखेंगे तो ये हमारे ही काम आएगी।
0: और देखिए दोस्तों, जैसे हम अपने घर में रहते हैं ना, वैसे बहुत सारे पक्षी जो हैं वो पेड़ों पे रहते हैं, कुछ मिट्टी में रहते हैं, कुछ तनों पे रहते हैं, तो उनका भी तो घर है, तो उन सब के लिए इस पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। हम सब छोटी छोटी पहल अगर करें ना, तो हमारा पर्यावरण बिल्कुल सुंदर रहे, हरा भरा रहे। और घड़ी भी कुछ कह रही है ना दीदी।
1: हाँ दीदी, कि अपने अब बातों को हम समेट लें और जो बातें बची हैं वो अगले कार्यक्रम में करें।

0: हाँ देंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तो अपनी शबनम दीदी,
1: और निशा दीदी को दीजिए अनुमति।
0: जय
1: जय
0: हिंद।
1: हिंद।
2: अभी आप सुन रहे थे नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 5:10 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं नीति शुक्ला।
5: नमस्कार, मैं हूँ नीति शुक्ला और प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ में मैं आज ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाली हूँ जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। वैसे तो हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल है, लेकिन जो बात इन्हें खास बनाती है वो है इनका काम। ये जाने जाते हैं ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से। आइए, क्या है इनकी जर्नी और क्या है काम, जानते हैं खुद इन्हीं से। स्वागत करते हैं देवेंद्र सूरा जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
6: नमस्ते बहन जी, बड़ा धन्यवाद करता हूँ मैं आकाशवाणी का। जिस तरह आकाशवाणी ने पर्यावरण के विषय को उठाया है और जन जन तक ये बात जाए
5: जी।
6: और समाज में बड़ा परिवर्तन आए।
5: तो देवेंद्र जी, आप बने ट्री मैन ऑफ हरियाणा, लेकिन इसके पीछे एक लंबा सफर रहा होगा। हम उस सफर की शुरुआत की बात करेंगे कि क्या थी वो पहली घटना जिससे आपको अंदर तक झकझोरा और आपने सोचा कि इस दिशा में काम करना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए।
6: वैसे तो मैं अपनी मातृभूमि से, अपने देश से बड़ा लगाव है और उसके लिए समर्पित भाव से मेरे मन में यही था, मैं अपने देश के प्रति ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को भी शांति मिले और देश को भी लाभ मिले। शुरू में इस तरह हमारा जो बचपन था वो गाँव में या खेतों में ही बीता है। हम प्रकृति से जुड़े हुए थे, लेकिन जब हम शहर में आए सोनीपत में और बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम चंडीगढ़ पुलिस में जब मैं हुआ।
5: अच्छा,
6: तो चंडीगढ़ पुलिस में वहाँ की हरियाली को देखा और मेरे मन में आया जब चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, क्योंकि वहाँ बहुत ऐसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ या औषधीय पेड़ बड़ी संख्या में लगे हैं। और वहाँ से मेरा मन भी प्रभावित हुआ, जब पेड़ पौधों की वजह से, प्लान की वजह से एक शहर को हरा भरा बनाया जा सकता है और जिसका पूरे देश में नाम है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाए।
5: तो ये कब शुरुआत की आपने?
6: ये 2011 में मैं चंडीगढ़ में गया और वहां से बड़ा प्रभावित हुआ और उसके बाद धीरे धीरे विचार बनता गया राष्ट्र के लिए ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को ऊर्जा मिले। और 2012 में तो इस तरह कार्य शुरू किया और 2014 में तो बिल्कुल अपने मन में धारण कर लिया प्रतिदिन पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना, पर्यावरण के लिए ही कार्य।
5: तो अब तक कितने पेड़ लगा चुके हैं आप?
6: अब तक 2.5 लाख के लगभग हमने पेड़ ऐसे लगाए हैं जो वृक्षों का रूप ले चुके हैं।
5: अच्छा,
6: जैसे हम परिवार में एक बच्चे का पालन पोषण करते हैं
5: जी,
6: एक छोटे बच्चे की सुरक्षा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके खाने का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही पेड़ लगाकर उसकी सुरक्षा, उसके पानी की व्यवस्था, उसको परिवार का एक हिस्सा मानकर उसको इस दृष्टि से गांव-गांव विचार भी बढ़ा और पेड़ भी बढ़े।
5: मेरा अगला सवाल यही था कि एक पौधा लगाना, एक सैपलिंग लगाना या बीज लगाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन उसकी देखभाल करना बड़ा मुश्किल है और आप हर जगह तो नहीं जा सकते हैं, तो ये कैसे मैनेज करते हैं, कैसे लोगों को जोड़ते हैं?
6: शुरू में जब समाज में गए तो इतना मजबूत विचार नहीं था, क्योंकि गांव-गांव गए, युवाओं को जोड़ा, गांव की चौपालों में गांव वासियों को इकट्ठा किया, तो पर्यावरण के प्रति या पेड़ पौधे प्रति बहुत कम विचार। लेकिन जब धीरे धीरे गए, उनको इनके महत्व को समझाया, तो हमने कहा देखो हमारी मुहिम चलती है बीजारोपण से वृक्षारोपण। अगर जो बच्चा अगर छोटा है बीज से जुड़ जाता है, उसको पता लग गया आम की उठली से पौधा कैसे बनता है, जामुन की उठली से पौधा कैसे बनता है, जब वो उसको बीज से अंकुरित पौधा उगाते हुए खुशी होगी, निश्चित तौर पर उस पौधे से जुड़ेगा और पूरा जीवन उसकी देखभाल करेगा, उसको परिवार का हिस्सा मानेगा और गांव में बड़ी संख्या में सभी को इकट्ठा करके एक मूवमेंट, जन आंदोलन के रूप में कार्य।
5: किस एज ग्रुप का सबसे ज्यादा आपको सहयोग मिला या उत्साह से लगे? वृद्ध लोग थे या युवा थे, किस तरह के लोग थे?
6: वैसे तो पूरे समाज का, जनमानस का सहयोग मिला, लेकिन मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा सहयोग युवाओं का मिला।
5: अच्छा,
6: और उसमें युवाओं में हमारे युवा साथी भी थे और हमारी स्कूल की बेटियां भी कॉलेज की बेटियां भी थी, जिन्होंने जब हम गांव-गांव गए, गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाए, तो एक समय की बात है हम एक डिवाइडर पर पेड़ लगा रहे थे, तो हमारे मन में आया क्यों ना इस बार हम पेड़ बेटियों के नाम पे लगाएंगे।
5: अच्छा।
6: और हमने 100 पीपल के पेड़ 100 बेटियों

0: नाम पे लगाए और उनकी सुरक्षा के लिए हमने उस पे लोहे का ट्रिगर लगाया।
1: अच्छा।
0: और उस पे हमने, जैसे अक्सर समाज में होता है, अगर बेटी के अगर कहते हैं भाई उसके ऊपर स्नोप लिखा जाता है तो उसमें पिता का नाम ज्यादा आता है हर जगह, लेकिन हमने एक मुहिम चलाई, युवा साथियों से चर्चा की, अगर भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है उसकी माँ का नाम, और उसमें मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितनी प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, एक बड़ा विश्वास बना समाज में, और वो आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष, ठंडी सड़क है, पीपल वृक्ष है, बेटी रोड है, ऐसे कहते हैं।
1: कहाँ पर है बेटी रोड? कहाँ पर है?
0: सोनीपत में है।
1: सोनीपत में। ये जर्नी आसान तो नहीं रही होगी, क्योंकि आपने सहयोग की बात की, आई एम श्योर कि बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे इसमें, तो किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा?
0: समाज में अगर हम काम करते हैं, अगर हम बात करें, पहले भी देश के लिए लाखों व्यक्तियों ने काम किया, और उसमें जब भी हम कोई इस तरह का समाज के लिए, देश के लिए कार्य करते हैं, उसमें निश्चित तौर पर हमें संघर्ष और बाधाएं आती हैं, लेकिन जब एक लक्ष्य स्पष्ट हो, एक नीति स्पष्ट हो, इस मातृभूमि के लिए, देश के लिए कार्य करना है, तो जब शुरू में हम समाज में वृक्षारोपण अभियान चलाया तो अक्सर लोग कहते थे अगर भाई ये काम आपका नहीं है, समाज में मानते थे ये तो जो वृक्षारोपण है, पेड़ लगाना, वो माली का ही काम है। शुरू में वो कहते थे भाई आप और कार्य करो, आप इस तरफ कहां बढ़ते जा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जब हम उस गांव में पेड़ लगाए और उस गांव में अच्छा वातावरण बना और गांव में फल लगे, किसी गांव में फूल लगे, तितलियों की संख्या बढ़ी, मधुमक्खियों की संख्या बढ़ी, तो धीरे धीरे समाज में एक विचार मजबूत होता चला गया, एक जन आंदोलन का रूप लेता चला गया, गांव गांव इस तरह के अभियान चले और तो सैकड़ों गांव इसमें जुड़े।
1: अब ये तो बात हुई लोगों के सहयोग की, लेकिन अब सवाल उठता है वर्क लाइफ बैलेंस का, क्योंकि आप एक सरकारी नौकरी चंडीगढ़ पुलिस में थे, तो कैसे करते थे ये?
0: मैंने खुद पुलिस में रहते हुए देखे, इतने बड़े अनुशासन की सर्विस है और इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, जो बड़े अच्छे अधिकारी हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है समाज के लिए, देश के लिए काम करने की। और ऐसे ही हमारे चंडीगढ़ पुलिस में हमारे डीजीपी हैं, आईजी हैं, एसएसपी हैं, और उनका पूरा सहयोग बना रहता हमारे ऊपर, जो भी हमारी छुट्टियां होती है, लंबी छुट्टी, या जब भी जिस तरह के हमें ड्यूटी का हम अपेक्षा करते हैं, ड्यूटी के साथ साथ समाज का, इस पर्यावरण का काम कर सके। और निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ पुलिस की जॉब में तो बड़ा आनंद रहा, बड़ा अनुभव रहा, क्योंकि पुलिस की जॉब में एक अनुशासन था और पुलिस के अधिकारियों का फुल सपोर्ट मिला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे देश में एक पुलिस की छवि बेहतर हुई, जिस तरह से समाज में पौधारोपण का कार्य किया, लोगों में विश्वास बढ़ा, तो इसी तरह लोगों में समाज में भी विश्वास बढ़ा, अब पुलिस वाला व्यक्ति भी इस तरह समाज में पर्यावरण के लिए, इस धरती माँ के लिए कार्य कर सकता है।
1: आपने नाम भी रोशन किया, क्योंकि आपका नाम अब जीके के सवालों में भी पूछा जाता है कि ट्री मैन ऑफ हरियाणा कौन है, और जवाब में आपका नाम आता है, तो आपके डिपार्टमेंट का रिएक्शन कैसा होता है?
0: मैं कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जीव जंतु के लिए, इस पूरे देश के लिए सबसे जो जरूरी है पर्यावरण का विषय है, और ऐसा विषय अगर पूरे समाज में, पूरे देश में अगर चंडीगढ़ पुलिस का नाम होता है तो पूरा गर्व महसूस होता है, चंडीगढ़ पूरी पुलिस को, पूरे कर्मचारियों को, सीनियर अधिकारियों को, और पूरा हौसला बढ़ाते हैं।
1: अच्छा, एक चीज हमने सुनी है कि आप अपनी पूरी पूरी सैलरी लगा देते हैं इस अभियान के लिए, और कई बार आपने लोन भी लिया है, तो क्या वो एक अनुभव रहता है? घर में कभी विरोध नहीं हुआ?
0: जब हम पूरी पूरी सैलरी इस पे लगा देते हैं, और कई बार ऐसा होता है ज्यादा वृक्षारोपण के या नर्सरी खोलने की बात होती है तो उसमें लोन लेना पड़ता है, क्योंकि लोन से एकदम तुरंत पैसा मिल जाता है। तो शुरू में घर में, परिवार में तो विरोध हुआ, क्योंकि परिवार में अक्सर क्या होता है, ज्यादातर समाज यही अपेक्षा करता है, परिवार वाले, एक हमारी बड़ी गाड़ी हो, एक बंगला हो, और भी सुविधाएं बढ़े, और भी संपत्ति बढ़े, लेकिन मेरा विचार ये था कि हमारा पर्यावरण बढ़े। जब हवा ही सांस लेने योग्य नहीं रहेगी तो मैं मानता हूँ जो ये भौतिक चीजें जो हम बढ़ाते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत छोटी हैं। हमारे परिवार में भी, रिश्तेदारी में भी, समाज में भी ऐसा बहुत शुरुआत में विरोध हुआ कि ये इतना आप इस तरफ बढ़ते जा रहे हो, और समाज जो है, एक दिशा जो समाज में चाहते हैं लोग, भौतिक संसाधन वो बढ़ाए, समाज में बड़ी दिक्कत आई, परिवार में बड़ी दिक्कत आई, लेकिन धीरे धीरे जब विचार मजबूत हुआ, उन्होंने पता चला जिस तरह से प्रकृति, एक मनुष्य भी एक जीव है, अगर हम पर्यावरण के अनुकूल हम नहीं रहेंगे, अपनी जीवन शैली नहीं रखेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, जितना व्यक्ति का इस धरती पे महत्व है, उतना ही एक मधुमक्खी का, उतना ही एक तितली का, उतना ही मोर का, मैं ये कहता हूँ हर जीव जंतु का उतना महत्व है, तो धीरे धीरे विचार बना और पूरा परिवार आज इस अभियान में बड़ा सहयोग करता है।
1: जब आपने ये शुरू किया था अभियान, तो कभी लगा था कि ये इतना बड़ा अभियान बन जाएगा?
0: नहीं, मैं जब गांव से 1995 में आया, और गांव में ज्यादा खेतों में जाते थे दादाजी के साथ, और स्कूल में कम रुचि थी, लेकिन गांव से निकल के आए और शहर में पढ़े, मैं कहता हूँ स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हम बहुत से समाज में जो

0: हमारे सीनियर होते हैं या जागरूक लोग होते हैं उनसे मिले और उनसे सीखने को मिला, और धीरे धीरे मैं ये मानता हूँ कि शुरुआत में ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। गांव जैसे आज कई हजार युवा साथी जुड़े हैं, प्रत्येक गांव में ऐसा मतलब ऐसा महसूस होता है ये गांव भी हमारा है, ये गांव भी हमारा, मतलब पूरा समाज अपना परिवार लगता है। तो इस तरह से गांव गांव गए और आज कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन नेक नीति जब व्यक्ति की स्पष्ट होती है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। आज महसूस होता है प्रत्येक गाँव अपना परिवार की तरह है और पूरा देश अपना एक मातृभूमि अपना एक परिवार की तरह है, और आज बड़ा गर्व महसूस होता है क्योंकि आज एक विचार है, प्रत्येक गांव से युवा जुड़े हैं, मातृ शक्ति जुड़ी है। और मैं बात करता हूं, मेरे को बड़ी प्रेरणा मिलती है जब मैं गांव में जाता हूं, क्योंकि लोग इकट्ठा होते हैं और वो सोचते हैं, गांव व्यक्तियों का नहीं होता, गांव समस्त जीव जंतुओं का, एक अच्छे तालाब का, सभी से मिलकर गांव बनते हैं।
1: आपने जीव जंतु की बात की तो आजकल हमने ये भी नोटिस किया कि बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, इसी के चलते कि उनके पास प्रॉपर रहने की जगह नहीं है, खाने पीने की नहीं है, तो उनके लिए किस तरह के पेड़ आप लगा रहे हैं कि उन्हें भी प्रॉपर हैबिटेट मिले और खाना मिले?
0: बहुत सी प्रजातियां आज विलुप्त हो रही है और मैं मानता हूँ इसके ऊपर बड़ा गहरा हमने काम किया है। जैसे आपने देखा होगा विश्व में कोरोना जैसी महामारी आई और पूरे संसार को, जिसने प्रत्येक मनुष्य की मन को विचार को हिला दिया। समाज में जैसे लंबे समय से वृक्षारोपण अभियान चला रहे, लेकिन हम ये मानते जब लोगों का कोरोना काल में प्रकृति के प्रति बड़ा झुकाव था, और हमने देखा कि हर गांव में पहले वन क्षेत्र होते थे, बनी होती थी, और आपने कहा विलुप्त होती प्रजातियां, तो उन बनियों में वे ऐसे आश्रय थे जहां पर मुख्य जीव जंतु जैसे नेवला है, तीतर है, गिलहरी है, मोर है, बहुत से सैकड़ों जीव जंतु उसमें रहते थे। वो उनका एक गांव था और उसमें गांव वासियों का एक विचार बना, युवा साथियों से विचार किया, हर गांव में ऑक्सीजन बाग लगाना है। आपने आम के बाग सुने, आपने बेर के बाग सुने, लेकिन जब ऑक्सीजन शब्द का प्रयोग आया, गांव वासियों का झुकाव बना और हजारों की संख्या में गांव वासी माताएं बहने युवा साथी एक बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और गांव गांव इस तरह से 10 एकड़ में 20 एकड़ में वृक्षारोपण अभियान चले, और हरियाणा के 27 गांव में इस तरह के अभियान चले और एक जन आंदोलन का रूप लिया। गांव गांव ऐसा प्रयास है हर गांव में इस तरह के ऑक्सीजन बाग लगाए जाए।
1: तो अब तक कितने गांव में आप लगा चुके हैं ऑक्सीजन बाग?
0: अब तक 27 गांव में ऑक्सीजन बाग लगाए हैं, और उसके अतिरिक्त जैसे बहुत से गांव में जैसे शमशान भूमि है या किसी तालाब के पास है या स्कूल के पास है, मतलब या स्टेडियम है, मतलब ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं ऑक्सीजन बाग में जो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। आजकल प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, लेकिन उससे पहले हमारे पत्तों की पतल प्रयोग होती थी, उसके लिए ढाक के पेड़ का प्रयोग होता था। हम ढाक के पेड़ को बढ़ा रहे हैं, ऐसे पेड़ को बढ़ा रहे हैं जिससे या तो जीव जंतुओं को आश्रय मिलता है या ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, मतलब धीरे धीरे उन औषधीय वनस्पतियों को भी बढ़ाया जा रहा है।
1: तो आपका फेवरेट पेड़ कौन सा बन गया है, क्योंकि जिसकी ज्यादा बहुत ज्यादा देखरेख ना करनी पड़ी हो, बस लगा दिया और वो अपने आप फल जाता हो?
0: वैसे तो सभी वनस्पतियों का इस धरती पे महत्व है, लेकिन मेरा झुकाव बरगद के पेड़ पे, राष्ट्रीय पेड़ है, और एक ही पेड़ मैं कहता हूँ इसमें हजारों जीव जंतुओं का आश्रय बनता है।
1: अगर एक आम इंसान भी हमारी बातचीत सुन के उसे भी लगे कि हमें भी पेड़ लगाना चाहिए, तो वो क्या करे सबसे पहले?
0: अगर आम इंसान भी आकाशवाणी की बात को सुन के और जन जन का विचार बने हमारे को भी पेड़ लगाना है, तो सबसे बड़ी बात है उसका विचार बन गया पेड़ लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। और उसको सबसे पहले अपने ऐसी आदत डाले जैसे घरों में छोटी छोटी नर्सरियां बनाए, जैसे अभी हम आम खाते हैं, आम की गुठली से अपने गमलों में पौधा तैयार करे, या जामुन की गुठली से पौधा तैयार करे, नीम से पौधा, जो भी घरों में फल प्रयोग करते हैं उससे पौधे तैयार करे, और एक छोटी ही घर में ही नर्सरी बनाए। जब उसके पौधे 2-3 फीट के हो जाए तो कहीं भी नजदीक कोई पार्क है या कहीं उसके खेत में है, जहां भी संभव हो उन पेड़ों को लगाए और परिवार का हिस्सा माने, और हो सके तो अपने जो भी घर में सदस्य है उनके जन्मदिन पर ऐसा प्रयास करे तो समाज में एक बड़ा परिवर्तन आएगा।
1: अच्छा।
0: पार्कों में वृक्षारोपण कर सकते हैं अपने घरों में, और नहीं तो ज्यादा नहीं तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन देने वाले इंडोर प्लांट लगा सकते हैं जन्मदिन पर, जैसे एरिका पाम है, स्नेक प्लांट है, पीस लिली है, या घर में छोटे पौधे एलोवेरा है, तुलसी है, अश्वगंधा है, ऐसे पौधे हम घरों में जन्मदिन पर लगा सकते हैं। और गाँव वासियों के लिए कहता हूँ, जो अपने गाँव में गोचर भूमि होती है, पंचायत भूमि होती है, उसमें खुले तौर पर बड़ी बड़ी भूमियां होती हैं, और खासकर एनसीआर के आसपास में बात करूं तो बहुत ज्यादा संख्या में हर गांव में भूमि है और पंचायती या गोचरण भूमि में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा सकता है।
1: अवेयरनेस का कितना महत्व है इसमें और सोशल मीडिया के जरिए इसे किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं?
0: अवेयरनेस का ये सबसे बड़ा महत्व मैं अपना अनुभव साझा करता हूं आपके साथ, क्योंकि 10-12 साल पहले जब हम वृक्षारोपण करते थे तो उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी।

0: गांव गांव जाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे। अगर 10 लोगों को इकट्ठा करना था उसके लिए भी कई बार प्रयास करने पड़ते थे। लेकिन मैं कहता हूं सबसे बड़ी अवेयरनेस धीरे धीरे लोगों का विचार बढ़ा और आज सम्मान से महसूस करते हैं पेड़ लगाना बड़ा अच्छा कार्य है। और आज जब भी ऑक्सीजन बाग लगाया जाता है किसी गाँव में तो वहां पर उस गाँव के हजारों व्यक्ति, माताएं, बहने, बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, भंडारा लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। एक जैसे घर में त्यौहार होता है या शादी वगैरह होती है, इस तरह गाँव में वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ विचार के माध्यम से, ये एक संख्या के तौर पर वृक्षारोपण हुआ है, लेकिन विचार के माध्यम से समाज में एक बड़ा परिवर्तन आया और बड़ा जन आंदोलन का रूप।
1: नेटिव प्लांट का कितना महत्व है? अगर हम पेड़ लगाने के लिए जाएं तो कौन से ऐसे नेटिव प्लांट हैं, आप उनका सुझाव देंगे कि ये लगाने चाहिए?
0: जहाँ हम रहते हैं वहाँ के जो स्थानीय प्रजातियां पेड़ पौधों की वो ज्यादा लगाएं। जैसे अगर अपने NCR की या हरियाणा की बात या दिल्ली की बात करें तो इसमें एक बेरी का पेड़ है या नीम का पेड़ है या जाटी का पेड़ है, मतलब जो बड़ा प्राचीन पेड़ है, तो ऐसे बरगद है, पीपल है, मतलब उन पेड़ों को बढ़ाएं जो आसानी से उस भूमि में चल सके, उसके जलवायु के अनुकूल उनका पालन पोषण कम करना पड़े और विशाल रूप ले सके, वो भी खुश रहे और ऑक्सीजन भी खुश होके दे सके।
1: पॉलिथिन से किस तरह का नुकसान हो रहा है हमारे पर्यावरण को?
0: आज से अगर हम 30 साल पहले की बात करते, किसी गाँव में जाते हैं, गाँव में कोई भी पॉलिथिन नहीं थी। अक्सर हमारे बुजुर्ग हैं वो कोई भी दाल, चीनी या सब्जी लेनी होती थी वो अक्सर पुराने कपड़े थैला प्रयोग करते थे। और मैं तो बड़ा गर्व महसूस करता हूँ, साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला।
1: क्या बात है।
0: तो देखो ये पर्सनालिटी के ऊपर है, व्यक्ति दो तरह की पर्सनालिटी है, एक इंटरनल पर्सनालिटी, एक एक्सटर्नल। वो हमारे ऊपर हम कैसा जीवन जीते हैं। मैं खुले दिल से थैले का प्रयोग करता हूँ, कोई भी सामान लेता हूँ इसमें डालता हूँ। प्रतिदिन एक घर में कम से कम आप लगाओ 5 पॉलीथिन आती है, और महीने की 150 हुई तो साल की 1000 पॉलीथिन हो गई। और धीरे धीरे अगर इसको हम कम करें, मैं जोर दूंगा कम से कम पॉलीथिन का प्रयोग करें, तो धीरे धीरे जब पॉलीथिन कम होगी, गांव अगर गंदा है तो पॉलीथिन की वजह से गंदा है, शहर अगर गंदे हैं तो पॉलीथिन की वजह से गंदे हैं, और कहीं ना कहीं हम जो ये प्रदूषण के गुलामी महसूस करते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा निवेदन है पॉलीथिन को जितना कम से कम प्रयोग हो, अपना जीवन में पॉलीथिन का कम प्रयोग करें, दोबारा से कपड़े के थैलों का प्रयोग करें, जूट के थैलों का प्रयोग करें, और कहीं ना कहीं इस धरती माता को कुछ दे सकते हैं तो पॉलीथिन को कम करके दे सकते हैं।
1: तो अगर कोई पेड़ नहीं भी लगा पा रहा है और उसकी सेवा नहीं कर रहा है तो कम से कम वो पॉल्यूशन जो करने वाली चीजें वो कम इस्तेमाल करे तो काफी बदलाव आ सकता है।
0: सबसे बड़ा मैं परिवर्तन मानता हूँ व्यक्ति अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करे। वो जीवन शैली में व्यक्ति अगर 4 जोड़ी कपड़े डालता है तो निश्चित तौर पर उस कपड़े को बनने के लिए कितना पानी वेस्ट होता है, भारी मात्रा में, मतलब पानी की वेस्टेज होती है। इसलिए अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जीने आप प्रयास करें। जैसे समय हो आपके पास तो पैदल चले या साइकिल का प्रयोग करें, कम से कम कपड़ों का प्रयोग करें, साधारण जीवन शैली अपनाए, मतलब पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली ही अपनाए।
1: अगर हर नागरिक एक पेड़ लगाए, ज्यादा नहीं सिर्फ एक पेड़ अपने जीवन में लगाए, तो कैसा बदलाव आ सकता है?
0: पूरे विश्व में बात करें तो ऐसे देश भी है जिसमें 8-9 हजार प्रति व्यक्ति पेड़ है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो 28 पेड़ प्रति व्यक्ति है। लेकिन समाज की बात करें, लोगों में बहुत कम जागरूकता है पेड़ लगाना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर व्यक्ति का यही एक जागरूकता उसके अंदर आ गई है कि मैं एक पेड़ लगाना, वो एक पेड़ से नहीं रुकेगा। एक बार वो पेड़ से जुड़ गया, उसने उस पेड़ को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया, तो निश्चित तौर पर हर साल वो किसी न किसी उत्सव पर, जन्मदिन पर पेड़ लगाएगा। और सरकारें भी ऐसा करती हैं। हरियाणा में स्कीम चली है जैसे किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिन किसानों के खेतों में पेड़ है, जैसे पुराने पेड़ है, पीपल है, जाटी है, नीम है, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जिनके बड़े पेड़ है या गांव में पंचायत को मिलती है या जिसके खेत में है, जगह में, उसको मिलती है। हरियाणा मात्र ऐसा प्रदेश है जहां पेड़ों को भी पेंशन मिलती है।
1: तो इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा पेड़ लगाने के लिए। और अगर हर बच्चे के जन्म पे एक पेड़ लगा दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
0: हाँ देखो, अगर परिवार में 4 सदस्य है तो 4 पेड़ लगाएंगे, धीरे धीरे समाज में एक जागरूकता बढ़ती जाएगी। और जन्मदिन ही ऐसा एक उत्सव है जो हर वर्ष आता है, हर व्यक्ति का आता है, और जन्मदिन पर हर व्यक्ति चाहता है वो कुछ ऐसा करे जो इस धरती पर आया है उसका मन भी खुश हो, वो इस प्रकृति को भी कुछ दे सके। और मैं कहता हूं अगर आप वाली बात है, अगर जन्मदिन पर व्यक्ति में जागरूकता आती हो, पेड़ लगाता, निश्चित तौर पर इस देश में जो पर्यावरण की समस्या, पेड़ों की समस्या है, उसका हल एक जन्मदिन पर पौधारोपण से ही पूरे देश में एक जन आंदोलन का रूप बन सकता है।
1: आपने कोई नर्सरी की भी शुरुआत की है क्या, जहां से आप बीज या सैपलिंग्स लोगों को देते हैं?
0: हाँ, ऐसा एक जनता नर्सरी बनाई है, उसका नाम भी इसलिए रखा जनता नर्सरी क्योंकि जनता ही नर्सरी है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं और

0: ऐसे पेड़ ज्यादा दिए जाते हैं जैसे बरगद, पीपल, नीम या फलदार जामुन, अमरूद, बेलपत्र, मतलब ऐसे वृक्ष दिए जाते हैं जो सामान्य तौर पर समाज में जागरूकता भी बढ़े और पर्यावरण के लिए भी अच्छे रहे।
1: इतने सालों में कभी आपको ये नहीं हुआ कि भाई बस बहुत हो गया, मैंने बहुत पेड़ लगा लिए, बाकी लोग भी कुछ करें, ऐसा विचार कभी आया मन में?
0: विचार ऐसा आता है कि परमात्मा मेरे को और ज्यादा पहले से ही जागरूक करता, मैं जो ये पेड़ लगाने का कार्य है, ये धरती का जो प्रकृति का कार्य है, ये मैं और पहले से शुरू कर पाता। अभी मन कहता है ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
1: अब कुछ सवाल हमने रैपिड फायर के लिए आपके लिए रखे हैं, तो आपका पसंदीदा पेड़ कौन सा है?
0: मेरा पसंदीदा पेड़ बरगद का पेड़ है, राष्ट्रीय वृक्ष।
1: पर्यावरण को सेफ रखने के लिए कोई एक आदत जो हर भारतीय को अपनानी चाहिए?
0: पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना चाहिए।
1: और अगले 10 सालों में अपनी इस मुहिम को आप कहाँ देखने का सपना देखते हैं?
0: अगले 10 सालों में यही सपना देखते हैं कि जनमानस में ये मुहिम बढ़े और हर गांव में दोबारा से जैसे पहले गांव थे तितलियां, मधुमक्खियां और दोबारा से पक्षियां उड़े और गांव जैसे पहले थे वैसे गांव बने और वनस्पतियां बढ़े, पक्षियों की जो लुप्त होती प्रजाति जैसे गिद्ध है वो दोबारा से लौटे, उनका घर है।
1: एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ रहा था कि आप किस तरह से ये काउंट रखते हैं कि इतने पेड़ लगाए, जैसे शुरू में आपने कहा कि लगभग 2.5 लाख पेड़ आप लगा चुके, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जितने सैपलिंग्स लगाएं वो वृक्ष में तब्दील हों, तो किस तरह से आप ये काउंट करते हैं?
0: ज्यादा करे जैसे हम ऑक्सीजन बाग लगाते हैं और उसमें पहले से ही होता है, इसमें आज इस गांव में 1100 पेड़ लगेंगे या 5000 पेड़ लगेंगे और उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाता है, गांववासी को जोड़ा जाता है, इस माता का ये पेड़ है, इस बच्चे का ये पेड़ है और उसको पूरे गांव को उसको जोड़कर उसकी सुरक्षा भी की जाती है, ऑक्सीजन बाग की और पानी की व्यवस्था भी की जाती है। और उसमें ऐसा होता है 1-2 पेड़ की दिक्कत हो सकती है, नहीं तो उसमें मैं कहता हूँ 99% पेड़ कामयाब होते हैं। जब हम जुड़ाव एक बच्चे जैसे बच्चा परिवार में होता है, जब पेड़ को भी परिवार का हिस्सा मानते हैं और उसकी देख रेख करते हैं, उसमें कामयाबी निश्चित तौर पर 100% मिलती है।
1: किन लोगों से आपको प्रेरणा मिली इस काम को करने की?
0: वैसे तो सबसे बड़ी प्रेरणा मनुष्य भी प्रकृति का हिस्सा है और इस धरती माँ से बड़ी प्रेरणा मिलती है, लेकिन मैं बात करूँ पूरे विश्व में 1730 में माँ अमरता देवी ने पेड़ों के लिए बलिदान दिया, उनकी प्रेरणा से उनकी तीनों बेटियों ने बलिदान दिया और उनके बलिदान से उस आसपास के गांव के 363 व्यक्तियों ने पेड़ों को बचाने के लिए राजस्थान में बलिदान दिया। मुझे याद आती है माता सालूमरदा थी मक्का, कर्नाटक से हैं, जो वो अभी उनका दाह संस्कार हुआ 114 साल की हुई थी, मैं गया था वहां उनसे मिलने के लिए और उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने बरगद के पेड़ों को अपना संतान के रूप में माना और कोयले की खान में वो काम करती थी, उनका एक झोपड़ी में रहती थी, मैं देखा उनका जो कार्य था इस प्रकृति के माँ के लिए, पेड़ों को बच्चों के रूप में मान के कार्य किया, मतलब ऐसे लोगों से मेरे को बड़े प्रेरणा मिलती है।
1: हमें आपसे ये बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और अगर हमारी ये बातचीत सुन के किसी को भी ये लगा हो कि उनको भी अपने जीवन में पेड़ लगाने चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी बातचीत है बहुत सार्थक रहेगी।
0: मेरे को बड़ी ऊर्जा मिली, ये जो आकाशवाणी के माध्यम से ये विचार आकाश में गूंजेगा और जनमानस में इसका विस्तार होगा, तो जनमानस में जब कोई विचार बढ़ता तो समाज में पूरे देश में एक बड़ा परिवर्तन आता है। तो मैं तो आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, इस विषय को उठाया है जो सबसे जरूरी विषय है, मनुष्य ही नहीं प्रत्येक जीव जंतु के लिए जरूरी है, तो मैं आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ।
1: और भारत के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: भारत के नागरिक को यही संदेश देना चाहूंगा, अगर वो अपने आप को भारत का नागरिक मानते ही हैं, तो सबसे बड़ा है कि वो अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जिए, कम से कम ज्यादा नहीं तो साल में एक बार अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण अभियान चलाएं, अपने परिवार को जोड़ें और पेड़ों को भी अपने परिवार का हिस्सा माने।
1: तो आपने इतनी अच्छी बातचीत की भाई, मुझे तो बहुत ऐसा लग रहा है कि मुझे भी पेड़ लगाना चाहिए और मुझे लग रहा है हमारी बातचीत सुन करके लोगों को भी लगेगा। अगर ये कुछ लोगों के मन में भी ये बात आ गई ना, तो हमारी आज की ये बातचीत बहुत सार्थक रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातें करने के लिए, थैंक यू सो मच।
0: धन्यवाद बहन जी।
1: तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे लगता है कि अब आप भी एक पेड़ तो जीवन में जरूर लगाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नीति शुक्ला को नमस्कार।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। इस कार्यक्रम

0: को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.eirnews@gmail.com।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुने युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी।

0: दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने का सबसे सुंदर तरीका है एक दूसरे का साथ देना। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। सहयोग, विश्वास और एकता ही किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत होती है।
1: बिल्कुल सही कहा। और इसी सकारात्मक विचार के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में,
0: जहां मैं हूं आपके साथ श्रुति।
1: और मैं हूं दिव्या। आप सभी श्रोताओं को हमारा स्नेह भरा
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। दोस्तों, श्रुति ने अभी जो बात बताई, तो क्या आपको पता है कि इसी विचार को आगे बढ़ाने के लिए हर साल जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें संदेश देता है कि जब लोग मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं तो विकास की नई राहें खुल जाती हैं।
0: बिल्कुल, सहकारिता केवल साथ काम करने का नाम नहीं, बल्कि विश्वास, साझेदारी और सामूहिक प्रगति का प्रतीक है। सहकारिता की यही भावना समाज को मजबूत बनाती है और हमें यह सिखाती है कि सफलता तब और अधिक सार्थक होती है जब उसमें सबकी भागीदारी हो। सहकारी समितियाँ किसानों, महिलाओं, युवाओं और छोटे व्यापारियों को आगे बढ़ने का अवसर देती है। इनके माध्यम से लोग कम लागत पर अच्छी सेवाएं प्राप्त करते हैं और अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं, जैसे दूध उत्पादन, खेती, बैंकिंग, हस्तशिल्प और छोटे उद्योगों में सहकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इससे लोगों को रोजगार मिलता है और वे आत्मनिर्भर बनते हैं।
1: और आज के समय में युवाओं को भी सहकारिता की भावना अपनानी चाहिए। दोस्तों, अगर हम मिलकर काम करें तो एक दूसरे की मदद करें और अपने समाज के विकास में योगदान दें तो देश की प्रगति और तेज हो जाएगी। सहकारिता हमें ये सिखाती है दोस्तों कि अकेले से बेहतर है साथ मिलकर आगे बढ़ना। इसीलिए हमें अपने जीवन में सहयोग, विश्वास और टीम वर्क की भावना अपनानी चाहिए।
0: इसी के साथ दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को भी याद करते हैं जिन्होंने अपने साहस और देशभक्ति से इतिहास में अमिट पहचान बनाई। आज अल्लूरी सीताराम राजू की जयंती है, जो हर वर्ष 4 जुलाई को मनाई जाती है। उनका जन्म वर्ष 1897 में आंध्र प्रदेश में हुआ था।
1: वो भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी लोगों के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी। उन्हें आदिवासियों का सच्चा नेता माना जाता है क्योंकि वो हमेशा उनके अधिकारों और सम्मान के लिए खड़े रहे।
0: अल्लूरी सीताराम राजू ने अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों पर किए जा रहे अन्याय का डटकर विरोध किया। उन्होंने 1922 से 1924 के बीच हुए रामपा विद्रोह का नेतृत्व किया। उनके साहस, नेतृत्व और देशभक्ति ने अनेक लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ वे निडर, ईमानदार और राष्ट्र के प्रति समर्पित भी थे।
1: बिल्कुल, और अंग्रेजों ने 7 मई 1924 को उन्हें गिरफ्तार करके गोली मार दी, लेकिन उनके बलिदान ने देशवासियों में आजादी की नई चेतना जगाई। आज भी उनका जीवन हमें साहस, त्याग, देश प्रेम और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देता है। अल्लूरी सीताराम राजू की जयंती पर हम उनके योगदान को श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लेते हैं।
0: दोस्तों, आज का दिन हमें एक और महान व्यक्तित्व की याद भी दिलाता है। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा की जयंती भी है, जो हर वर्ष आज ही के दिन 4 जुलाई को मनाई जाती है। उनका जन्म 4 जुलाई 1898 को हुआ था।
1: वो भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और ईमानदार राजनेता थे। उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में भाग लिया और बाद में देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान भी दिए।
0: गुलजारी लाल नंदा को विशेष रूप से उनकी सादगी, ईमानदारी और

0: सेवा के लिए याद किया जाता है। वे दो बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों, सामाजिक न्याय और देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उनका मानना था कि देश की प्रगति तभी संभव है जब हर व्यक्ति को सम्मान और समान अवसर मिल सके।
1: उनका पूरा जीवन सादगी, कर्तव्यनिष्ठ और राष्ट्र सेवा का उदाहरण रहा। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से भी

0: के लिए उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में हमेशा नैतिक मूल्यों और राष्ट्रहित को सर्वोच्च स्थान दिया।
1: ऐसे महान व्यक्तित्व हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा सम्मान पद या प्रसिद्धि नहीं बल्कि अपने कर्म, सेवा और समर्पण से मिलता है।
0: और हमें भी अपने जीवन में सहयोग की भावना अपनाते हुए ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और समाज और देश के विकास में अपने सकारात्मक योगदान देना चाहिए।
1: तो दोस्तों, छोटी सी पहल भी किसी के लिए बड़ी राहत बन सकती है, खासकर इस भीषण गर्मी में जब इंसानों के साथ साथ पक्षियों और बेजुबान जानवरों को भी हमारी जरूरत होती है।
0: बिल्कुल। और इसी सोच के साथ दोस्तों, आज के हमारे फोन इन कार्यक्रम का जो विषय था ये था पक्षियों और जानवरों का भी रखे ध्यान, गर्मी में एक अच्छा काम। इस विषय पर हमने अपने कई श्रोताओं से उनके अनुभव और उनके विचार हमारे साथ साझा किए हैं।
1: आइए सुनते हैं हमारे श्रोताओं ने इस विषय पर क्या कहा और गर्मी के मौसम में बेजुबान जीवों की मदद के लिए वे कौन कौन से छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, आपका युववाणी के यूथ जंक्शन फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है।
2: नमस्कार, मैं गुजरात से धीरज जबारी बात कर रहा हूं।
1: तो ये बताइए कि आप हमारा कार्यक्रम रोज सुनते हैं?
2: और आप जो 5:15 कार्यक्रम शुरू होता है इसमें शुरुआत में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, उसके बाद जो श्रोताओं से बातचीत होती है वो प्रसारित करते हैं आप, तो बहुत अच्छा सा यानी समय निकल जाता है। जो युवाओं का कार्यक्रम होता है उसमें तो देखा जाए तो बहुत प्यारात्मक बातें हमें सुनने को मिलती है। आपकी पूरी टीम बढ़िया कार्यक्रम पेश करती है।
1: धन्यवाद आपका। तो हमारा आज का विषय है कि इस गर्मी में आपने क्या एक अच्छा काम किया या जंतुओं या पशु पक्षियों के लिए आपने क्या काम किया है?
2: जी, देखा जाए तो मैं अपनी बात ज्यादा रखता नहीं, लेकिन आपने बोला है तो मैं बताऊँ। मैं और हमारे कई साथी मित्र है जो पक्षियों के लिए हर रोज उसके बर्तन को धोके स्वच्छ पानी भरते और हो सके जो खाना हमारा होता है तो कभी कभी उनके लिए हम अलग रखते हैं और वो खाने में रोटली होती है और कोई दाना होते है तो डालते हैं। तो एक छोटा सा कार्य हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये पक्षियों के लिए भगवान ने एक मनुष्य को नक्की किया है कि आपको इनकी संभाल रखना है, पशु हो, पंखी हो या और कोई जीव जंतु हो, धरती पर जीवित है वही।
1: जी, तो आपको क्या लगता है पर्यावरण संरक्षण और पशु पक्षियों की देखभाल का आपस में क्या संबंध है या दोनों किस तरीके से एक साथ जुड़े हुए हैं?
2: एक बिल्कुल धरती का एक जतन है, उसकी पर्यावरण की एक सुरक्षा है। पशु, पंखी और पेड़ पौधे, इनको सुरक्षा करने की हमारी जो जिम्मेदारी है, और अगर वो सुरक्षा करेंगे तो हमें आगे जाके कुछ नुकसान नहीं होगा, हमें आगे जाके फायदा ही रहेगा। और हो सके पेड़ों को बचाए, और जो पेड़ पानी के बिना रहते उनको पानी पिलाना चाहिए, क्योंकि कई बार पानी के बिना हमारे पेड़ रोपने से यानी पौधा रोपने से अगर नहीं पानी मिलता तो वो मुरझा जाता है और वो आगे जाके निकल जाता है। तो उसके लिए हमें पेड़ पौधे को पानी पिलाना चाहिए समय समय पर। और पक्षियों को तो देखा जाए तो आप जैसे हमारे जैसे कई पुण्य लोग करते हैं तो वो तो हमारी एक पुरानी परंपरा है और इसमें हम कोई पीछे नहीं हटता, शहर के लोग हो या देहातों के लोग।
1: बिल्कुल सही कहा। धीरज जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा।
2: धन्यवाद दीदी।
1: धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका युववाणी के यूथ जंक्शन फोन इन कार्यक्रम में।
3: नमस्कार
1: जी, मेरी बात किससे हो रही है?
3: मेरा नाम श्रद्धा चटर्जी है।
1: जी श्रद्धा, तो आप कहाँ के रहने वाली हैं?
3: मैं बनारस की रहने वाली हूँ।
1: अच्छा, तो आज का हमारा विषय है इस गर्मी आपने पशु पक्षी या जानवरों के लिए क्या अच्छे काम किए, क्योंकि हम इंसान अपनी सारी चीजों को साझा कर देते हैं लेकिन पशु पक्षी या जानवर हमें अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी जो भी उन्हें परेशानी होती है वो बता नहीं पाते, तो उसके लिए आपने अपने आसपास या किसी भी जानवर के लिए कुछ किया है?
3: जी, मैंने जानवर के लिए कुछ किया है। ये पानी वगैरह का मैंने साधन उनके लिए बनाया था, टब वगैरह जो भी है गेट के पास मैंने लगवाया था, और साथ ही मेरे घर में जो है कि चिड़िया बहुत आती जाती रहती थी पहले, लेकिन अभी कुछ सालों से जो है चिड़िया का आना थोड़ा कम हो गया था, तो उनको चिड़ियों को जो है कि पक्षियों को पेड़ पौधे ज्यादा पसंद है, तो पेड़ पौधे तो मैंने थोड़ा इस बार गर्मी में बहुत ज्यादा लगाया, लगभग 80-70 पेड़ इस बार ज्यादा ही होंगे, उससे कम नहीं, क्योंकि बहुत सारे कटिंग्स भी लगाए और प्लांट्स को खरीद के भी लगाए, तो जिससे कि मुझे फायदा ये हुआ कि जहाँ मेरे घर पे चिड़ियों का आना जरा 3-4-5 तक रह गया था, वो इस साल मैंने लगभग 25-30 चिड़ियों को अपने घर में आता हुआ देखा।
1: वाह, ये तो बहुत अच्छी काम की है आपने। इसके अलावा और आप पशु पक्षियों के लिए क्या की है?
3: और उनके लिए मैंने दाना पानी का साधन जो है कि बनाया, छोटे छोटे घोंसले अपने घर में जगह

0: जगहों पे बनवा के, मतलब नदी में जो आते हैं उसको लगवाए।
1: तो आप हमारे कार्यक्रम के द्वारा किसी को कोई संदेश देना चाहते हैं हमें, किस तरीके से और पेड़ लगाने चाहिए, पशु पक्षियों की
0: जी
1: मदद
0: जी
1: करनी
0: बिल्कुल,
1: चाहिए?
0: क्योंकि देखिए पर्यावरण को बचाएंगे तभी हम बच पाएंगे, असल बात ये है। और पर्यावरण को बचाने के लिए हमें उसे सबसे ज्यादा प्यूरिफाई करने की जरूरत पड़ती है, और प्यूरिफाई करने के लिए सबसे अच्छा साधन हमारे लिए एकमात्र पेड़ पौधा ही है। पेड़ पौधे के द्वारा ही हम प्रकृति को बचा सकते हैं और अन्य जीव जंतुओं को भी।
1: ये तो आपके बहुत अच्छे विचार हैं, और मैं आशा करती हूँ हमारे युवा साथी जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो इसको मानेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में ये सारी चीजों को जरूर लागू करेंगे। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। नमस्कार, आपका युववाणी के यूथ जंक्शन फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है।
2: नमस्कार मैम जी, मैं अशोक कुमार प्रजापति करौता लोता वाराणसी से।
1: तो अशोक जी और बताइए कैसे हैं?
2: जी हम अच्छे हैं, आप लोग कैसी हैं?
1: हम सब भी बढ़िया। अशोक जी, जैसे कि पता है हम आपसे फोन इन कार्यक्रम में किसी एक विषय पर चर्चा करते हैं, आपको जानकारियां देते हैं, आपके जरिए लोगों को जानकारियां प्रदान करवाते हैं। तो आज का हमारा विषय है, इस गर्मी आपने बेजुबान पशु पक्षियों या जानवरों के लिए क्या एक अच्छे काम किए हैं?
2: ये तो आपने बहुत अच्छी बात और बहुत बढ़िया बात आपने पूछा है कि जानवर और पक्षी और हमारे कारण में जीव जंतु है
1: जी,
2: इनके बारे में कैसे ख्याल रखना चाहिए और कैसे देखभाल करना चाहिए।
1: तो आपने क्या किया इस गर्मी, आपने पशु पक्षियों या जानवरों के लिए कैसे एक मदद की उनकी?
2: मदद देखिए मैडम, कि कहने का मतलब कि अगर गाय भैंस सड़कों पर खड़ा है तो कोई उनको ये नहीं जानेगा वो भैंस प्यासा है कि गाय प्यासा है।
1: जी
2: दुकान में बल्टी रखे हैं तो थोड़ा सा हमने पानी छिड़का तो शायद कहना में प्यास अगर लगी होगी तो बल्टी में रख दिया तो गाय धीरे से चल के आई और पानी पी ली। अब पक्षी है, पक्षी अगर घर पर बरंदे में आ रहा है तो उस पर भी ध्यान देते कि अगर पक्षी आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कुछ न कुछ इसका मतलब अर्थ जरूर है। तो कटोरी में पानी और थोड़ा कलम दाना अगर फेंक दिया जाए तो उसकी भी कलम प्यास भी बुझ जाएगी और दाना खाएगी, जिस तरह हम लोग का पेट पालन होता है उनका भी उसी तरह हम लोग ध्यान भी रख सकते हैं।
1: तो क्या आपने अपने छत या बालकनी या दरवाजे के बाहर ऐसा कोई पशु पक्षियों या जानवरों के लिए कोई व्यवस्था की है दाने पानी की?
2: जी हमारे कहा कि दो पाटन का मकान है, नीचे वाले मकान में बना हुआ है थोड़ा सा, दो कबूतर रहते हैं और कबूतर हमेशा साल भर में बच्चे पैदा कर, ऐसा व्यवस्था बना हुआ है कि कबूतर हमारे मकान में हमेशा रहता है।
1: अच्छा अशोक जी, तो क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कुछ ऐसी आदतें अपना सकते हैं जिससे पशु पक्षियों को सुरक्षित और बेहतर वातावरण मिल सके?
2: क्यों नहीं, आप जो कह रही हैं सही कह रही हैं कि जिस तरह हम लोग के जिंदगी में जीवन है का चाह होती है उसी तरह एक जीव और भी है, या जानवर हो या पक्षी हो या कोई भी चीज हो, उसका भी ध्यान हम लोग को जी जान से रखना चाहिए।
1: जी तो अशोक जी, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा।
2: नमस्कार,
1: धन्यवाद। नमस्कार, आपका स्वागत है यूथ जंक्शन के फोन इन कार्यक्रम में।
3: नमस्ते, मैं परवेज अहमद शुक्लपुरा बनारस से आज से मुखातिब हूँ।
1: जैसा कि आपको पता है हम अपने फोन इन कार्यक्रम में किसी एक विषय पर बातचीत करते हैं, तो हमारा आज का विषय है, इस गर्मी आपने बेजुबान पशु पक्षियों या जानवरों के लिए क्या सहायता की या उनके लिए क्या मदद की है?
3: बहुत अच्छा टॉपिक है मैम आज, और रही बात बेजुबान पशु पक्षियों के लिए तो मैं तो पहले तो उन्हें ले दाना और पानी अपने छतों पे रखता था, और रही गाय गैया के लिए तो उसके लिए तो बाहर जो है कि जो हाउजी होती है ना उसे उसमें पानी हम लोग डालते थे कि वो बेजुबान, फिर और बाहर के जानवर है जो पानी पिए, तो इसलिए हम लोग ये करते थे कि उनको पानी और दाना और खाने का जो व्यवस्था करते थे गर्मियों में, क्योंकि बेजुबान तो बता नहीं सकते कब उनको भूख लग रही है प्यास लग रही है, वो अगर जो चीज उपलब्ध रहेगा उसी में आएंगे, जहाँ पानी दाना रहता है वहाँ चिड़िया भी बहुत आती हैं।
1: जी तो आपको क्या लगता है, एक कटोरी पानी और दाना से उनकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी या कुछ और भी उनके लिए करनी चाहिए?
3: जी मैम, पहले से ये करने से उनको जो है कि गर्मी के दिनों में जो चिड़िया जो भूख और प्यास से मर जाती है उनको बहुत सहायता मिलेगी, और रही बात है अगर जो है कि पेड़ पौधे जो है अगर वो लगाया जाए और तो उनको रहने के लिए जगह मिलेगी, और गर्मिया में ये करने से उन्हें बहुत सहायता मिलेगी, ये तो बहुत ही जरूरी है करना।
1: तो क्या कभी किसी पक्षी या जानवर ने ऐसा पल दिया है जिससे आप आज भी याद करते हुए आपके लिए वो मेमोरी की तरह स्टोर हो गई हो?
3: जी मैम, हम लोग तो अभी भी उसका इंतजार करते हैं, पेड़ों के नीचे खड़े हो जाते हैं, गाँव में जो गिलहरी जब खाती है आम तो वो आम पका हुआ जब गिरता है तो वो खाने में कितना स्वादिष्ट होता है, अगर आप खाई होंगी तो खुद ही आपको पता होगा। और जामुन जामुन के पेड़ पे जो नीचे आप खड़े रहिए तो खुद ही अपने आप जामुन जो गिरती रहती है, पक्षियों के ही द्वारा गिरती रहती है।

0: लोगों के लिए स्वादिष्ट होती है, हम तो बहुत खाए हैं मैम।
1: अच्छा, तो आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो जैसा कि आपको पता है, हम आपकी फरमाइशी गीतों को भी सुनाते हैं, तो आप कौन सी ऐसी फरमाइशी गीत है जो सुनना चाहते हैं?
0: मैम अभी तो देखिए बारिश का मौसम आ रहा है, बारिश का और इंतजार है। तो एक गाना है कि सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहके फूल गिरे, अगर ये गाना हो सके तो मैम सुनवा दीजिएगा। धन्यवाद मैम।
1: धन्यवाद।

0: हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने विचार और अनुभव हमारे साथ साझा किए। उम्मीद है कि ये बातें हम सभी को पक्षियों और बेजुबान जानवरों के प्रति संवेदनशील बनने की प्रेरणा देगी।
1: बिल्कुल, क्योंकि छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
2: रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया?
3: कैश तो गया।
2: पेमेंट कैसे करेंगे?
4: टोकनाइज कार्ड से।
3: टोकन?
4: हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स OTP CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा, अधिक सुरक्षित,
3: ऑलराउंडर।
4: ओके भाई। RBI कहता है कि
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
7: सुनो ना।
8: हाँ?
7: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
8: तो रोका किसने है? हाँ?
7: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
8: मुझसे।
7: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
8: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
7: पर उससे मेरा क्या फायदा?
8: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
7: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
8: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
0: 0542

0: 02-2-7-6-5-8
1: 05-4-2-2-2-7-6-5-8
2: लो अभी फोन लगाता हूँ
1: 05-4-2-2-2-7-6-5-8
0: दोस्तों अब समय हो गया है कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर बढ़ने का, जहां हम सीखते हैं कुछ नए और रोचक शब्द।
3: तो आज का हिंदी शब्द है अभिप्राय, जिसका अर्थ होता है किसी बात का आशय, उद्देश्य या फिर भाव। इसके कुछ पर्यायवाची शब्द हैं जैसे आशय, उद्देश्य या फिर तात्पर्य। और अगर हम इसका वाक्य प्रयोग करें तो कह सकते हैं कि इस कहानी का अभिप्राय हमें सत्य और ईमानदारी का महत्व समझाना है।
0: बहुत सुंदर शब्द बताया दिव्या तुमने। अब बढ़ते हैं आज के इंग्लिश वर्ड की ओर, और आज का इंग्लिश वर्ड है डिराइड, DERIDE। डिराइड का अर्थ होता है किसी का मजाक उड़ाना और उपहास करना, और इसके सिनोनिम्स है मोक, रेडिक्यूल और स्कोफ एट। इसे एक सेंटेंस में समझे तो हम कह सकते हैं वी शुड नेवर डिराइड अदर्स फॉर देयर मिस्टेक्स।
3: तो दोस्तों अब बारी है आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के जानने की, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कल के प्रश्न का सही जवाब। हमारा कल का प्रश्न आपसे ये था कि इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे किस दिन मनाया जाता है, और इसका सही उत्तर है 3 जुलाई।
0: और सही जवाब देने वाले हमारे साथियों के नाम हैं चंदा चंदौली, प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश, ग्राम जसवाड़े जिला खंडवा मध्य प्रदेश से, दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से, ग्राम खेंगाव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका वंश, निकेश, धर्मेंद्र मेधा, नंदनी, हर्षित और ममताबाई वर्मा, रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, नीरज शिवम, धीरज चिंता वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा, नेपा नगर मध्य प्रदेश से प्रभुदयाल शिवदे, शिवा बसंतीबाई और गणेश शिवदे, संगीत की नगरी खंडवा से श्यामाबाई रायकवाड़।
3: आप सभी विजेताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इसी के साथ जानते हैं हमारा आज का प्रश्न, जो ये है कि पोषण अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। हमारा प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, पोषण अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी।
0: तो दोस्तों पता है ना कि सही जवाब आपको कहाँ भेजना है। जी हाँ, आप अपना जवाब हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल youth AIR पर या हमारा ईमेल आईडी youth AIR VNS@gmail.com पर भेज सकते हैं।
3: तो चलिए आपको बताते हैं इतिहास में आज के दिन क्या कुछ खास हुआ था। 1957 को भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग शेट्टी का जन्म हुआ था।
0: इसी के साथ 2005 में ऑस्ट्रेलिया में डॉल्फिन की एक नई प्रजाति स्नब फिन की खोज की गई थी।
3: और तो चलिए अब आपको बताते हैं रोजगार सूचना के बारे में, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आई है, जिसने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ की परीक्षा 2026 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये भर्ती 1500 पदों के लिए है, और इसके लिए आवेदन 18 जून से ही शुरू हो चुके हैं, और आप 8 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आयु सीमा 21 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में है।
0: और बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री पर उत्तीर्ण होने आवश्यक है, और अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर विजिट कर सकते हैं।
3: तो दोस्तों क्या आपको पोषण अभियान के बारे में पता है? ये अभियान भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसकी शुरुआत देश के लोगों विशेषकर महिलाओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए की गई थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कुपोषण को कम करना, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देना, और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सही पोषण के प्रति जागरूक कराना है।
0: और इन्हीं बातों के साथ अब हमारे जाने का वक्त आ गया है। जाते जाते आपसे बस इतना कहेंगे, खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, और ऐसे ही रोज युवाणी सुनते रहिए। और अब तक मैं थी आपके साथ श्रुति,
3: और मैं दिव्या। अब हमें दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप गोरखपुर केंद्र से भोजपुरी में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ हम वैष्णवी त्रिपाठी। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सोमवार 6 जुलाई के अपने सदस्यन के बैठकी बुलौले है, जिमे ट्रस्ट के ओर से मिलल दान के गिनती के जांच कई रहल टीम SIT के निष्कर्षन के सतही कई गो महत्वपूर्ण प्रशासनिक अब वित्तीय मामलन पर विचार विमर्श कैल गए। 28 जून के जारी एगो आधिकारिक नोटिस के मुताबिक ट्रस्ट के अध्यक्ष के मंजूरी से कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी की ओर से बैठकी बुलावल गई है। बैठकी मणिराम दास छावनी अयोध्या धाम में आयोजित कई जाये। बैठकी के कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के ओर से प्रस्तुत त्याग पत्र पर विचार कैल शामिल बा। सदस्य के ट्रस्ट के दान पेटीएम के जरिए से मिलल दान के गिनती के संबंध में SIT के आखिरी रिपोर्टों के बारे में जानकारी दी हल जाये। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद सार्वजनिक महत्व के भूमि से जुड़ल मामला के जल्दी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण बदे बढ़न फैसला कैले हैं। अब आरक्षित श्रेणी के भूमि, शासकीय भूमि, ग्राम सभा, नजूल निष्क्रांत संपत्ति और शत्रु संपत्ति से जुड़ल सज्जो बाल की सुनवाई 3 सदस्यीय विशेष पीठ की ओर से कल जायी। राजस्व परिषद के अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल बतौलिन की व्यवस्था जुड़ते लागू कर दी गई है। एक तहत लखनऊ और प्रयागराज के राजस्व परिषद न्यायालय में इस श्रेणी के सज्जो लंबित और नया वाद अब खास तौर से गठित 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष प्रस्तुत कर गयी है। ए विशेष पीठ की ओर से हर बुध के नियमित रूप से ए मामलन के सुनवाई कई जाये। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज उत्तर प्रदेश के अपने 2 दिन के दौरा पर लखनऊ पहुंचले। लखनऊ पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान, प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ ही कई गो मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी लोग उनका स्वागत कर लें। राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ ही लखनऊ में रोड शो कर लें। इस दौरा के दौरान वहां के पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी लोग इनके साथ कई गो संगठनात्मक बैठकी कर भी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET के तीसरका और आखिरी दिन के परीक्षा आज शांति के साथ पूरा हो गई। आखिरी दिन ने खाली एक पाली में परीक्षा के आयोजन कर गये। एगो रिपोर्ट।
1: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित 3 दिवसीय UPTET परीक्षा को पारदर्शी और सुचितापूर्ण तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। परीक्षा के दौरान आयोग की ओर से इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की AI कैमरों से निगरानी सुनिश्चित की गई। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने कहा है कि UPTET परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। किसी भी अग्रिम सूचना के लिए आयोग की अधिकृत साइट पर नजर बनाए रखें। समाचार कक्ष से रितेश।
0: प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल EV चार्जिंग के बढ़ावा देवे खातिर सोलर आर्स में 20% टैरिफ छूट की व्यवस्था लागू की गई है। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के पर्यावरण संरक्षण के दिशा में खास कदम बतावत कहले कि इसे स्वच्छ आहरित ऊर्जा के उपयोग के प्रोत्साहन मिली। टैरिफ में ई छूट सवेरे 9 बजे से संध्या 4 बजे ले मिली। प्रदेश सरकार एक जनपद एक व्यंजन योजना के अंतर्गत लौंगलता के वाराणसी जिला खातिर चुन ले हवे। ए व्यंजन के भौगोलिक पहचान GI टैग ओ हासिल बा। वाराणसी के उपायुक्त उद्योग अभिषेक प्रियदर्शी बतौले कि योजना में शामिल भैले से बनारसी लौंगलता के कारोबार से जुड़ल लोगों के प्रोत्साहन मिले।
2: सरकार ने एक जनपद एक व्यंजन के रूप में बनारसी लौंगलता को जो कि 2025 में DI टैग है सम्मिलित किया है। इससे यहाँ के जितने भी लोग जो बनारसी लौंगलता बनाते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार योजनाएं ला रही है। उस योजना में पहला है उनको ऋण दिया जाएगा जिसमें उनको 25% की छूट मिलेगी सरकार के द्वारा।
0: सोशल मीडिया पर ई दावा कई जा रहा है कि 20% इथेनॉल मिलल ईंधन से गाड़ियन के माइलेज कम हो जाला, जौन की गलत अभ्रामक बा। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया बढ़न पैमाना पर परीक्षण कैलस। ए परीक्षण में गाड़ियन के ईंधन दक्षता पर कौनो खास असर नहीं देखल गई। राज्य के मध्य पश्चिमी इलाकन में कुछ जिलन में आज मानसूनी बरखा भई। वहीं गोरखपुर के साथ ही पूर्वी जिलन में उमस भरल गर्मी पड़ल।

हम आकाशवाणी की वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण, आइए आपको बता दें आज के शेष और कल यानी 5 जुलाई सन 2026 दिन रविवार को प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। पहले आज के शेष कार्यक्रम।

संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम सुनिएगा रात 10 बजे से, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। गैर फिल्मी गीत एवं गजलों की महफिल सजेगी कार्यक्रम अंजुमन में रात 9:30 पर। रात 8 बजे सुगम संगीत के कलाकार होंगे मनहर उदास। शाम 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर शिवेंद्र प्रताप सिंह की वार्ता स्वामी विवेकानंद का वैश्विक राष्ट्रवाद वसुधैव कुटुम्बकम। जुलाई माह में किए जाने वाले सामयिक कृषि कार्य, इस विषय पर डॉक्टर प्रभाष चंद्र सिंह से रामकृष्ण मिश्र की बातचीत सुनिएगा कृषिगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर। और इसी कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं वीरेंद्र कुमार चौबे का गाया लोकगीत। फिल्म संगीत हम लेकर आएंगे अब से थोड़ी ही देर बाद, यानी शाम 6:10 पर। शाम 7:45 पर कार्यक्रम रसरंग में, और रात 8:15 पर कार्यक्रम रसमाधुरी में। तो ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले फाइनल मैच के ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण सुनिएगा शाम 7:30 पर, जिसे हम दिल्ली केंद्र से संप्रसारित करेंगे। उर्दू कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा 9:30 पर। इस मौसम के आहार विहार, इस विषय पर डॉक्टर बी राम से सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत सुनिएगा कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर। और इसी कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं छाया मिश्रा का गाया लोकगीत। इन्हीं का गाया लोकगीत 9:50 पर भी होगा। युवा दोस्तों की युवाणी सजेगी शाम 5:15 पर, जिसमें होगी आज की बात, युवाणी गांव से, यूथ डायरी, विश्व घटना चक्र, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। बाल गोपाल सुनिएगा शाम 5 बजे से। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग सुनिएगा दिन 1:35 पर। पत्र के लिए धन्यवाद, आपका ये पसंदीदा कार्यक्रम होगा दिन 1:15 पर, और आपके पत्रों के साथ होंगे अरुण पांडे और सना सलीम। हेलो फोन इन फरमाइश सुनिएगा दिन 12 बजे से, आपके फरमाइशों के साथ स्टूडियो में होंगे अरुण पांडे। आरोग्यम स्वास्थ्य संबंधी ये फोन इन कार्यक्रम सुनिएगा दिन 11:30 पर, विषय होगा गर्भाशय में सिस्ट की समस्या और इलाज, विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर सुनीता सुमन। दिन 11 बजे सुनिएगा कार्यक्रम बाल संग। सामुदायिक गान शिक्षा पाठ उड़िया सुनिएगा 10:10 से। मधुरिमा सुनिएगा 8:45 पर, और गुड मॉर्निंग बनारस 7 बजे से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 7:31 पर सुनिएगा पंडित छल्लूलाल मिश्र का गायन। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुनिएगा 6:40 पर। डायरिया कारण लक्षण और उपचार, इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर

0: विवेक सिंह स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुबह 6:35 पर। विचार बिंदु सुनिएगा सुबह 6:30 पर। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना होगा सुबह 6:10 पर। सामयिक कृषिकार इस विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। कार्यक्रम खेती की बातें में सुबह 6:05 पर। तो ये थी जानकारी आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। आपकी सेवा में है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। आइए सुने फिल्म संगीत, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: ढलती शाम की साय में आप हैं आकाशवाणी वाराणसी के संग। फिल्म संगीत कार्यक्रम की ये पहली पेशकश। फिल्म का नाम मन की आंखें।

लता मंगेशकर की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल आप सुन रहे थे। संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म थी मेरे हमदम मेरे दोस्त। और इस गीत से पहले आप सुन रहे थे मन की आंखें फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत हम फिर लेकर आएंगे शाम 7 बजे, शाम 7:45 पर कार्यक्रम रसरंग में और रात 8:15 पर कार्यक्रम रसमाधुरी में। तो सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम रात 11:10 तक। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6:20 होने वाले हैं। आइए आपको लिए

0: चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र जहां से आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: यम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थाने एकदशांशोत्तर शून्य पंच लक्ष कोटि रूप्यतोप्यधिकानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्रालयेन विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियमान्तर्गतं पाकिस्ताने स्थिताः त्रयोविंशति जनाः आतंकवादित्वेन उद्घोषिताः। व्यापकरूपेण प्रवृत्तं चलच्चित्रवञ्चनामाधृत्य भारतसर्वकारेण टेलीग्राम संस्थायाः कृते आधिकारिकी सूचना प्रसारिता। भारत इज़राइल देशयोः मध्ये संजातः द्विपक्षीय निवेश सन्धिः अद्यारभ्य आधिकारिकरूपेण प्रवृत्तो जातः। भारतर्तु विज्ञान विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्दिवसेषु मध्यभागे गुजरात राज्यस्य कतिपयेषु अन्यभागेषु हरियाणा पंजाब राजस्थान प्रान्तानां शिष्टेषु क्षेत्रेषु प्रावृतस्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये द्वितीया टी ट्वेंटी अन्ताराष्ट्रिय क्रीडा अद्य मैनचेस्टर नगरे क्रीडिष्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थाने एकदशांशोत्तर शून्य पंच लक्ष कोटि रूप्यतोप्यधिकानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। अनेन राज्ये आधारभूत संरचनायां ऊर्जायां परिवहने उद्यम सृजने च तीव्रता आयास्यति। स्वस्य यात्रायां प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्य उद्घाटनं कृतम्।
2: आज राजस्थान में विकास के कई और भी कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आज ही जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थानी राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन व्यापार और रोजगार को नई गति देगा।
1: तदनन्तरं सः बालोतरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रान्तरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासः अपि आभासी माध्यमेन कृतः। अस्मिन् अवसरे जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण एकविंशतितमायाः शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः। पूर्वं भारतं पञ्चविंशतिः षड्विंशति देशेभ्यः ऊर्जा आयातं करोति स्म, इदानीं तत् चत्वारिंशत् देशेषु विस्तारितम्। सः सबलं प्रावोचत् यत् वैश्विकोत्पाते अपि सर्वकारेण वातिन्धनस्य मूल्यं द्विसहस्र रूप्यकाणां स्थाने केवलं पञ्चाशदधिक नवशतं रूप्यकेषु नियन्त्रितम्। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया युक्रेन संघर्षैः समुत्पन्ने वैश्विक उर्वरक संकटे अपि यूरिया मूल्यं त्रिसहस्र रूप्यकाणां स्थाने कृषकाणां कृते त्रिशतं रूप्यकेषु एव सुरक्षितम्। अनेनैव सह जोधपुरतः आरब्धया उड़ान योजनया लघुनगराणां सुदूर क्षेत्राणां च कृते वैमानिक संपर्कः अधिकः सुदृढः भविष्यति।
2: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु च नियुक्तानां चतुःपञ्चाशत् सहस्र युवकानां कृते नियुक्तिपत्राणि अपि प्रधानमन्त्रिणा वितरितानि। केन्द्रीय गृहमन्त्रालयेन विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियमान्तर्गतं पाकिस्ताने स्थिताः त्रयोविंशति जनाः आतंकवादिनः।

0: पंचो राम राम।
1: राम। बिरजू भैया,
0: हाँ सुवर भैया,
1: अरे क्या हाल अपने? किसानी को बिया या कुछ फरहर हो तक ना?
0: देखा भी आप तो बिया एकदम चरम सीमा पर तैयार हो गई ले हो।
1: अच्छा,
0: आ देखा कुछ किसान भैया अपने ना पंप सेट वगैरह से थोड़ा बहुत शुरुआत कह दिले हो रोपाई करे। हाँ
1: भैया मगरू भैया तो संडा वाला रुपाई कर दे लो
0: हाँ
1: है। और ये चतुर किसान रही तो थोड़ा सा आ गए तक काम शुरू कर दिए,
0: भैया देखा जे खाल खाल ताल जो उन खेत होकर बदे संडा लगाओ बड़ा जरूरी
1: हाँ
0: है।
1: ना। और दूसरा बात भैया, देखा थोड़ा सा अभी धूप पानी पानी तो बरसात कम है होता, अभी पानी और चाहता दो चार लहदर।
0: देखा भैया
1: हाँ
0: एक दिन दो ऐसा ही दया दृष्टि देखा देना तो एकदम कितना बढ़िया मौसम हो गया ठंडा एकदम।
1: एकदम, देखा भगवान दया दृष्टि हमेशा दिखावन, किसानन के हृदय थोड़ा सा कठोर होबे कराला, हर दुख सुख झेल लेवा ना। लेकिन सबसे बड़ी बात आज हमारे सारे सामने समस्या ही है बिरजू भैया, कि जो प्रदूषण में सबसे बड़ा जो पॉलिथीन का प्रदूषण है, जो न कभी गले न सड़े न मरे न मोटाए है कि नहीं, तो एकर एक बहुत बड़ा समस्या तेरे सामने है।
0: देखा भैया कह जाला कि पॉलिथीन प्रयोग जीवन में बहुत हानिकारक है। आ हम तो कहब कि देखा खेती से पहले आदमी घूर उर जौन फेंका जाला तो
1: हाँ
0: कुछ घूर में आंधी तूफान में उड़ के जौन पॉलिथीन आ गिल है
1: फंस जाला जो
0: ओके
1: मरो।
0: भरसक ओके बीन के आ जहाँ कूड़ादान है ओके डाला ओके फूका भी मत। काहे से कि जब फूकबा ना तो ओकर धुआं भी समझला
1: और
0: कि आग
1: विषैली को धुआं
0: हाँ
1: वाला।
0: ऑक्सीजन के रूप में जाई। तो विज्ञानी भैया बताओ लोग कि कैंसर का भी खतरा होकर
1: अरे
0: डर
1: भाई
0: रहा
1: तरह
0: ला।
1: तरह के बेरामी, दूसर बार जानत हुआ लोग घर से निकले तरकारी लो बदे हो आम लो बदे, तो चांद के बड़ी शौकीन में ना झोरा लिए ना कौन जरे कोनो, और का करिया देदा 1 किलो आम देदा कौन जे तरकारी और वही पॉलिथीन में। अरे सोचा ये भैया, पहली बात जब बेचत था ओह समझदार बना था कि भैया कहीं कर थो ऐसा, घरे से निकला था कपड़ा के झोला लेकर के है, और मैं तरकारी विधिवत भर ला 1 किलो 2 किलो जो 4-5 किलो भरी तब ना टूटी।
0: मतलब तुहरे कह के मतलब कि सूती कपड़ा का चाहे बैग जौन बा
1: हाँ,
0: ओकर प्रयोग करा।
1: और ये आदत हो एक चाहिए बिरजू
0: सबके
1: भैया
0: भैया सबके।
1: कि जब भी घरे कोई सामान खरीदे निकलना, चाहे तरकारी हो चाहे राशन हो चाहे दाल हो कुछ भी हो, गृहस्थी में जैसे नाना प्रकार का जरूरत पड़ा तो अपन झोला लेके निकल रहे, तो ये जो पॉलिथीन की बात आई जरूरत न पड़ी
0: अरे सुमर भैया
1: भैया।
0: देखा कहल गल है ना कि विज्ञानी भैया लोग बताओ लोग जौन पॉलिथीन खेत में बा जोताई में टुकड़ा टुकड़ा जौन हो जाला तो भाई देखा जौन बरखा का पानी बा हमार धरती जल जल संरक्षण मतलब जौन अवशोषित जल होला तो उनमें जौन टुकड़ा का अरग जाला ना वो भी समझला कि धरती समन पानी पिए थे जा
1: हानिकारक
0: आप फसल जौन पैदा होते वो भाई अनाज के रूप में शरीर में जाता है
1: बिल्कुल सही
0: तो
1: कहा भैया,
0: कुल नुकसान भैया
1: ये तो
0: करी।
1: बहुत सारगर्भित बात बोल रहा है बिरजू भैया, कि जन टुकड़ा होगा पहली बात तो पॉलिथीन सड़बे न करी,
0: कभी
1: एक
0: ना
1: आख हजार जमीन बरस जमीन तब बोनो वैसे ही
0: भाई
1: दस के तरह से।
0: टुकड़ा हो कि थोड़ा थोड़ा
1: हाँ
0: तो ओकर अरग जाला धरती में।
1: अच्छा, अरग जाई तो पानी में रिस रिस की जाई, पानी के स्टेटा में जब पहुंची तो वही से फसल भी आई हमानो पी ले जा।
0: भाई देखा हमन धरती से ने पानी बोरिंग बात पिए थे जा
1: हाँ कुआं
0: आना
1: बाग
0: आना
1: मिल।
0: अच्छा
1: हाँ
0: फसल के रूप में अनाज के रूप में भोजन करते जा तो समझ में ना आवला लेकिन थोड़ा थोड़ा ओकर अंश जाला।
1: दूरगामी परिणाम होला, तो यही से देखा हमन के सतर्क रहना चाहिए अपने स्वास्थ्य बदे, बाल गोपाल के लिए, अपने समाज बदे, पंचन बदे, अपने गाय गोरु बदे, पशुअन बदे।
0: देखा भैया
1: हाँ
0: अब पशुओं के बात कैला है तो
1: हाँ
0: देखा
1: हाँ
0: कितना भैया लोग हुआ पॉलिथीन फेंक दिए कूड़ा में
1: अरे
0: आ वो
1: दिन के
0: लाल
1: कहा जला भैया,
0: वो
1: सुन ले ली तार बात।
0: फल फूल के खाली अथवा में नशा
1: हाँ
0: में
1: वो
0: आई
1: पंथी को खा जात
0: गाय
1: हुआ।
0: माता हमार बाणी खा ली है। अब समझ
1: ओहो
0: लग कि सीधे
1: लोग
0: मौत के

0: मतलब द्वार में वो एकदम उनके जीवन चल
1: एकदम
0: जाला।
1: घोर अन्याय भैया जान लीजिएगा। काहे से कि अपनी गौ माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दो, कि कभी पॉलिथीन में कोनो तरकारी के छिलका फल फूल ऐसे मत जाके लाले, तो अनबोलता जानवर हूँ, मानोगे नहीं। तो ये तो बहुत बढ़िया बात बतौला है पंचन के अपने, कि पॉलिथीन का प्रयोग तो ऐसे बहुत हानिकारक है और अनबोलता जानवर के आगे तो रखा ही करना
0: आ
1: चाहिए।
0: देखा भैया, ये तो ना बात भैया, यहाँ ये है ना पॉलीथीन के मतलब नुकसान मतलब
1: हाँ
0: खत्म
1: हाँ
0: खत्म होता। देखें पॉलीथीन अगर आधी पादी में नाली में और नहर में पड़ गल तो
1: जाम हो
0: वो
1: जाए,
0: भी जाम हो जी नाली तोहार,
1: कुलावा भी
0: प्रदूषण
1: जाम होला।
0: प्रदूषण भी बढ़ी। आ समझला वातावरण जब प्रदूषित हो जी तो हमन जौन ऑक्सीजन लेवल जी वो समझला कि
1: ऑक्सीजन का मात्रा घट जाए।
0: प्रदूषित भाई ऑक्सीजन मिली तो जीवन हमन के दुबर हो जाए जियल। तो ऐसे हमन के भैया, अच्छा ये हमन के युद्ध स्तर पर अभियान चला के आ सबके ये समझला कि अभियान चला के बतावे के है कि भैया हो पॉलीथीन पे एकदम रोक लगवा आ सूती झोला का प्रयोग करा।
1: एकदम घरे से निकल, देखा आदत में से बतौली ना कि आई आदत हो चुकी कि घरे निकलना, तरकारी ले बजे चाहे कोनो सामान ले बजे झोरा हाथ में हो। ये तो बात अपन हो गल बिरजू भैया। आए अब पंच लोग आज पॉलिथीन के प्रयोग हानिकारक है, ओकरे बाद हम पंचदिन अच्छा बातचीत हुई, लेकिन कि परेशानी सुबह हो जाए।
0: संदेश ना देखा भैया, आज संदेश ना बहो भैया। ऐसा ना कि वो अब देखा ये वन महोत्सव सप्ताह चलत है, तो वन महोत्सव सप्ताह चलत है भैया, तो हमन के पर्यावरण के बचावे बते आ सबके समय ला कि भैया पेड़ लगावल बड़ा जरूरी है।
1: ये भैया कहल गल कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान है। वृक्ष कितना बड़ा महत्ता है, कि महोत्सव कौन मनावल कैसे जाला, ये बते कि एक यादगार में लोग वृक्ष के प्रति प्यार करें, उनके नुकसान न हो दे, क्षति न हो दे, और उनके लगावें उनके वृद्धि करें। तो द्वारे पर लगावा, मुहाड़े पर लगावा, बगीचा में लगावा, बागी में लगावा, है कि नहीं।
0: कहल गल भैया कि देखा जौन वन है ना, ये
1: हाँ
0: बन ना रही तो धरती पे जीवन रहे, कहे से कि बन रही तो यही से जलवायु बनै ले, मानसून बनै ले। आ समय से समाला मानसून आवल भैया, बारिश होले, आई जमाला कि जल ही जीवन है।
1: ये बात सही कहला। आप पंचों के कुछ पंचों का सुनाती बतावा पहले।
0: अब देखा भैया, आज के बातचीत में जुलाई माह में किए जाने वाले सामयिक कृषि कार्य ये विषय पर डॉक्टर सुभा प्रभास चंद्र सिंह से रामकृष्ण भैया बतेवले हुए, आ पंच भैया लोग सुना आ हमनो सुनल जाए।
1: सुना था सुना था।
2: डॉक्टर प्रभास चंद्र सिंह जी, आप प्रक्षेत्र प्रबंधक हुआ कृषि विज्ञान केंद्र बेजवा भदोही में। आज आपसे ये जानल चाहब कि जो किसान भाई जुलाई में कृषि कार्य करल चाहत हैं तो वो समय सामयिक काम कौन करें जैसे जो है उनके खेती किसानी में बढ़िया रहे।
3: जी सभी को नमस्कार। ये जुलाई माह तो शुरुआत हो गया है,
2: जी
3: लेकिन जो हमारे सामयिक कार्य शुरू हो जाने चाहिए थे वो वर्षा की वजह से अभी विलंब हो रहा है। तो इसके लिए अभी किसान भाई के पास समय है, मेढ़बंदी का कार्य कर लें और खेत की गहरी जुताई कल्टीवेटर के द्वारा करके छोड़ दें, और जो भी बारिश का जल होगा वो आपके खेत में संचित होगा।
1: अच्छा
3: साथ ही रोपाई से पहले जो खेत में खाद डालनी है कंपोस्ट की, तो कंपोस्ट की खाद में आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग जरूर कर लें और
1: अच्छा
3: उसको अभी से ढक करके छाया में रख दें जिससे कि वो उसमें अपना संख्या बढ़ा लें। ये सूक्ष्म जीव जब जाते हैं तो धान के जो जड़ें हैं उनके में और सूक्ष्म जीवों को सहयोग प्रदान करते हैं जिससे कि हमारी फसल अच्छी होती है। साथ ही आपको एक अजोला नामक शैवाल होता है जिसे कि
1: जी
3: आपको अपने धान के खेत में प्रयोग करना चाहिए। ये शैवाल खेत में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं।
2: तो ये सवाल के इस्तेमाल कौनी ढंग से करें।
3: ये कुछ नहीं करना है, जो रुपाई हमारे हो जाती है उसके बाद जो जल भराव खेत में रहता है लगभग 2 से 3 इंची, उस
2: जी
3: समय हमें ये अजोला लेकर के वो
2: पानी
3: खेत
2: में,
3: में पानी में डाल देना है।
2: अच्छा।
3: जी साधारण तरीके से, और कुछ नहीं
2: तो जैसे
3: करना।
2: सवाल तो पानी में रहेला वही में
3: जी
2: बढ़ेला, तो
3: जी
2: ऐसे ही पानी में उबड़ जाए।
3: हाँ, वो अपनी संख्या बढ़ाते चला
2: अच्छा।
3: जाएगा, तो इससे एक तरह लेयर भी बन जाएगी जिससे हमारा नमी भी सुरक्षित रहेगा और इससे जो नाइट्रोजन मिलेगा हमें नाइट्रोजन का प्रयोग कम करना पड़ेगा।
2: अच्छा, तो माने कि एकर इस्तेमाल अगर हो तो
3: जी
2: खेत के अंदर नमी बरकरार रही।
3: नमी भी ये बरकरार रखेगा, वाष्पीकरण कम।

0: हुआ,
1: हाँ
0: और दूसरा कि हमें उससे
1: नाइट्रोजन मिल
0: नाइट्रोजन
1: जाएगी,
0: मिलेगा।
1: तो मान नाइट्रोजन कम डाले पड़े।
0: इसके और भी प्रयोग हैं कि अगर ये इसकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, एक लेयर बढ़िया से बन गई, तो आप इसे निकाल के चारे के साथ धो करके पशुओं को भी खिला सकते हैं।
1: अच्छा।
0: जी, इसमें प्रोटीन का अच्छा मात्रा पाया जाता है, तो ये पशु आहार में भी मिला सकते हैं।
1: अच्छा। तो माने जुलाई के समय में किसान इस तरह का काम कर सकत हुआ। और दूसर चीज ये हो, जिसे जोन किसान कुछ तरकारी वगैरह लगवले हुआ,
0: जी
1: तो
0: जी
1: ऊ ए घड़ी ऊपर तो
0: इसके
1: एक
0: लिए
1: तरह से
0: तो
1: ध्यान
0: सबसे
1: दे।
0: अच्छी बात आपने पूछी है कि सब्जी हमारी जल को बहुत कम, उसके प्रति सहनशील है,
1: अच्छा।
0: कि अगर जैसे ही जल जमा हुआ फसलें गलने लगती हैं, तो इसके लिए जल निकासी की व्यवस्था किसान भाई बना लें, जिससे कि अगर

0: हैं, तो इसके लिए जल निकासी की व्यवस्था किसान भाई बना लें, जिससे कि अगर हैवी रेन, अभी क्या हो गया है थोड़ा सा जिसको क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं, तो ऐसे समय में क्या हो रहा है, कम समय में बहुत तेजी से बारिश आ जाती है, उसके लिए गहरी नाली बना करके जल निकासी व्यवस्था रखें। और यदि अभी नर्सरी नहीं डाला है सब्जियों की, जैसे बैंगन, मिर्चा, अगेती, फूलगोभी, तो उसकी तैयारी कर लें, और उसको ढकने के लिए ऐसे समय के लिए जब बहुत तेजी के साथ हवा और पानी आता है, उस समय ढकने के लिए पलवार जो है उसकी व्यवस्था कर लें, पॉलीथीन का, और उससे लो टनल जैसा कुछ बना लें कि उसमें हमारे पौधे सुरक्षित रहें। तो एक ये सब्जियों की नर्सरी की तैयारी कर लें, अगर लगी है तो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था कर लें, जल निकासी की व्यवस्था कर लें, ये
1: अच्छा।
0: सब्जियों से संबंधित कार्य हो गए।
1: और जैसे अगर धान का हुआ तो मक्का करें?
0: धान की तो आप रुपाई करके, हमने बताया ही आपको कि रुपाई से पहले खाद जो कंपोस्ट का प्रयोग करना है उसमें आप ट्राइकोडर्मा लेकर के,
1: मैंने कुछ किसान भाई लोग तो जैसे नर्सरी भी देर में बारिश के इंतजार में रह गए हुए हैं, तो देर में
0: जी
1: अब
0: जी
1: शुरू करिए हैं,
0: हाँ, तो
1: तो वो
0: अगर
1: का
0: नर्सरी
1: ध्यान दें?
0: डाल रहे हैं तो वो भी बीज शोधन करके आप नर्सरी डाल लें, और डालने के बाद इसमें अब आपको ध्यान रखना कि हमें समय से गेहूं भी बोना है, तो उससे लिए हमें कम अवधि वाले लगभग 90 से 100 दिन की अगर धान की कोई प्रजाति मिल जाती है बाजार से,
1: अच्छा।
0: तो उसको लेकर के प्रयोग करना चाहिए।
1: माने कि पहले ही से ही समझ लेवे के हो कि भाई समय तो हमार
0: जी
1: बीत गया, तो
0: जी
1: कम समय वाली कोनो ले तो
0: फसल ले
1: वही
0: लें
1: बराबर समय पे
0: जी।
1: तैयार हो जाए फसल।
0: अभी जैसे दलहनी फसल का समय चल रहा है,
1: जी
0: दलहनी फसल में आप अरहर, मूंग, उड़द की भी खेती ले सकते हैं जो कि कम समय में तैयार होती है।
1: तो और एकरे साथे का कर सकत हूँ किसान भाई?
0: देखिए किसान भाई जो कि ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, तो वहां पे सभी के घरों में नीम के पेड़ है।
1: जी
0: अब बात आती है जो सब्जियां लगती हैं या जो फसलें हैं, तो सभी में कीट का प्रभाव होता है, कवक का
1: प्रभाव
0: प्रभाव
1: पड़
0: आता
1: जाता
0: है,
1: है।
0: तो इससे बचने के लिए हमें नीम का तेल का प्रयोग करना होता है जो कि बाजार में हमें उच्च दाम पर मिलता है। इसके लिए क्या करना है, किसान भाई अपने ही खेत पेड़ का जो भी नीम कौड़ी गिरता है उसको अभी निकाल करके उसको सुखा करके रख लें, और ये वर्ष भर प्रयोग हो सकता है, इसको कहीं सुरक्षित जगह रख दें सुखा करके, तो जब भी जरूरत हो कूट करके अथवा पिराई करा के तेल और खली दोनों का प्रयोग अपने खेत में कर सकते हैं।
1: माने ये घड़ी जैसे निमकौड़ी गिरत बा
0: जी
1: तैयार होके, तो
0: जी
1: निमकौड़ी बटोर ले, आ साथ में अगर पत्ते भी हो तो पत्तियों का
0: पता ही
1: इस्तेमाल करें।
0: आप जो अपना घूर बनाते हैं जहाँ पे कंपोस्ट बनाते हैं वहां पे डाल दें, और ये जो है नीमगिरी का अपना सुखा करके अपने पास रख लें।
1: और तेल का इस्तेमाल करें
0: जी
1: तो कीटनाशक में ज्यादा फायदा
0: कीटनाशक के
1: करता?
0: लिए और दीमक के लिए,
1: अच्छा।
0: अगर खली का प्रयोग करते हैं तो वहां दीमक का प्रयोग प्रभाव कम हो जाता है, तथा अगर तेल का जब भी कीट लगते हैं तो उसमें तेल का छिड़काव करते हैं 5 ml प्रति लीटर पानी की दर से।
1: और धान के लिए ही विशेष रूप से बताऊं कि किसान भाई कौन तरीके से जो ना जुलाई के समय में
0: जी
1: धान जेकर रोपाए गलु अगेती में
0: जी
1: तो ऊ का काम करें?
0: अब उनके लिए तो आपको करना है कि समय पे निराई गुड़ाई हो जाए, और यदि ट्रॉप ड्रेसिंग करना है तो उसमें मोनो जिंक का आपको प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि जिंक जो माइक्रो न्यूट्रिएंट का रूप है वो खैरा रोग से आपका बचाव करता है।
1: टॉप ड्रेसिंग माने किसान भाई
0: छिड़काव
1: कितना लंबाई का हो जाए पौधा तक करें?
0: ये लगभग 20 से 25 दिन बाद जो है पहली ट्रॉप ड्रेसिंग की जाती है। जी
1: और एकरे अलावा और किसान भाई का ये घरी कर सकत हूँ?
0: इसके अलावा आप जो है अपना, यदि आपने ढैंचा लगाया हुआ है हरी खाद, तो हरी खाद की पलटाई आप 45 दिन में करनी होती है, तो उसके लिए आपको रोटावेटर से पलटाई करें, और जब खेत में मिक्स हो जाए फिर तीसरे दिन इसको मिक्स करके खेत में रोटावेटर से, तब आप जो को धान की रोपाई करनी चाहिए।
1: अच्छा। तो माने कि रोपाई से पहले ही पूरा हरी खाद वाला जो व्यवस्था किसान सोचले हों ओके
0: जी
1: कह ले।
0: जी
1: जैसे हरी खाद बदे अगर सोचत हों कि मूंग भी है, उतैला भी है, उर्दी
0: जी
1: भी है, तो
0: जी
1: एकर भी अगर इस्तेमाल के लिए कि दोनों काम हो जाए, कुछ मिल भी जाए दाल
0: जी
1: आप
0: जिन्होंने
1: बाद
0: लगा
1: में?
0: लिया होगा पहले उनकी तो फसल होगी, और नहीं अभी जो फसल है वो पलटाई की तैयार नहीं हो पाएगी।
1: मैंने उम्मा बीज दाल उनके न मिल पाई,
0: जी
1: उनके हरे पलटे के पड़ी।
0: जी
1: तो वो माने का करें? ओके पलट दें कि कुछ जैसे चारा के लिए भी निकाले तो सही रही?
0: चारे के लिए दलहनी फसल का क्या है प्रयोग, कि हमें फली लेना है, साथ में जो उसका पौधे का जो भाग है वो चारे के लिए जाता है, और नाइट्रोजन हमारी जमीन को जाता है, ये तीन
1: अच्छा।
0: चीज है।
1: एम्मा नाइट्रोजन किसे मिला था?
0: ये भी इसमें जो है जड़ें जो है जड़ों में गांठें पाई

0: जाती हैं
1: अच्छा वो
0: जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं
1: राइजोबियम
0: उसमें,
1: वाला।
0: राइजोबियम। जी
1: अच्छा, तो एक तरह से माने अगर किसान भाई अगर उर्दी उतैला भी लगाए हैं मूंग तो वो भी हरी
0: साल भर
1: खाद के रूप में
0: में
1: इस्तेमाल कर।
0: जायद में और खरीफ में जब भी आपको समय मिले तो सोच करके कि हमें खेत को कैसे उच्च गुणवत्ता युक्त, तो अपनी जमीन को बनाना है कि अच्छी गुणवत्ता युक्त हमारे बीज या फसलें पैदा हो सकें, उसके लिए वर्ष में एक बार आपको उस खेत में कम से कम दलहनी फसल एक लेनी चाहिए। मटर ले सकते हैं, अरहर ले सकते हैं, चना है, उड़द है, मूंग है। इससे मैंने बताया कि तीन चीजें आपको प्राप्त होती हैं, दालें मिलती हैं, उसके जो तने से पौधे के भाग से चारे का प्रयोग होता है तथा नाइट्रोजन मिलता है। तो
1: अच्छा।
0: ऐसी तो फसल कोई है ही नहीं है जो तीन तीन चीजें प्रदान कर रही है।
1: तो माने ये लिहाज से ही बढ़िया फसल है।
0: बहुत ही अच्छा। इसके बाद भी आपको इसके दाम बहुत अच्छे मिलते हैं, दाल में आप खड़े प्रयोग कर सकते हैं और दाल बनाकर भी प्रयोग कर सकते हैं और बेच सकते हैं।
1: तो ये लगभग कितना दिन का फसल हो?
0: ये जो उड़द और मूंग है ये 75 से 80 दिन की फसलें हैं, 90 दिन तक जाती हैं मैक्सिमम।
1: अच्छा।
0: जी, 3 महीने में
1: तो
0: आपको तैयार हो जाएंगे
1: तो
0: और इसके बाद हमारा
1: एकर
0: समय
1: लगावे
0: से
1: का समय मुख्य कहा?
0: अभी इस समय चल रहा है।
1: अच्छा,
0: जो
1: माने
0: जायद
1: अभी
0: वाली लगाते हैं फरवरी में लगाते हैं और अभी वाली जुलाई का समय एकदम चल
1: तो
0: रहा
1: कुछ
0: है।
1: अंतर रहता का दोनों में
0: नहीं, वही प्रजातियां रहती हैं थोड़ा सा।
1: स्वाद या
0: जी,
1: उत्पादन में?
0: गर्मी में आपको पानी का ज्यादा खर्चा आएगा क्योंकि हर 10 दिन में, एक हफ्ते में, 1 हफ्ते से 10 दिन में आपको सिंचाई करनी है। जी, और कोई फसलें नहीं होती हैं जायद में तो ज्यादा पशुओं का अटैक भी हो सकता है, तो उससे भी
1: अच्छा।
0: बचने के लिए जो है रोग व्याधि उस समय कीट का प्रभाव ज्यादा होता
1: प्रभाव
0: है।
1: रहा। तो माने कि एक तरह से जो न किसान भाई ये जुलाई के समय में खास
0: जी
1: तौर से कुछ विशेष काम अपन करत रहे
0: जी
1: तो उनके खेती किसानी में जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ हो
0: लाभ हो सकता
1: सका
0: है।
1: था। डॉक्टर प्रभाष चंद सिंह जी, आप अपने बीच में ही ना इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देना, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भैया सुमारू भैया,
3: भैया
2: देखा बातचीत तो हो गई हो, देखा एक खरीफ के फसल के बारे में बड़ा बढ़िया से बतियोला है डॉक्टर सुभाष प्रभाष चंद्र सिंह और रामकृष्ण भैया, पंच लोग सुन रहा हैं। और देखा ये भैया अपने पंचायती में न जबले मर मनसा ना होला न सुमारू भैया, तबले समझला कि जीव गदगद ना होला।
3: ये बात तो सही कहला, लेकिन यो बताता कि जुलाई के महीना कितना महत्वपूर्ण महीना है। आई मर को जैसे सजग हो जाए चाहिए, काहे से कि जायद के सब चीजें बोआई, रहर से लेकर के बजरा तक छिटाई।
2: अब देखा भैया जौन जौन बा ऊंचे खेत जौन बा
3: हाँ
2: ओमे जहाँ पंडगर बा ओके किसान भाई हमरे सजग होके आ रहर आ बाजरा के खेती अपना समय से लोग कह दें, ताकि भाई देखा आगे के खेती आगे आगे
3: पाछे
2: आ
3: खेती
2: पाछे
3: भागे,
2: खेती भागो जोगे।
3: ऐसे ही फायदा हुई ना। श्रीअन्न बजरा के कहल जाला, इसे पानी भी कम चाहिए, कम में पानी में हो भी जाए, मान तो कि नहीं पौष्टिकता बनल है शरीर का किसानी में, बैल गोरू ने सब कर।
2: देखा भैया ये
3: अगर घरे सुना, अगर दाल हो गल है, दाल रोटी मिल गल अगर ढंग से, तो
2: ये भैया
3: क्या आनंद आ जा रहा हो।
2: कहा जाला भैया ना कि अगर बरखा बुने में अस्कीता गीला तरकारी उकारी नहा
3: हाँ,
2: कीने
3: ना गेला
2: गीला
3: बाजारे।
2: दाल घरे बा भैया
3: हाँ,
2: अचार बा आराम से एकदम आनंद से अपन भोजन हो जाई।
3: अरे भैया, तो बात याद करा दला बचपन का हो कि अचार बनल है घरे में, आम का रहे अचार, कटहर का रहे, मान तो नहीं। अच्छा, मरचा का अचार, मरचा कुचनी भी बहुत बढ़िया लगल है,
2: बहुत बहुत।
3: हरियर का मरचवा का मान तो नहीं। अमचूर डाल के कुछ करके
2: अब देखा ना
3: बना
2: भैया 2-3 दिन लगातार झाँफू जब कहा तो असकत ना बरे लेकिन का बाजार जीबा हो, तो ऐसे भैया कहा जाला कि ये दाल दलहन अपन घरे रहला तो आराम से आदमी अपन ओकर समय ला कि भोजन पानी के जुगाड़ हो जाला।
3: हाँ। ये तो बात हो गल जुलाई महीना में कौन कौन कार्य हो चाहे कृषि में, हैं अब जन का तला मन बसाए तो केकर गौनी सुनौत हुआ।
2: देखा भैया वीरेंद्र कुमार चौबे कह ये कहरवा है आप पंच लोग सुना।
3: सुनवाता है

0: कटिया न होई हमसे राखी बनिहार।
1: भैया नैहर के दुलरवी बानी
0: एक घरैती जानला अपने पति से जब ठुनमुन होला हो।
1: अरे
0: ये भी गृहस्थी का एक अलग आनंद।
1: अरे भैया कहा
0: मानो कि नहीं
1: कहल जाला कि पति पत्नी के दोनों समझला कि जीवन साथ साथ चले वाला है। भैया
0: अच्छा ये बताओ कल बिहाने का जानकारी हुई हो?
1: देखा भैया कल बिहाने कार्यक्रम में 6:05 पर खेती के बातें में आ विषय रही सामयिक कृषि कार्य आ जानकारी दी है दिनेश कुमार सिंह।
0: बहुत बढ़िया भैया।
1: हाँ
0: तो जो है सामयिक कृषि कार्य में का क्या करेक चाहिए सब लोग सुने। अब बिहाने जरूर रेडियो खोल लें अपन। है कि नहीं
1: ये सुमारू भैया
0: भैया
1: देखा हो मौसम बदलत है

0: में अपन खास करके अपन स्वास्थ्य के बारे में अपने गोरु चौवा के ध्यान देवल बड़ा जरूरी है।
1: ये भैया ये तो बात सही कह रहा, पहले गोरु चुगा तब बहुत रही स्वस्थ जब पर्यावरण बढ़िया रही। अब पर्यावरण देखा जन बतौला है कि वन महोत्सव चलत है सप्ताह, तो जंगल कहल जाला कि बिना प्राणवायु के जी पैबा।
0: ये भैया देखा, अगर आदमी पेड़ पालो ना लगाई ना तो ये वन का महत्व खत्म हो जाए।
1: अब
0: तो
1: वैज्ञानिक क्या क्या
0: हमार हमार
1: हाँ बोला
0: देखा भैया,
1: बोला
0: हमार भैया देखा, सरकार भी पर बहुत जोर देते कि भैया हो देखा, पेड़ पालो लगावा, आ पेड़ पालो हो तब धरती पर जीवन है।
1: भाई, विज्ञानी लोग कहना कि शुद्ध वातावरण बदे पर्यावरण शुद्ध तब, जब एक तिहाई जंगल रह बोझे। और जंगल का मतलब यह हो कि दुआरे मुहारे जौने देखा जगह खाली है, इमा देखा कि फलदार वृक्ष लगाई।
0: ये भैया देखा, वन का महत्व तो यही है कि आपके वातावरण बदे तो समय ला कि शुद्ध ऑक्सीजन तो ऐसे मिलबे कला। ये देखा हो पशु पक्षी का आश्रय दाता भी है।
1: अरे ई बतावा, आज जंगल जब कटे लगा तो नाम अखबार में पढ़ला कि देखा जंगली जानवर मैदान की तरफ आवत हुए। जब उनकर बसेरा उजाड़ देवा, उनका घर उजाड़ देवा, देखा जब बसेरा का बात कीला है, बड़े बड़े जन पेड़ हो जो पीपर और बरगद तो उनके खोखड़ाई में तरह तरह के जीव जंतु भी रहे ना, अंडा अंडा देवा ना।
0: ये भाई देखा
1: हाँ
0: उनके जीवन से छेड़छाड़ ना कबो कहना आदमी, देखा भैया
1: हाँ
0: आज ये गांव में भेड़िया आ गल। तो भैया अगर जंगल ना रहे तमन के वन्य जीवन कैसे रहे जौन बाण वन्य जीव।
1: भाई उनका आवास उजाड़ देवा तो तू देहाते में नहीं है, मैदान की तरफ आई है। तो यही बदे अधिक से अधिक वृक्ष लगाओ। कोई महोत्सव कहे मनाओ जाला कि आदमी के अंदर एक उत्साह हो जाए कि देखिए सरकार का प्रयास बहुत अधिक है, सरकार का प्रयास अधिक, तनि सा हम प्रयास कर दो जाए तो हमारों को धरा हरा भरा हो जाए।
0: आ देखा ये सुमारू भैया,
1: भैया
0: हम तो कहते हैं कि देखा पेड़ पालो लगौले से आपको वन जौन बा वो तैयार रही। अच्छा ऐसे कुछ छाया भी मिले ले पेड़ पालो से आ कुछ फल भी मिलेला हो,
1: बतावा,
0: तो खाली कहले से थोड़ो भैया कि पेड़ लगवा पेड़ा खा, भाई कर्म करबा तब ना।
1: पेड़ा तो खइबे करवाओ। ये बतावा जी आम लगौलो हुई बगीचा, आज के बगीचा में लगना है आम होई वो तो ही इतना तो कौन जे न्योता पाए कर लिए कभी भैया घर चले के लिए आओ क्या। हाँ एमा
0: एकदम
1: मंगरू
0: सही।
1: भैया बहुत आगे रहना। हाँ उनके यहाँ देखा वो पेड़ तो अच्छा सा लगौलो हुआ।
0: अरे एक दिन झगड़ू भैया के देख ली हो भैया,
1: का
0: आम इकट्ठा खरीदे आम के का भैया, ए घड़ी कुल हितई न तई कुल आए गल ही का घड़ी परानी।
1: भैया पराने श्यामा भैया समधियाने पहुंच गए ना, उनके समधी की अब अच्छा बगीचा है, बगीचा हुआ गई ना ठार से कौन चले पर समधी भाई बतिए ना भी खाना पीना अच्छा भाई चलना होला ना वापस में हमन के उपहार दे हो जाए। 25-30 किलो का कौन चले कार्टून भर दे नाम से।
0: आ एक दिन श्यामा भैया के भी देख ली, कहें कि भैया आप तो सीजन दशहरी के खत्म होला, लंगड़े स्वाद देते खाए में।
1: यही बात कहा जाला कि भाई कब जब पेड़ लगे बात तब स्वाद का आनंद ले मजा आई।
0: आ देखा भैया तनि सा बरखा भल न हो
1: हाँ
0: तो इमें समाला कि आम को स्वाद बढ़ गल है, आ नहीं तो जितनी गर्मी पड़त रहे उमें समाला कि आम का स्वाद न आवत
1: फिर
0: रहा।
1: जबरी लगा था खवा था, अब तो स्वाद भी मिली मिठास भी मिली है। आ चले के बेला होता पंच लोग से आज्ञा मांगा
0: ये भैया देखा
1: भैया
0: बेला तो हो ही गई है तो पंचो
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत, प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुने फिल्म संगीत। सबसे पहले सुनते हैं कुमार सानू, पूर्णिमा और साथियों की आवाजों में ये गीत। गीत और संगीत आनंद राज आनंद का, फिल्म का नाम मासूम।

आनंद राज आनंद के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे आनंद राज आनंद की यह रचना। कुमार सानू पूर्णिमा और साथियों की आवाजें थीं। और ये मासूम फिल्म का गाना था। कार्यक्रम का अगला गाना आपके रेडियो सेट पर, बहुत प्यारा सा गीत, जसपाल सिंह, कल्याणी मित्रा और साथियों की आवाजों में। ये रहा आपके रेडियो सेट पर।

अनु मलिक के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे ये समीर की रचना। पूर्णिमा और सखियों की आवाजें थी, माँ फिल्म का ये गाना था। इस गीत से पहले आप सुन रहे थे राज कमल के संगीत निर्देशन में गौहर कानपुरी की रचना। जसपाल सिंह, कल्याणी मित्रा और साथियों की आवाजें थी, सावन को आने दो फिल्म का गाना था। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। कार्यालय पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना अनुसार रन्नो देवी पत्नी रामजीत यादव निवासनी परागडीह पोस्ट रूपचंदपुर थाना सिंधोरा जिला वाराणसी कहीं गुम हो गई हैं। रन्नो देवी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 54 वर्ष, ऊंचाई 4 फीट 8 इंच, रंग गोरा और चेहरा लंबा है। वह प्रियंका पटेल पुत्री नंदलाल पटेल निवासनी पटेल नगर पोस्ट मुनारी थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी कहीं खो गई हैं। प्रियंका के बारे में जानकारी की बात इस प्रकार हैं। उम्र 26 वर्ष, लंबाई 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा, चेहरा लंबा है। रन्नो देवी और प्रियंका पटेल के बारे में यदि कोई जानकारी हो तो इस पते पर दें। कार्यालय पुलिस अधीक्षक वाराणसी या अपने निकटतम थाने को भी सूचित कर सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:18 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर बाद यानी 7:20 पर आप लखनऊ केंद्र से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया इस वाद्य संगीत के साथ प्रतीक्षा करें।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की अहम बैठक। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 की तीन दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। 88% अभ्यर्थी हुए परीक्षा में शामिल। प्रदेश सरकार ने राजस्व से जुड़े सार्वजनिक भूमि के मामलों के लिए लागू की नई व्यवस्था। लखनऊ और प्रयागराज में गठित

0: तीन सदस्यीय विशेष पीठ करेगी वादों की सुनवाई। और कानपुर तथा टूंडला में भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन आज दो दिवसीय दौरे पर पहली बार लखनऊ पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केन्द्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने लखनऊ एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान भी उपस्थित रहे। इसके बाद श्री नवीन ने एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक रोड शो किया। इस दौरान जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने स्वागत के लिए प्रदेशवासियों और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया।
1: उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। लखनऊ की धरती पे लोगों ने मुझे अभिमान दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी और पूरे लखनऊ के लोगों का अभिनंदन कर धन्यवाद करता हूं।
0: अपने दो दिवसीय लखनऊ दौरे पर श्री नवीन विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासों से 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से सफलतापूर्वक उबरने में कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने हर स्तर पर समय रहते निर्णय लिए, उभरते संकट का सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति तैयार की और देश के संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कूटनीति और रणनीतिक उपायों से देश ने संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। श्री मोदी ने आज राजस्थान में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया।
2: पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, हर देश त्रस्त है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन साथियों, 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं।
0: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। 28 जून 2026 को जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार ये बैठक ट्रस्ट के अध्यक्ष की स्वीकृति से कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी द्वारा बुलाई गई है। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा द्वारा दिए गए त्याग पत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। बैठक में भविष्य में राम मंदिर के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्था पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने आज महोबा में श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले में कहा कि जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
3: राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बना है, वह अच्छी व्यवस्था है। यदि कोई गड़बड़ी की है तो मेरा इतना ही कहना है कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
0: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 की तीन दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। लिखित परीक्षा 2 और 3 जुलाई को दो दो पाली तथा आज एक पाली में समाप्त हुई। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार परीक्षा में 88.77% अभ्यर्थियों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा के दौरान आयोग में स्थापित एआई इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की सघन निगरानी की गई। परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान 44 फर्जी अभ्यर्थी भी पकड़े गए।

0: परीक्षा के सफल संचालन के लिए आयोग ने जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ के प्रति आभार व्यक्त किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज जनभवन में स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन भारत की सनातन चेतना का एक जीवंत प्रकाश स्तंभ है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने सार्वजनिक महत्व की भूमि से जुड़े मामलों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए एक अहम निर्णय लिया है। इसके तहत अब आरक्षित श्रेणी की भूमि, शासकीय भूमि, ग्राम सभा, नजूल, निष्क्रांत संपत्ति तथा शत्रु संपत्ति से संबंधित सभी वादों की सुनवाई 3 सदस्यीय विशेष पीठ द्वारा की जाएगी। ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: राजस्व परिषद के अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार इन मामलों पर विशेष रूप से गठित 3 सदस्यीय पीठ सामूहिक रूप से विचार करेगी। परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि राजस्व परिषद ने लखनऊ और प्रयागराज दोनों न्यायालयों के लिए अलग अलग 3 सदस्यीय विशेष पीठों का गठन किया है। इन विशेष पीठों द्वारा प्रत्येक बुधवार को नियमित रूप से इन मामलों की सुनवाई की जाएगी। वहीं एक अन्य पहल के तहत राजस्व परिषद के न्यायालयों द्वारा किसी वाद में अभिलेख तलब किए जाने पर सामान्यतः मूल अभिलेखों के स्थान पर संबंधित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रमाणित पूर्ण स्कैन प्रति के आधार पर ही न्यायिक कार्यवाही की जाएगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 के दूसरे दिन आज जनभवन लखनऊ में मैंगो बायर सेलर मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सम्मिलित हुए। इस अवसर पर आम निर्यातकों और आम उत्पादकों के मध्य MOU भी हुए। इस अवसर पर उद्यान मंत्री ने कहा कि योगी सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की समृद्धि के लिए हर स्तर पर काम हो रहा है।
2: उद्यान विभाग के माध्यम से हम राज्य के किसानों की समृद्धि का जो सपना देखे हैं वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम साकार कर रहे हैं। दुनिया के बाजारों में हमारी औद्योगिक फसलें आज पहुंच कर रही हैं और जब से हमारे यहाँ जेवर एयरपोर्ट बन के तैयार हो गए हमारे राज्य के आम के किसानों का मनोबल बढ़ेगा, उनकी समृद्धि बढ़ेगी, ऐसा प्रयास हमारी सरकार का होगा।
0: महोत्सव के दूसरे दिन आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विज्ञान विभाग के अधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों और प्रदेश भर से आए प्रगतिशील आम उत्पादक किसानों के बीच एक तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित राज्य के कई जिलों में हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। बीते 24 घंटों में कानपुर और आज सुबह टूंडला में हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की अहम बैठक। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। 88% अभ्यर्थी हुए परीक्षा में शामिल। प्रदेश सरकार ने राजस्व से जुड़े सार्वजनिक भूमि के मामलों के लिए लागू की नई व्यवस्था। लखनऊ और प्रयागराज में गठित 3 दिवसीय विशेष पीठ करेगी वादों की सुनवाई। और कानपुर तथा टूंडला में भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। हिंदी कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर शिवेंद्र प्रताप सिंह की वार्ता, स्वामी विवेकानंद का वैश्विक राष्ट्रवाद वसुधैव कुटुंबकम।
2: नमस्कार। भारत की राष्ट्रीय स्मृति में योद्धा सन्यासी के रूप में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद आध्यात्मवाद से जुड़ा हुआ है, जो भारतीय नवजागरण को उसकी आध्यात्मिक परंपरा से जोड़ता है। आध्यात्मिकता, धर्म, संस्कृति और संस्कार वे तत्व हैं जो स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रचारित मानवतावाद और सार्वभौमिकतावाद पर आधारित राष्ट्रवाद के अवलंबन है। दुनिया में प्रत्येक राष्ट्र और उसकी राष्ट्रीयता जो होती है वो अपने धर्म, संस्कार और आध्यात्मिक बंधन से जुड़ी हुई होती है, और इन सभी का जो समन्वित रूप होता है वही राष्ट्रीयता का मेरुदंड बनता है, और यही भारतीय राष्ट्रवाद का प्राण स्रोत भी है। भारतीय संस्कृति का इतिहास अपने विस्तार और विकास की दृष्टि से ममत्व की भावना पर आधारित है। ममता जो मातृत्व के अनुकूल उद्घोषित होती है, उसका प्रमाण और उदाहरण है कि तीर्थ स्थल या पवित्र नगरियों की जो भारत में परंपरा है, जैसे कि काशी, कांची, पुरी, द्वारका, रामेश्वरम आदि, देश के हर एक इस हिस्से में पवित्र तीर्थ स्थल और नगरियां स्थित हैं। अब कुंभ मेले का ही हम उदाहरण लें तो वह प्रत्येक प्रांत में बारी बारी आयोजित होती है। ये वो वजहें हैं जिन्होंने क्षेत्रवाद की भावना के टकराव को रोककर समवाय यानी कि मेलजोल की भावना का मार्ग प्रशस्त किया। जब हम इस राष्ट्रवाद को देखते हैं तो इसके मूल आधार में भारत की वही प्राचीन संस्कृति जो सनातन है, चिरंतन है, जिसकी एक निकट युग में भी आई हुई एक ऐसी धारा है जो अजस्त धारा लंबे समय से गतिशील है, उसी धारा का उद्घोषणा है सा प्रथमा संस्कृति विश्वावारा। अजुर्वेद की यह प्रसिद्ध उक्ति इस विमर्श का हिस्सा है, जिसका भावार्थ है कि सत्य का आचरण करने वाले प्रज्ञावानों द्वारा पोषित और संपूर्ण विश्व के कल्याण की भावना, जिसे कि हम विश्वावारा कहते हैं, रखने वाली यह प्रथम संस्कृति है। अब जब हम स्वामी विवेकानंद के उस योद्धा सन्यासी के स्वरूप की बात करते हैं तो उसका मूल आधार है शिकागो धर्म सम्मेलन में दिया गया उनका अभिभाषण। वो कहते हैं, मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों, सभी देशों के सताए हुए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। मुझे गर्व है कि हमने अपने दिल में इज़राइल की, जो आपको पता ही है कि कितनी कठिनाइयों से 1948 में एक पुनर्जीवन में पैदा हुआ है। कहते हैं स्वामी जी कि वो पवित्र यादें सजो कर रखी जिनमें उनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तहस नहस कर दिया, और फिर उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। स्वामी जी इसी भाषण में एक विशेष स्वरूप की बात करते हैं। वे कहते हैं कि सांप्रदायिकता, कट्टरता और उसके भयानक वंशजों के धार्मिक हठ ने लंबे समय में इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है, और कितनी ही बार यह धरती खून से लाल हो चुकी है। न जाने कितनी ही सभ्यताएं तबाह हुई और कितने ही देश मिटा दिए गए। उन्हें ये क्यों कहना पड़ा? आखिर इस योद्धा सन्यासी ने जो धर्म और आध्यात्मिकता से जुड़ा राष्ट्रवाद का मार्ग दिखाया, ये उसी की उद्घोषणा मात्र तो है। इस मार्ग का ही अवलंबन करते हैं बाद में तिलक, महर्षि अरविंद से लेके गांधी तक, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रीय नेतृत्व को एक राष्ट्रवाद के निर्देशित पथ पर लेके चलते हैं। हम भारतीय इतिहास के आधुनिक युग में 1920 से लेकर 1947 तक, जिसे हम गांधी युग कहते हैं, महात्मा गांधी के जो जीवन के कर्म संदेश हैं, जहां वो अपने आप को राष्ट्रवाद के जिस स्वरूप में प्रकट करते हैं, आप ध्यान दें ये संदेश वही है जो स्वामी विवेकानंद ने दिया है। मद्रास में उनके भाषण के कुछ अंश हैं जहां वो कहते हैं, प्रत्येक राष्ट्र प्रत्येक व्यक्ति की तरह इस जीवन में एक ही मूल तत्व रखता है, जो उसका केंद्र है वह मुख्य स्वर, जिसके चारों ओर अन्य सभी स्वर मिलकर सामंजस्य बनाते हैं। यदि कोई राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय शक्ति, वह दिशा जो सदियों से चली आ

रही है, को त्यागने का प्रयास करता है तो वह राष्ट्र नष्ट हो जाता है। हालांकि आज वर्तमान युग में हम जिन अर्थों में सामान्यतः राष्ट्रवाद को जानते और समझते हैं, वो मूलतः पश्चिम की अवधारणा है, जो कि अपने मूल दृष्टिकोण में बहुत ही संकुचित है। इसकी संकीर्ण वृत्ति का सबसे बढ़िया उदाहरण या परिणाम भी हम कह लें तो वो फांसीवाद और नाजीवाद की वैचारिकी रही है। आपको पता है कि दुनिया में करोड़ों हत्याएं जो 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुई हैं, उनके मूल में यही राष्ट्रीयता की विकृत परिभाषा रही है, यह जो कि सहजीवन के विरुद्ध कुंठित अवरोध पैदा करती है। ऐसे में पश्चिम की अवधारणा के राष्ट्रवाद की भावना से वैश्विक टकराव होना तो एकदम ही सहज सा प्रोसेस रहा है। इसके विपरीत हम जरा भारतीय राष्ट्रवाद को देखें तो वो साहचर्य, सहयोग और समन्वय का पर्याय है। तभी तो अपनी उद्घोषणा में वो व्यक्त करता है कि वह वसुधैव कुटुंबकम की भावना का संपोषक है, यानी भारतीय राष्ट्रवाद कोई जाति, नृजातीय, क्षेत्रीयता का घेरा नहीं है, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी को ही वह अपना परिवार और अपना घर मानता है। वसुधैव कुटुंबकम का ही यथार्थ रूप जब हमने प्रकट रूप में देखना शुरू किया आधुनिक भारत में, जब भारत ने कोरोना वैक्सीन से लेके तुर्की और नेपाल में आई हुई प्राकृतिक आपदाओं में त्वरित सहायता भेजी, ये प्रतीक ही तो है उस वसुधैव कुटुंबकम का। जब हम G20 के लिए अपनी आतिथ्य की भूमिका निभा रहे थे, तब हमारा क्या संदेश था? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की अवधारणा की उद्घोषणा। यही तो वह राष्ट्रवाद का वैश्विक अवधारणा है जो कि प्रत्यक्ष रूप में वसुधैव कुटुंबकम को प्रकट करता है। अतः भारत की राष्ट्रीय सैद्धांतिकी के अनुसार राष्ट्रवाद सहज मानवीयता से जुड़ा हुआ है, जिसमें निजातीयता के कोई बंधन नहीं है, क्षेत्रीयता का कोई संकट नहीं है। यह तो संपूर्ण पृथ्वी से उसके सहज संबंध का की अवधारणा है, सहज संबंध का वर्णन है, विवरण है और बंधन भी है। हम जिसकी अभिव्यक्ति हम अथर्ववेद में जाएं तो अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में यह संदेश है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। यह संबंध मात्र भौतिक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक चेतना से परिपूरित है। इसी भाव को तो अभिव्यक्त करते हैं स्वामी विवेकानंद, जिन्हें अक्सर बंगाल में राष्ट्रीय चैतन्यता के प्रतीक के रूप में उस दौर में संघर्षशील हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने प्रकट किया है। तब स्वामी जी का जो राष्ट्रवाद है वह स्पष्ट है कि पश्चिम या यूरोप के संकीर्ण नश्वरीय राष्ट्रवाद से भिन्न है। आज आधुनिक वैश्विक संचेतना जिस विकृत राष्ट्रवाद और पंथीय कट्टरता के संकट से जूझ रही है, उससे प्रताड़ित है, उसके समाधान का मार्ग भी स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रेरित धर्म आध्यात्मिकता के समन्वय से बना हुआ राष्ट्रवाद है। और भारतीय संस्कारों के चैतन्य अंतस में, उनकी अंतरात्मा में व्याप्त वसुधैव कुटुंबकम की भावना में वह पूरी तरह व्याप्त है, यह एक सुनिश्चित तर्क है। और यही वो रास्ता है जो समाधान का मार्ग भी सुझाएगा। इसके लिए नितांत आवश्यक है कि भारतीय संस्कृति संस्कार के नवजागृत नवोत्थान की प्रक्रिया निरंतर यूं ही गतिशील रहनी चाहिए। जैसा कि ऐतरेय ब्राह्मण के शुनसेप उपाख्यान में एक सुंदर वैदिक गीत है जिसका संदेश है चरय वैति, अर्थात चलते रहो चलते रहो। तो हम इस रूप में जब राष्ट्रवाद की अवधारणा को देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि आज जहाँ विश्व ग्लोबल संकट में इस वैश्विक अवधारणा में निरंतर ही नए तरह के संघर्षों में, आप चाहे मिडिल ईस्ट की अवधारणा देख लें, आप चाहे यूरोप में निरंतर संस्कृतियों के टकराव को देख लें। एक जमाने में जब सैमुअल हटिंगटन ने 20वीं सदी में संस्कृतियों के टकराव की अवधारणा पे बात की थी, तब उनकी एक भविष्यवाणी थी कि ये सदी संस्कृतियों के टकराव की होगी। और अक्सर जो चैतन्य विचारक होते हैं वो अपने दृष्टिकोण में भविष्यवक्ता भी होते हैं। जब हम आज 21वीं सदी में देख रहे हैं जहाँ मिडिल ईस्ट से लेके आप एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अब तो स्वयं को विकसित कहने वाला अमेरिका भी एक तरह के निर्जातीय और पंथीय धार्मिक संकटों में फंसा हुआ है, तब आप देख रहे हैं कि राष्ट्रवाद की जो लकीर है वो नितांत ही संकुचित होती जा रही है। वही अवधारणा जिसका हम हमेशा विरोध करते रहे, हमने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस फांसीवाद को माना कि निर्जातीय आधार पर जिनकी संकीर्ण अवधारणा है, जो संघर्षों में ही राष्ट्रवाद तलाश रहे हैं, आज उस अवधारणा के अंतर्गत जब हम पूरे विश्व को हिंसक संकटों में घिरा हुआ देख रहे हैं तो हमें सहज ही ध्यान आ रहा है कि भारत तब उस दौर में विश्वगुरु क्यों रहा होगा, क्योंकि एकमात्र भारतीय अवधारणा है।

जहां वो इस मान्यता पे आधारित है कि उसने संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना परिवार मान लिया है। उस परिवार की अवधारणा में उसने, अगर वो जंगल, पहाड़, पशु पक्षियों को पूजित मान रहा है, तो वसुधैव कुटुंबकम की उसी भावना का चारित्रिक प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है हमारी सनातन संस्कृति, मान्यता और संस्कार, जिनमें कि हर चीज़, हर

0: हर चीज, हर स्व से तर हम के बारे में सोच रहे हैं, और यही संस्कृति का वो प्रसार है जिसके प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद है।
1: स्वामी विवेकानंद का वैश्विक राष्ट्रवाद वसुधैव कुटुंबकम, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शिवेंद्र प्रताप सिंह की ये वार्ता। इसी के साथ हिंदी कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंग।

ये आवाज लता मंगेशकर की है। जगतगुरु शंकराचार्य फिल्म का ये गाना, गीतकार भरत व्यास और संगीतकार अविनाश व्यास।

संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे भरत व्यास की रचना। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें थी, फिल्म थी जगत गुरु शंकराचार्य। आज और कल फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार रवि। ये रहा बहुत प्यारा सा गीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में साहिर लुधियानवी की रचना आप सुन रहे थे, रवि के संगीत था। आज और कल फिल्म का गाना था, अब ये फिल्म वारिस का गाना।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में वारिस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे वर्मा मलिक और संगीतकार थे उत्तम जगदीश।

आप आए बहार आई। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आनंद बख्शी की रचना आप सुन रहे थे। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग। फिल्म संगीत हम फिर लेकर आएंगे रात 8:15 पर कार्यक्रम रसमाधुरी में। तो सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को। रेडियो एक प्रभावशाली माध्यम है, रेडियो का प्रयोग करें। रेडियो पर विज्ञापन सर्वोत्तम और सस्ता है, रेडियो पर विज्ञापन देकर अपनी आय बढ़ाएं। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुने सुगम संगीत। आज के फनकार हैं मनहर उदास। तो सबसे पहले सुनते हैं मनहर उदास की आवाज में श्याम अनुरागी की ये गजल।

श्याम अनुरागी की गजल आप सुन रहे थे मनहर उदास की आवाज में। आकाशवाणी वाराणसी से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। आज के फनकार हैं मनहर उदास। आइए आप सुने हस्तिमल।

ढलती रात के साए में आप हैं आकाशवाणी वाराणसी के संग और सजी है सुगम संगीत की महफिल। कार्यक्रम के आखिर में सुने शायर निदा फाजली का ये कलाम।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे राजेंद्र कृष्ण की ये रचना। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें थीं। इस गीत को हमने लिया था फिल्म इंतकाम से। कार्यक्रम का अगला गाना आपके रेडियो सेट पर, नाचे नागिन गली गली, ये है फिल्म का नाम।

साधना सरगम की आवाज में आप सुन रहे थे अनजान की ये रचना। कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। फिल्म थी नाचे नागिन गली गली में।

अनुपमा देशपांडे और किशोर कुमार की आवाजों में काश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे फारूक कैसर और संगीतकार थे राजेश रोशन। आइए आप सुने सुरेश वाडकर की आवाज में ये बहुत प्यारा सा गीत। गीत और संगीत दिया है रविंद्र जैन ने। फिल्म का नाम अबोध।

रात के 8:33 और 49 सेकंड आकाशवाणी वाराणसी आपके संग। सुरेश वाटकर की आवाज में अबोध फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। आइए अब सुने संतोष आनंद की ये रचना, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम प्यासा सावन और ये आवाज लता मंगेशकर की।

तो इसी तरह साथ बनाए रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रस माधुरी। संतोष आनंद की ये रचना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज़ में प्यासा सावन फिल्म का गाना था। संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। एक और आखिरी गाना सुनिए, ये भी गीत कुछ कहता हुआ। छोटी बहू फिल्म का गाना है, कुमार सानू की आवाज है, गीतकार समीर और संगीतकार नदीम श्रवण। और यह है कार्यक्रम का आखिरी गाना। रात के 8:40 और 5 सेकंड

कुमार सानू की आवाज में छोटी बहू फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे समीर और संगीतकार थे नदीम श्रवण। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी। आज हमने इस कार्यक्रम को सजाया इन फिल्मों के गीतों से, इंतकाम, नाची नागिन, गली गली, काश, अबोध, प्यासा सावन और छोटी बहू।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। आइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांसद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण

0: है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साणा संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
0: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
0: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि साणंद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
0: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20

0: जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
1: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और

0: समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पैराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says, India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra. Several rivers in spate. And in men's cricket, India set a target of 191 runs for hosts England in second T20 in Manchester. Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi emphasized that this development

0: is the next step in India's massive electronics revolution, which has already established the country as the world's second largest mobile phone manufacturer. He stated that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। पांच साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: Lauding the diverse workforce at the plant, the Prime Minister described the complex as a mini India, where engineers and professionals from various states are working under one roof to power the global digital economy. The Prime Minister also said the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year.
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे
0: Addressing at the occasion, Union Minister Ashwini Vaishnaw announced that India will have 5 operational semiconductor plants by the end of 2026. He emphasized that chips produced at the Sanand plant will cater to diverse industrial applications and will be exported to global markets, including the United States, Japan and Europe.
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है
3: टुडे इंडियाज थर्ड सेमीकंडक्टर प्लांट इज बीइंग लॉन्च्ड द प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड द फर्स्ट प्लांट ऑन 28 फरवरी द सेकंड प्लांट ऑन 31 मार्च एंड टुडे ऑन 4th जुलाई द थर्ड प्लांट गिवन द स्पीड विद व्हिच द प्राइम मिनिस्टर अप्रूव्ड 12 प्लांट्स इन द कैबिनेट एंड विद कमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्टिंग इन 3 आउट ऑफ दोस 12 प्लांट्स अ न्यू वेव ऑफ कॉन्फिडेंस इन इंडियाज सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटीज हैज इमर्ज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड टुडे
2: आज दुनिया भर में भारत की सेमी कंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है
0: Earlier, upon reaching Sanand, the Prime Minister toured the high-tech plant and inspected the production process. He also interacted closely with engineers and operators working inside the facility. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan, marking a major push to infrastructure, energy, transport and employment generation in the state. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Thereafter, he dedicated the country's most modern greenfield refinery cum petrochemical complex to the nation in Pachupadra in Balotra district, which is an industrial processing plant built from scratch on undeveloped clean land. He also inspected the refinery's state-of-the-art control room, interacted with engineers and technical experts, flagged off fuel tankers, and virtually laid the foundation stone for Jaipur Metro Phase 2. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy, and prudent management of national resources.
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया प्रभावी रणनीति बनाई भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है
0: Mr. Modi also handed over appointment letters to around 54,000 youths recruited across various departments of the government of Rajasthan. Prime Minister Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand from Monday. At the invitation of Indonesian President Prabowo Subianto, Prime Minister Modi will undertake a state visit to Indonesia from the 6th to the 8th of this month. This will be Mr. Modi's 4th visit to Indonesia and his first bilateral visit since India-Indonesia relations were elevated to a comprehensive strategic partnership in May 2018.

0: valid registration for the designated date shall be permitted to proceed on the tracks leading to the holy cave shrine. Heavy rainfall continued to batter several parts of Maharashtra, disrupting normal life across the state. Mumbai and its suburbs received intense showers, prompting the closure of schools in Mumbai, Thane and Palghar. Flood-like conditions were reported from parts of Palghar district, affecting road and rail traffic. In Raigarh, major rivers, including the Savitri, Kundalika and Ulhas, are flowing at full capacity, while waterlogging was reported in Mahad. Continuous rain has also raised water levels in Panchaganga and other rivers in Kolhapur. Meanwhile, the India Meteorological Department has issued a red alert for Mumbai, Thane, Palghar and the Ghat areas of Pune and Satara for the next 2 days, while an orange alert remains in force for the Ghat areas of Raigarh, Ratnagiri and Nashik. The India Meteorological Department has also issued a yellow alert in all the 14 districts of Kerala for today. The yellow alert will continue in 3 districts tomorrow. An orange alert has been issued for Kannur and Kasaragod districts on Monday and for Kannur, Kasaragod and Kozhikode on the 7th of this month. Heavy rainfall is expected to continue until the 8th of this month. Due to adverse weather conditions and rough seas, fishermen have been advised not to venture into the sea along the Keralam, Lakshadweep and Karnataka coast. In sports, in men's cricket, India have set a target of 191 for England in the second T20 International of the 5-match series at Old Trafford in Manchester. In reply, England was 16 for 2 in 2.2 overs when reports last came in. Opting to bat first, India posted 190 runs for the loss of 7 wickets in their allotted 20 overs. Ishan Kishan scored 49 off 40 balls, while Abhishek Sharma contributed 43 runs off 24 balls. Earlier, Vaibhav Suryavanshi created history by becoming the youngest player to make his international debut for India. Vaibhav made his debut at the age of 15 years and 99 days, surpassing the long-standing record held by Sachin Tendulkar, who made his India debut at the age of 16 years and 205 days. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat, to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate. And in men's cricket, India set a target of 191 for host England in second T20 in Manchester, where Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में सीजी सेमी के आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट का इफ्तिताह किया, ताकि चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि भारत ने बरवक्त फैसलों, मुअस्सर सिफारतकारी और कौमी वसाइल के मुहतात बंदोबस्त के जरिए मगरबी एशिया बहरान पर कामयाबी के साथ उबूर हासिल किया। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख से लेकर 13 अगस्त तक होगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के दिफाई सामान की बरामदात 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सतह पर पहुंच गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर हुई है, कई दरिया तोयानी पर हैं। और मर्दों के क्रिकेट में मैनचेस्टर में भारत ने दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड के सामने 191 रन का निशाना रखा है। वैभव सूर्यवंशी बैन अल-अक़वामी क्रिकेट में कदम रखने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में सीजी सेमी के जदीद तर्ज के आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट ओसेट प्लांट का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल के साथ साथ आलमी टेक कंपनियों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। वहां बड़ी तादाद में मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि यह कदम भारत के बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स इनकलाब में अगला मरहला है।

0: जिसकी बदौलत भारत को मोबाइल फोन तैयार करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुल्क का रुतबा पहले ही हासिल है। जनाब मोदी ने कहा कि सानंद में सीजी सेमी ओसैक मरकज से न सिर्फ अंदरूनी मुल्क चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे आलमी सतह पर सेमी कंडक्टर वैल्यू चेन निज़ाम में भारत की पोजीशन में इजाफा होगा और तकनीकी खुद किफालत को भी फरोग हासिल होगा। वजीर आजम ने इस एतमाद का इजहार किया कि इस तारीखी प्रोजेक्ट से सानंद सेमी कंडक्टर के एक दरख्शां आलमी मरकज के तौर पर उभरेगा। जनाब मोदी ने इसे विकसित भारत का नक्शराह और मेक इन इंडिया का दूसरा कदम करार दिया। मजकूरा प्लांट में मुतनव्वा अफरादी कुव्वत की सताइश करते हुए वजीर आजम ने कॉम्प्लेक्स को एक मिनी इंडिया से ताबीर किया, जहां मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर्स और पेशावर अफराद आलमी डिजिटल मईशत को तकवीत पहुंचाने की खातिर एक छत के नीचे काम कर रहे हैं। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि इस उभरते हुए इको निज़ाम से मस्नूई जहानत और नए सिलसिले की टेक्नोलॉजियों के शोबे में भारत के नौजवानों को मजीद आगे बढ़ने के वसी मौके हासिल होंगे। वजीर आजम ने कहा कि सानंद का प्लांट सालाना 20 करोड़ चिप्स तैयार कर सकेगा। जनाब मोदी ने पैदावार बढ़ाकर सालाना 500 करोड़ चिप्स तैयार करने का मुस्तकबिल का बड़ा निशाना तय करने पर सीजी सेमी को मुबारकबाद दी।
1: सीजी सेमी का ये प्लांट भारत, जापान और थाईलैंड के हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स के साझा प्रयासों का भी प्रतीक है। ये केवल एक बिजनेस वेंचर नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, भरोसे और साझेदारी का ऐसा मॉडल है जो भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी को नई गति देने वाला है। बीते 2.25 सालों में आप सभी ने स्क्रैच से स्केल तक इस पूरी फैसिलिटी को आकार दिया है। आज हम इसके कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि अभी यहाँ से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी।
0: इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि मुल्क में इस साल के आखिर तक 5 सेमी कंडक्टर प्लांट्स काम करने लगेंगे। मजकूरा शोबे की तेज रफ्तार पेशरफ्त को उजागर करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि सानंद मरकज में भूमि पूजन की तकरीब से लेकर कमर्शियल पैदावार का सिलसिला शुरू होने तक सिर्फ 27 महीने लगे।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: जनाब अश्विनी वैष्णव ने जोर देकर कहा कि सानंद प्लांट में तैयार होने वाले चिप्स का इस्तेमाल मुख्तलिफ सनती शोबों में किया जाएगा और उन्हें अमेरिका, जापान और यूरोप समेत आलमी मार्केट्स में भी बरामद किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में 1,05,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा, जिससे रियासत में बुनियादी ढांचे, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और रोजगार के मौके पैदा करने को बड़ी तकवीत मिलेगी। दिन भर के अपने दौरे में वजीर आजम ने जोधपुर हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह किया। इसके बाद जनाब मोदी ने बालोतरा जिले में पचपदरा के मकाम पर मुल्क का सबसे जदीद तर्ज का ग्रीन फील्ड रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स मुल्क के नाम वक्फ किया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या मादनियात के लिए एक ऐसा सनती प्रोसेसिंग प्लांट है जिसे साफ सुथरी कच्ची जमीन पर नए सिरे से बनाया जाता है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मगरबी एशिया की महाजराई से 21वीं सदी का तवानाई का सबसे बड़ा बहरान पैदा हो गया था, लेकिन भारत ने बरवक्त फैसलों, मौसर सिफारतकारी और कौमी वसायल के मुहतात बंदोबस्त के जरिए इस चैलेंज पर कामयाबी के साथ उबूर हासिल किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: जनाब मोदी ने कहा कि बहरान के दौरान दुनिया के मुल्कों के साथ भारत के दोस्ताना ताल्लुकात का अहम

0: बोल रहा। वजीर आजम ने कहा कि सरकार ने आलमी सतह पर उथल पुथल के बावजूद खाना पकाने की गैस की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होने दिया।
1: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरीज के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरीज को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
0: जनाब मोदी ने इस मौके पर तकरीबन 54,000 नौजवानों को तकर्रुरनामे भी सौंपे, जिन्हें राजस्थान सरकार के मुख्तलिफ महकमों में भर्ती किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख को शुरू होगा और 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बताया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से पार्लियामेंट का मानसून इजलास तलब करने की सरकार की तजवीज को मंजूरी दे दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब रिजिजू ने कहा कि इस इजलास में कौमी अहमियत के हामिल मामलात पर बामकसद बहस मुबासे और फैसलों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में भारत की नुमाया तरक्की को ये कहते हुए उजागर किया कि मुल्क की दिफाई बरामदात रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच गई हैं। नई दिल्ली में मीडिया के एक निजी इदारे की जानिब से मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि माली बरस 2013-14 में 686 करोड़ रुपए से जबरदस्त इजाफा तकरीबन 57 गुना है और इससे मेक इन इंडिया दिफाई प्लेटफॉर्म में बढ़ते आलमी एतमाद की अक्कासी होती है।
2: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: वजीर दिफा ने कहा कि माली बरस 2025-26 में सालाना दिफाई पैदावार भी अब तक की सबसे ज्यादा बुलंदी 1,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच गई, जो 2014-15 की सतह से तकरीबन 3 गुना है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग की वसीतर हसूलियाबियों को उजागर करते हुए जनाब सिंह ने मेक इन इंडिया पहल के तहत मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग की तौसी, मोटर गाड़ियों की बरामदात में इजाफे, अंदरून मुल्क तैयार करदा रेल इंजन और डिजिटल बुनियादी ढांचे की मजबूती को उजागर किया। गुज़श्ता दहाई में मुल्क की तरक्की के बारे में बात करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने किल्लत का इज़ाला किया, मौके बढ़ाए और वर्क कल्चर में यकसर तब्दीली पैदा की। उन्होंने कहा कि हुकूमत रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म की पॉलिसी के जरिए विकसित भारत की मजबूत बुनियाद कायम कर रही है। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की इत्तलात सामने आने पर टेलीग्राम ऐप को नोटिस जारी किया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक सरकार ने टेलीग्राम को हिदायत दी है कि चोरी छुपे हासिल की गई फिल्मों और ओवर द टॉप ओटीटी प्रोग्रामों के खिलाफ बिला ताखीर इकदामात किए जाएं। ज़राए ने मजीद बताया कि मस्कूरा प्लेटफॉर्म से कहा गया है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करे। इंडोनेशिया के सदर की दावत पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस माह की 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया का दौरा करेंगे। वजीर आजम मोदी का इंडोनेशिया का ये चौथा और मई 2018 में भारत इंडोनेशिया ताल्लुकात को जामे कलीदी शराकतदारी तक वसूल दिए जाने के बाद पहला दौरा होगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगाज से।
3: अपने दौरे के दौरान वजीर आजम मोदी इंडोनेशिया के सदर के साथ बाहमी बातचीत करेंगे, जिसमें कलीदी शराकतदारी के तहत अहम शोबों में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। जकार्ता में वजीर आजम का वहां आबाद भारतीय बिरादरी के एक बड़े इज्तम से खिताब का भी प्रोग्राम है। इंडोनेशिया में भारतीय बिरादरी वजीर आजम के दौरे की मुंतजर है। जकार्ता में इंडिया क्लब के सदर सिद्धार्थ तपाड़िया ने आकाशवाणी से बात करते हुए भारत और इंडोनेशिया के दरमियान मजबूत दोस्ती को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस आला सतही रबते से ये बात नुमाया होती है कि दोनों ममालिक एक दूसरे को खास अहमियत देते हैं। उन्होंने इस बात पर पुरउम्मीदी का इजहार किया कि दोनों ममालिक बुनियादी ढांचे, तिजारत, दिफा, ज़राअत, कुदरती वसाइल और दीगर शोबों में इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करेंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वजीर आजम नरेंद्र

0: मोदी ने अमेरिका के 250वीं यौमे आजादी पर सदर डोनाल्ड ट्रंप और वहां के अवाम को मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी ने अपने पैगाम में कहा कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात कलीदी साझेदारी से आगे बढ़कर हैं, जो जमहूरियत, कानून की अमलदारी और अपने अवाम की लामहदूद सलाहियत के मुश्तरका एतमाद पर मबनी है। सनअती माहरीन ने कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम रातों रात मुतारिफ नहीं किया गया, बल्कि ये एक सोचा समझा, मरहलेवार और साइंस पर मबनी अमल है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की साबिक चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम 2018 में सिलसिलेवार तबादला ख्याल और मुतालिका फरीकों के सलाह मशवरे के लिए लोगों के सामने रखा गया। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे रियासत भर में मामूलात जिंदगी मुतासर हैं। मुंबई और उसके मजाफाती इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे मुंबई, थाने और पालघर में स्कूलों को बंद करना पड़ा। पालघर जिले के हिस्सों से सैलाब किसी सूरत हाल की खबर है, जिससे सड़क और रेल ट्रैफिक मुतासर हुआ है। रायगढ़ में अहम दरियाओं में पानी की सतह बढ़ गई है। मुसलसल बारिश से कोल्हापुर में पंचगंगा और दीगर दरियाओं में भी पानी की सतह में इजाफा हुआ है। ईरान के साबिक रहबरे आला आयतुल्ला सैयद अली खामनाई की 6 रोजा सरकारी आखिरी रसूमात का सिलसिला आज से तेहरान में शुरू हो गया। इसमें हजारों सोगवार शिरकत कर रहे हैं और ईरान के मरहूम रहनुमा को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। मर्दों के क्रिकेट में मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड में दूसरे T20 बैन अलावामी क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड की जीत के लिए 191 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक इंग्लैंड ने 5 ओवर्स में 3 विकेट पर 52 रन बना लिए थे। इससे कबल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए भारत ने मुकर्र 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए अपना पहला बैन अलावामी मैच खेलने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए। वैभव ने 15 साल और 99 दिन की उम्र में अपना पहला मैच खेला। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में CGSEMI के आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट का इफ्तिताह किया, ताकि चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निजाम को मुस्तहकम बनाया जा सके। वजीर आजम ने कहा है कि भारत ने बरवक्त फैसलों, मौसर सिफारतकारी और कौमी वसाइल के मोहतात बंदोबस्त के जरिए मगरबी एशिया बहरान पर कामयाबी के साथ उबूर हासिल किया। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख से लेकर 13 अगस्त तक होगा। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर हुई है। और मर्दों के क्रिकेट में मैनचेस्टर में भारत ने दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड के सामने 191 रन का निशाना रखा। वैभव सूर्यवंशी बैन अलावामी क्रिकेट में कदम रखने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अंजुमन गैर फिल्मी गीत एवं गजलों पर आधारित ये कार्यक्रम आइए सुने प्रवीण शाकिर की ये गजल, आवाज गुलाम अली की।

में ये गीत आप सुन रहे थे। इस गीत से पहले आप सुन रहे थे सलमा आगा की आवाज़ में रहमत खान की गज़ल, जिसे हम सुचारू रूप से आपको नहीं सुनवा सके, जिसका हमें खेद है। आइए एक बार फिर सुने आरजू बानो की आवाज़ में ये गज़ल।

तलत अजीज की आवाज में ये गजल आप सुन रहे थे। अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीत एवं गजलों पर आधारित कार्यक्रम अंजुमन। हर रोज सुनिए आकाशवाणी वाराणसी से रात 9:30 पर कार्यक्रम अंजुमन। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज रात प्रस्तुत है ख्याल गायन। कलाकार हैं पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। किराना घराना के दिग्गज कलाकार उस्ताद अब्दुल करीम खां और उस्ताद वाहिद खां का हाथ थाम कर जिस सांगीतिक विरासत की शुरुआत हुई थी, उसने युगों का सफर तय किया और आज इसे आगे बढ़ाने वाले गुणी कलाकारों में पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। कोलकाता के निकट स्थित उपनगर बोशीरहाट में जन्मे और संगीत के माहौल में पले बढ़े पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय ने अपने पिता संगीताचार्य श्री अरुण कुमार चट्टोपाध्याय से महज 5 वर्ष की आयु में संगीत सीखना आरंभ किया। आगे चलकर आपने पंडित ए कानन, विदुषी मालविका कानन और उस्ताद मशकूर अली खां जैसे प्रख्यात कलाकारों से शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय ने बड़ी ही छोटी उम्र में मंच पर कदम रखा। केवल 7 वर्ष की आयु में सन 1979 में कोलकाता में आयोजित सुरेश संगीत सम्मेलन में उस्ताद अमजद अली खान के साथ आपको कार्यक्रम प्रस्तुत करने का सुयोग प्राप्त हुआ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड के कलाकार होने के साथ साथ आप संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत ICCR के सूचीबद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ भी हैं। आज की पीढ़ी के सुविख्यात ख्याल गायकों की श्रेणी में आपका नाम शामिल है। किराना घराना की पारंपरिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय अपनी ख्याल और ठुमरी की प्रस्तुतियों में अद्भुत सुंदर गायकी का मिश्रण करते हैं, जो आपकी पेशकश को रंगदार और लोकप्रिय बनाता है।
1: टुनाइट इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी प्रेजेंट ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय, द म्यूजिकल हेरिटेज initiated by Ustad Abdul Karim Khan and Ustad Abdul Wahid Khan, the doyens of Kiran.

0: गायन के अंतर्गत आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग यमन सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग हमीर। यह बंदिश पहले मध्य लय तीन ताल, तत्पश्चात द्रुत एक ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग यमन इन द खयाल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही नाउ प्रेजेंट्स राग हमीर, the composition of which is set to Madhyalaya Teen Tal, followed by Drut Ek Tal.

0: पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग हमीर सुन रहे थे। ख्याल गायन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग वाचस्पति के साथ करेंगे। यह बंदिश मध्य लय तीन ताल और द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग हमीर। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय कंक्लूड्स हिज ख्याल रिसाइटल विद राग वाचस्पति। The composition of the rag is set in Madhyalaya Teen Taal and Drut Teen Taal.

0: गायन के इस कार्यक्रम में आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग वाचस्पति सुन रहे थे। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाह। और इसी के साथ आज रात संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग वाचस्पति इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय इमोन सरकार, ऑन द हारमोनियम बाय कमलाक्ष मुखोपाध्याय एंड ऑन द तानपुरा बाय कोयल साहा। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ National Program of Music Tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया

0: और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: Mr. Modi also handed over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Home Minister Amit Shah called the inauguration of the new CG Semi OSAT facility and India's new leap towards self-reliance in technology. In a social media post, Mr. Shah said the new facility will further invigorate Gujarat as the country's growth engine and open vast employment opportunities for youth. Prime Minister Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand from Monday. At the invitation of Indonesian President Prabowo Subianto, Prime Minister Modi will undertake a state visit to Indonesia from the 6th to 8th of this month. This will be Mr. Modi's 4th visit to Indonesia and his first bilateral visit since India-Indonesia relations were elevated to a comprehensive strategic partnership in May 2018. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from tomorrow till 10th of this month. During the visit to these countries, Dr. Jaishankar will be meeting with his counterparts and the leadership. The Ministry of External Affairs said the visit will focus on enhancing India's bilateral relations with the countries and also provide an opportunity to exchange views on regional developments and issues of mutual interest. The monsoon session of the parliament will commence on 20th of this month.